ये आकाशवाणी है। मीडियम वेव 401.61 मीटर यानी 747 किलो हर्ट्स पर आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र। आज सोमवार है, शक संवत 1948 के आषाढ़ मास की 15वीं तिथि, तदनुसार 6 जुलाई सन 2026। सुबह के 5:55 और 43 सेकंड हुए हैं। आरंभ होती है हमारी आज की प्रातःकालीन सभा।

आसमान में बिखरी हुई सुनहरी किरणें, फिजाओं में मंद मंद बहती ठंडी हवाएं, चिड़ियों की चहचहाट और रंग बिरंगे फूलों पर अपने खूबसूरत पंखों को फैलाए तितलियां, सुबह सुबह प्रकृति में चारों ओर एक मनमोहक छटा फैलाती है। ये दृश्य न सिर्फ आंखों से मन को लुभा रही है, बल्कि जीवन में एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार भी कर रही है और ये एहसास करा रही है कि एक नई शुरुआत आपके वो बस पहले कदम का इंतजार कर रही है। तो देर किस बात की, अपने हौसले को समेटिए, एक लंबी सांस लेकर अपने सपनों की ओर बढ़ चलिए। और आपके इस सफर में आपका साथ देने नमस्ते लखनऊ के एक और ज्ञान

0: और मनोरंजन भरे अंक में साथ हूँ मैं आपकी रेडियो दोस्त कीर्ति विश्वकर्मा। सुप्रभात, नमस्कार। मीडियम वेव 401.6 मीटर यानी 747 किलो हर्ट्ज पर यह है आकाशवाणी लखनऊ। सुबह के 6 बजने को है सबसे पहले जानकारी देश दुनिया की खबरों की। हिंदी में समाचार दिल्ली केंद्र से बस कुछ ही पलों में।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा आज से शुरू हो रही है। पहले चरण में श्री मोदी आज इंडोनेशिया पहुंचेंगे। ये प्रधानमंत्री की चौथी इंडोनेशिया यात्रा है। मई 2018 में दोनों देशों के संबंधों के व्यापक रणनीतिक भागीदारी तक पहुंचने के बाद से शीर्ष नेतृत्व के बीच पहली द्विपक्षीय वार्ता होगी। प्रधानमंत्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ वार्ता करेंगे और रणनीतिक भागीदारी की प्रगति की समीक्षा करेंगे। श्री मोदी सांस्कृतिक और ऐतिहासिक नगर योग्यकार्ता भी जाएंगे। योग्यकार्ता में वे प्रबन्नन मंदिर जाएंगे। भारत और इंडोनेशिया मिलकर इस मंदिर का संरक्षण कार्य पूरा करेंगे। अयोध्या में श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्यों की आज बैठक होगी। इस दौरान मंदिर को मिले दान की छानबीन कर रहे विशेष जांच दल की रिपोर्ट सहित अनेक प्रशासनिक और वित्तीय मुद्दों पर चर्चा होगी। ये बैठक पहले दोपहर 3 बजे मणिराम छावनी में होनी थी, लेकिन अब ये राम मंदिर परिसर में ही होगी। सहकारिता मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में सहकारिता मंत्रालय के 5वें स्थापना दिवस समारोह में शामिल होंगे। ये समारोह सहकार से समृद्धि की परिकल्पना के अनुरूप आयोजित किया जाएगा। इस अवसर पर श्री शाह कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। इनमें 232 अनाज भंडारण गोदामों का उद्घाटन, सहकार वन का भूमि पूजन, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में टिश्यू कल्चर सुविधाओं का भूमि पूजन, राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस NCD और जियो टैग मोबाइल एप्लीकेशन तथा राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड NDDB के दुग्ध आपूर्ति समीक्षा डैशबोर्ड पोर्टल का शुभारंभ शामिल है। असम में विधानसभा का बजट अधिवेशन आज से शुरू हो रहा है। इससे पहले कल गुवाहाटी में राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में आपात सेवाओं में मजबूती लाने, औद्योगिक विकास बढ़ाने और शासन में सुधार के लिए कई नीतिगत फैसलों को मंजूरी दी गई। बैठक के बाद मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा ने बताया कि सत्र के दौरान पेश किए जाने वाले अनेक विधेयकों को भी स्वीकृति दी गई है। इनमें असम सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम स्थापना और परिचालन सुविधा विधेयक 2026, असम जन विश्वास विधेयक 2026, असम पर्यटन विकास और पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 और असम व्यापार सुगमता संशोधन विधेयक 2026 शामिल है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती आज मनाई जा रही है। इस अवसर पर संस्कृति मंत्रालय पश्चिम बंगाल सरकार के सहयोग से कोलकाता में विशेष कार्यक्रम का आयोजन करेगा। ये कार्यक्रम डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती के 2 वर्षीय आधिकारिक समारोह के अंतर्गत आयोजित किया जा रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी कार्यक्रम की अध्यक्षता करेंगे। ऑस्ट्रेलिया ने ICC महिला T20 क्रिकेट विश्व कप का खिताब जीत लिया है। फाइनल में लंदन के लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को 7 विकेट से पराजित किया। इंग्लैंड ने निर्धारित 20 ओवर में 4 विकेट पर 150 रन बनाए। ऑस्ट्रेलिया ने 17 ओवर और 1 गेंद में 3 विकेट के नुकसान पर 153 रन बनाकर मैच जीत लिया। बेथ मुनी को प्लेयर ऑफ द मैच और प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया। फीफा विश्व कप के राउंड ऑफ 16 में नॉर्वे ने बड़ा उलटफेर करते हुए 5 बार की विश्व चैंपियन ब्राजील को 1-2 से हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली। स्टार स्ट्राइकर एर्लिंग हालंद ने 2 शानदार गोल कर नॉर्वे को मजबूत बढ़ा दिलाई। ब्राजील की तरफ से एकमात्र गोल नेमार जूनियर ने किया। फ्रांस और मोरक्को के बाद क्वार्टर फाइनल में पहुंचने वाली नॉर्वे तीसरी टीम है। विंबलडन टेनिस में सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने रूस के रोमन सफियुलिन को हराकर पुरुष एकल क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। ऑल इंग्लैंड क्लब में जोकोविच की ये 106वीं एकल जीत है। उन्होंने विंबलडन पुरुष एकल में 105 जीत का रोजर फेडरर का कीर्तिमान भी तोड़ा।

इस चैंपियनशिप में केवल मार्टिना नवरातिलोवा ने ही 120 एकल मैच जीते हैं। वहीं महिला एकल में कैरोलिना मुचोवा ने पूर्व चैंपियन बारबोरा क्रेस्चिकोवा को हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: मीडियम वेव 401.61 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज पर यह है आकाशवाणी लखनऊ धड़कन देश की। सुबह के 6:05 हुए हैं। नमस्ते लखनऊ के आज के अंक में सबसे पहले मुलाकात किसान भाइयों के साथ। कार्यक्रम है कृषि चर्चा। आज का विषय आम के बागों में कीट रोग प्रबंधन। इस विषय पर डॉक्टर अशोक कुमार मिश्र से भेंट करता है डॉक्टर सुशील कुमार राय।
1: नमस्कार किसान भाइयों बहनों, जहां आम की व्यावसायिक बागवानी आप कर रहे हैं वहां हानिकारक कीट और बीमारियों का प्रबंधन इस समय क्या कुछ करें, कैसे करें, इसी विषय पर जानकारी के लिए आज हमारे साथ हैं डॉक्टर एके मिश्रा साहब। स्वागत है कार्यक्रम में। डॉक्टर साहब, ये बताएं कि इस समय आम के फल की तुड़ाई भी हो रही है, कहीं कहीं जहाँ विलम्ब से पकने वाली प्रजातियाँ पेड़ों पर हैं, तो हानिकारक कीट और बीमारियों का प्रबंधन आम के बागों में क्या करें, कैसे करें, कब करें?
2: किसान भाइयों, इस वर्ष जो है आपने देखा है कि ज्येष्ठ मास जो है वो काफ़ी गर्म हुआ, बहुत तपता हुआ हुआ। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ज्येष्ठ जितना गर्म होता है उसी हिसाब से बारिश अच्छी होती है
1: जी।
2: तो बारिश जब होती है और बारिश शुरू हो गई है प्रदेश में, इसके साथ साथ जो है कीट और रोग का थोड़ा विस्तार होने लगता है।
1: हाँ।
2: और कुछ कीट और रोग जो हैं जो आम में प्रमुख हानि पहुंचाते हैं वो इस समय भी बहुत प्रमुख होते हैं।
1: जैसे?
2: जैसे कि आम में अब देखिए लीफ वेबर है जिसको टेंट कैटरपिलर कहते हैं
1: जी,
2: वो जो है वो लगने की शुरुआत होगी और हमको शुरू से ही इसकी जो है व्यवस्था कुछ करनी चाहिए।
1: और आगे चल करके गुच्छा बना लेगा,
2: जो कीड़े के लार्वी हैं वो पत्तियों को पहले खाना शुरू करते हैं, थोड़ा फिर जब उसकी उम्र बढ़ती है तो वो सब पत्तियों को आपस में मिला करके और पूरी पत्ती खा भी जाते हैं और एक जाला जैसा बनाते हैं। इसीलिए इसको जाला कीट भी कहते हैं और जाले के अंदर घुसे रहते हैं, इसलिए इसमें जो है बड़ी आसानी से दवाई भी डाली नहीं जा पाती है।
1: तो इसके प्रबंधन के लिए करें क्या बागवान भाई बहन?
2: इसके प्रबंधन के लिए ये करना होगा कि आप जो है जब इसको जब देखें पौधों के ऊपर इसको देखें तो उसको किसी निकालने वाले लग्गी से जिसको कहते हैं या तेज हंसिया हो या जो है CISH ने एक वेबर निकालने के लिए एक यंत्र बनाया है छोटा सा
1: जी,
2: तो उसको जो है इस्तेमाल करके आप जितने भी जाल झोंझ बने हुए हैं उनको निकाल के जमीन पे गिरा दीजिए। और साथ साथ है कि स्प्रे आप करेंगे भी, पेड़ पे भी स्प्रे करेंगे और जमीन पे जो लार्वी गिरे रहेंगे उनके ऊपर भी स्प्रे करेंगे। और ये स्प्रे जो होगा आपको लेमडा साइलोथ्रिन का जो है 1 ml/L 1 ml/L के हिसाब से इसका छिड़काव आप करें। और इसके अलावा आप क्विनोलफॉस का भी छिड़काव कर सकते हैं जो कि 2 ml/L के हिसाब से होगा।
1: डॉक्टर साहब, जमीन की सतह पर भी छिड़काव होना?
2: जमीन की सतह पर भी बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि जो जाले के अंदर कीट रहता है आप जब दवाई उसके ऊपर पौधों के ऊपर डालते हैं तो उसमें असर नहीं हो पाता है, इसीलिए झोंझ को गिरा दिया जाता है तो झोंझ के साथ साथ लार्वी जो हैं वो जमीन पर गिर जाते हैं, इसलिए जमीन पर भी स्प्रे करना बहुत आवश्यक है
1: ताकि उनकी पीढ़ी बढ़ने ना
2: पीढ़ी बढ़े नहीं मर जाएं। जितने झोंझ हैं उसको कलेक्ट करके उसको जला भी दीजिए।
1: डॉक्टर साहब, आम के बागों में कीट रोग प्रबंधन की बात चल रही है तो तना बेधक कीट भी एक समस्या।
2: तना बेधक कीट भी बहुत इम्पोर्टेंट जो है कीट है और ये इस समय बरसात में शुरू होता है और पेड़ के तने को जो है उसमें छेद करते हैं, इसकी जो सुंडी होती है लार्वी होती है वो छेद करती है और ये छेद जो है ऊपर और नीचे पौधे के तने में जाता है, जिसके कारण ऐसा होता है कि पौधा धीरे धीरे बाद में आपको देखेंगे अक्टूबर माह नवंबर माह महीने में कि सूखने लगता है
1: जी।
2: ये इसके अंदर तने को खा खा करके आप देखेंगे कि उसके जो छेद है उससे बाहर बुरादा निकल रहा है, ये इसकी पहचान है।
1: तो इसका प्रबंधन हो कैसे डॉक्टर साहब?
2: इसको तो जो है बहुत इसका आसान

0: उपाय है, जितने भी छेद हैं आप मैनुअली, जो जैसे साइकिल की तीली होती है, कड़ी जो लोहे की तीली होती है, उससे आप मैनुअली निकालिए तो बहुत से लार्वे निकल भी जाएंगे, उनको निकाल लीजिए।
1: डॉक्टर साहब, किसान भाइयों बहनों के मन में अभी भी ढेर सारे सवाल होंगे आम के बागों में कीट रोग प्रबंधन के बारे में। अगर इसके लिए आपसे सीधे संपर्क करना चाहें तो अपना मोबाइल नंबर बता दें।
0: मेरा मोबाइल नंबर है 98 38 93 21 88, 9838932188, 98 38 93 21 88।
1: डॉक्टर AK मिश्रा साहब, आज आप कार्यक्रम में आए और आम के बागों में कीट रोग प्रबंधन क्या कुछ करें, कैसे करें, इसके बारे में आपने ढेर सारी जानकारी दी। डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद।
2: आम के बागों में कीट रोग प्रबंधन, इस विषय पर कृषि चर्चा कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे भेंट वार्ता। डॉक्टर अशोक कुमार मिश्र से भेंट करता थे डॉक्टर सुशील कुमार राय। मीडियम वेव के मीटर पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी लखनऊ के कार्यक्रम नमस्ते लखनऊ में। बारी है कार्यक्रम सुविचार की। आज का विषय हंसने की कला। स्वर है डॉक्टर हरि प्रसाद दुबे का।
3: प्रसन्नता जीवन का अद्भुत सौंदर्य है। अंतःकरण की स्थिति का दूसरा नाम प्रसन्नता है। यह चित्त हल्का करने का सात्विक भाव है। निश्चल और सरलता इसका प्रथम उपाय है। तत्काल आनंद देने के अलावा यह आयु और कीर्ति बढ़ाती है। प्रसन्नता आंतरिक संवेदना है। शरीर और मन के लिए प्रसन्नता स्वास्थ्यवर्धक और मित्रतुल्य है। यह बुद्धिमत्ता बढ़ाती है। प्रसन्नता प्राप्त करना अपने वश में है। इसके लिए बार बार सदप्रयास करना पड़ता है। ऐसा न करने पर प्रसन्नता के स्थान पर तनाव बढ़ने लगता है। आंतरिक प्रसन्नता सुखी बनाती है। बड़े दुख को छोटी प्रसन्नता कम करती है। आवश्यकताएं कम करना प्रसन्नता के लिए वरदान है। इसके रसायन में संघर्ष की सफलता का रहस्य छिपा रहता है। प्रसन्न रहने का सबसे सरल उपाय है कि कुछ समय के लिए बालक बन जाएं। सरल चित्र आनंदमय स्वभाव वाले भगवान स्वरूप बच्चों के साथ तन्मयता में खेलकर आनंद का अनुभव करें। गीत भक्ति रस के संगीत प्रसन्नता बढ़ाते हैं। चेतना के विकास में एक विशेष गुण जो मनुष्य को पशु से ऊपर सिद्ध करता है वह है मनुष्य की हंसी। खिलखिलाकर हंसने का वरदान प्रकृति में मनुष्य को मिला है। यह चेतना की एक विलक्षण अवस्था है। दूसरों पर हंसना पीड़ादायक है, स्वयं पर हंसना आत्मबोध। हंसी गंभीरता और मूर्खता का विलोम है। जैन धर्म का जन्म ही हंसी से हुआ। एक निश्चल निर्मल हंसी प्रज्ञा और आत्मचेतना का सबसे प्रखर रूप है। हंसी से तनाव भागता है, इसीलिए हमारे पूर्वजों ने हंसी को उत्सव ही बना दिया। कृतज्ञता परोपकार और करुणा के बिना प्रसन्नता की हंसी नहीं आती। आंखें मिलाकर प्रसन्नता मिलती है। सच्ची हंसी की भाषा आह्लाद के व्याकरण से जन्म लेती है। हंसने के समय मनुष्य देवता हो जाता है। यह दुर्लभ संयोग दैवी गुणों के विकास से आता है। किसी के गुण की प्रशंसा करना, परोपकार करना और हंसने के भाव में विचार महान बनते हैं। हंसने की कला नैसर्गिक है, यह देव दुर्लभ गुण बनाती है। छोटे बच्चे दिन में 300 बार हंसने के कारण ही ईश्वर के रूप कहलाते हैं। वयस्क मात्र 17 बार हंसते हैं। दिन में कम से कम 3 बार खिलखिलाकर हंसने वाले चिकित्सक के पास नहीं जाते। हंसना व्यायाम है, इससे रस ग्रंथियां पाचक रस का निर्माण करती हैं। हंसना सकारात्मक और रचनात्मक क्रिया है। इससे एंडार्फिन दर्द निवारक रसायन का स्राव होता है। प्रसन्नता से जीवन के रंग खिल उठते हैं। यह एक नैसर्गिक उपहार और शाश्वत आनंद है। हम जितनी अधिक प्रसन्नता और हंसी लुटाते हैं वह उससे अधिक हमारे पास आती है। प्रसन्नता से परिपूर्ण व्यक्तित्व सम्मोहित करता है। हंसी मन की गांठें खोलती है। हंसने से फेफड़े दृढ़ होते हैं। प्रसन्नता यौवन का श्रृंगार है। यह लक्ष्य प्रदान करके निंदा निराशा से बचाती है। हंसना जीवन में एक योग है। हंसते समय नकारात्मक भाव विस्मृत हो जाते हैं। किसी को हंसाना एक बड़ी कला है। हंसने के क्रम में आता है मुस्कराना। यह शुद्ध हृदय का स्वभाव है। प्रसन्नता रस एवं आनंद की ज्योतिर्वान रेखा है। स्वाभाविक

0: मुस्कान अलौकिक प्रीति का संचार करती है। हंसने की कला मुखमंडल चमकाती है, इससे आत्मविश्वास बढ़ता है, कठिन समस्याओं का समाधान हंसी करती है, हृदय विराट बनाने के साथ सेवा करने की प्रेरणा देती है। प्रसन्नता की हंसी जीवन में उस औषधि की तरह है जो मनुष्य के दुखों और घावों को ठीक करने में सर्वाधिक प्रभावकारी है। हंसी वह चमत्कारिक योग है जिससे अनेक समस्याओं का समाधान स्वयं हो जाता है। हंसने की मूल आत्मा प्रकृति के इंद्रधनुषी रंग में है, चाहे पहली किरण में फूलों पर गुनगुनाते भ्रमर हों, तितलियां चहचहाते पक्षी हों, या मन के आंगन में खिली हुई प्रसन्नता। लय हंसी है, हंसना स्वाभाविक व्यायाम है, आकर्षित करने और संबंध को दृढ़ रखने में हंसने की कामना हर स्थिति में है। प्रसन्नता और हंसी जीवन का मंगल प्रभात है।
1: हंसने की कला, इस विषय पर अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सुविचार, आकाशवाणी लखनऊ से। ये है नमस्ते लखनऊ का सफर। सुबह के 6:15 हुए हैं। समय है भक्ति गीतों के साथ ईश्वर के अभिनंदन की। कार्यक्रम है आराधना।

के दरबार में दुनिया बदल जाती है और हाथों की लकीर भी बदल जाती है, और जो कोई भी दिल से उस ऊपर वाले महादेव भोलेनाथ देवों के देव का नाम लेता है, पल भर में उसकी तकदीर बदल जाती है। आराधना कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। कार्यक्रम की शुरुआत महादेव की आराधना के साथ।

व्यक्ति का हृदय परिवर्तन ही उसके दुखों का अंत है और मन की पीड़ा का हर क्षण प्रभु में विश्वास बढ़ाने का एक सुअवसर है।

यदि अभिभूत होना है तो ईश्वर प्रेम में हो जाओ। ईश्वर जीवन है, सत्य है, प्रकाश है, वो प्रेम है, वो सर्वोच्च है और शुभ है।

जब दुख घेरे तो ईश्वर का नाम लेना, जब दुनिया लगे कि मुंह मोड़ लेगी, अपने ईश्वर का ध्यान कर लेना। प्रभु का नाम जाप करते ही मन के सारे शंकाएं, सारे दुख दूर हो जाते हैं, क्योंकि ईश्वर करुणा के सागर हैं, और जब हम उसमें डुबकी लगाते हैं तो सारे दर्द, सारे कष्ट दूर हो जाते हैं।

इस भक्ति गीत के साथ ही संपन्न होती है आज की आराधना। आज आपने आराधना कार्यक्रम में जिन कलाकारों को सुना वो हैं जगजीत सिंह, लता मंगेशकर, सुरेश वाडकर और मौसमी दत्ता।

अपने रेडियो सेट पर आप हैं आकाशवाणी लखनऊ के साथ और ये है नमस्ते लखनऊ का सफर। ईश्वर भक्ति में एक और कार्यक्रम श्री रामचरितमानस गान।

चित्रकूट आए हुए सभी व्यक्तियों की एक ही कामना है कि गुरु, समाज तथा भाइयों सहित श्री राम का राजतिलक अवधपुरी में हो और उनके राज्यकाल में ही सबकी जीवन लीला वहीं समाप्त हो। अयोध्या वासियों की इस प्रेमाभिव्यक्ति पर ऋषि मुनि अपने योग वैराग्य को हे मानते हैं। श्री राम के प्रति प्रजाजन की इस निष्ठा और समर्पण की भावना से किसे ईर्ष्या नहीं होगी।

मिथिला नरेश के आगमन का समाचार सुनकर श्री राम सभा समेत आदरपूर्वक उठ खड़े हुए और लक्ष्मण गुरु तथा पुरवासियों को साथ लेकर उनकी अगवानी करने चले। राजा जनक ने वशिष्ठ तथा अन्य मुनियों के चरणों की वंदना की। श्री राम ने जनकपुर वासियों तथा राजपुरोहित शतानंद को प्रणाम किया और आदरपूर्वक उन्हें आश्रम ले चले।

अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस गान। गायक कलाकार सुरेश वाडिकर, संगीत निर्देशक सतीश भाटिया। मीडियम वेव 401.61 मीटर यानी 747 किलो हर्ट्स पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी लखनऊ। प्रायोजित कार्यक्रम उड़ान आप सुनेंगे हर मंगलवार को सायं 7:45 पर, और NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम आप सुनेंगे सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे से। मीडियम वेव के मीटर पर यह है आकाशवाणी लखनऊ। सुबह के 6:55 होने वाले हैं। सुनिए संस्कृत में समाचार दिल्ली केंद्र से बस कुछ ही पलों में।

अयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचिका निधिः झा। अथ वार्ताः। प्रधानमंत्री नरेंद्र

0: कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा, आज का विषय जरूरी है पैरा बैगनी सुरक्षा, यूवी सेफ्टी मंथ। जानकारी दे रही हैं नीना सोनकर।
1: श्रोताओं नमस्कार, मैं हूं नीना सोनकर और स्वास्थ्य चर्चा कार्यक्रम में एक बार फिर आप सबका स्वागत करती हूं। श्रोताओं आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे खतरे की जो हमारे आसपास हर दिन मौजूद होता है लेकिन हम उसे महसूस नहीं कर पाते हैं। वो दिखता नहीं है लेकिन उसका असर हमारी त्वचा पर, हमारी आंखों पर और हमारे शरीर पर बहुत गहराई से होता है। आज हम बात करेंगे पराबैंगनी सुरक्षा की, यानी यूवी सेफ्टी की। श्रोताओं सूरज की रोशनी जीवन के लिए जरूरी है, ये ऊर्जा देती है, रोशनी देती है और हमारे शरीर में विटामिन डी के निर्माण में मदद करती है। लेकिन यही सूरज जब तीव्र रूप से चमकता है और जब हम बिना किसी सुरक्षा के उसकी किरणों के संपर्क में आते हैं तब यही जीवनदायिनी ऊर्जा हमारे लिए अदृश्य खतरा बन जाती है। यूवी किरणें यानी अल्ट्रा वायलेट रेज सूरज की उन्ही किरणों का हिस्सा है जो हमारे लिए हानिकारक हो सकती है। इन किरणों का कोई रंग नहीं होता, कोई गंध नहीं होती और ये दिखती भी नहीं है लेकिन इनका असर गहरा और दीर्घकालिक हो सकता है। यूवी किरणों के तीन मुख्य प्रकार होते हैं, यूवीए, यूवीबी और यूवीसी। इनमें से यूवीए और यूवीबी हमारी त्वचा और आंखों तक पहुंचते हैं, यूवीसी तो वातावरण में ही रुक जाती है लेकिन यूवीए और यूवीबी धरती तक पहुंच जाती है और सीधे हमारी त्वचा से टकराती है। यूवीए किरणें हमारी त्वचा की गहराई तक जाकर झुर्रियां, असमय बुढ़ापा और त्वचा की कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाती हैं। वहीं यूवीबी किरणें सतही परत को झुलसा सकती हैं और यही स्किन कैंसर जैसी गंभीर स्थितियों का कारण भी बन सकती हैं। अब आप सोच सकते हैं कि ये तो केवल समुद्र किनारे या पहाड़ों पर धूप सेकने वालों की समस्या होगी लेकिन ऐसी बात नहीं है। हम रोजमर्रा की जिंदगी में चाहे सब्जी लेने जाएं, छत पर कपड़े सुखाएं, खेतों में काम करें या बाइक से दफ्तर जाएं, हर बार जब हम बिना किसी सुरक्षा के धूप में जाते हैं तो यूवी किरणें हमारे साथ होती हैं और ये खतरा ठंडे मौसम में भी उतना ही होता है क्योंकि यूवी किरणें केवल गर्मी से नहीं सूरज की तीव्रता और समय से जुड़ी होती हैं। विशेषज्ञ बताते हैं कि सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर 4 बजे तक यूवी किरणों का प्रभाव सबसे अधिक होता है। इस समय सीधी धूप में रहना हमारे शरीर की त्वचा, आंखों और यहाँ तक कि हमारी प्रतिरक्षा तंत्र यानी इम्यून सिस्टम को भी प्रभावित कर सकता है। लंबे समय तक यूवी किरणों के संपर्क में आने से आंखों में मोतियाबिंद, रेटिना को नुकसान और दृश्य क्षमता में कमी हो सकती है। यही नहीं, ये हमारे होठों, गर्दन, कान और हाथ पैरों की त्वचा को भी सूखा, काला और खुरदुरा बना सकती है और कई बार यही छोटी छोटी क्षति आगे चलकर कैंसर जैसी बीमारी का कारण बनती है। लेकिन अच्छी बात यह है कि यूवी किरणों से बचाव संभव है और इसके लिए हमें किसी दवा की जरूरत नहीं होती, बस थोड़ी समझ और सावधानी की जरूरत होती है। सबसे पहला उपाय है सूरज की तीव्र धूप में जाने से बचना, खासकर दोपहर के समय। अगर बाहर जाना ही पड़े तो छाया में चलें, छाता लेकर जाएं या टोपी पहने। दूसरा, सनस्क्रीन का प्रयोग करें। ये कोई शहरी फैशन नहीं है बल्कि ये एक वैज्ञानिक उपाय है। 30 या उससे अधिक SPF वाला सनस्क्रीन इस्तेमाल करें और उसे हर 2 घंटे में दोबारा लगाएं, खासकर अगर आप पसीना बह रहे हों या पानी में हों। तीसरा, सही कपड़े पहने, हल्के, ढीले और पूरी बाहों वाले कपड़े, सिर को ढकने वाली टोपी और आंखों के लिए यूवी प्रोटेक्शन वाला चश्मा, ये सब मिलकर आपकी त्वचा और आंखों की रक्षा करते हैं। चौथा, बच्चों का खास ध्यान रखें। बच्चों की त्वचा नाजुक होती है और उन पर यूवी किरणों का असर जल्दी होता है। जब वे खेलते हैं या स्कूल जाते हैं तो सुनिश्चित करें कि उनके पास टोपी, चश्मा या कम से कम धूप से बचने के कुछ उपाय हों। श्रोताओं, हम में से बहुत से लोग यूवी सुरक्षा को केवल स्किन टोन बचाने या काला ना पड़ने जैसी बातों से जोड़ते हैं लेकिन असल चिंता रंग की नहीं स्वास्थ्य की है। त्वचा का झुलसना केवल एक लक्षण है, इसके पीछे चल रही आंतरिक क्षति वो है जो हमें वर्षों बाद दिखाई देती है। इसलिए ये जरूरी है कि हम इस विषय को सजगता से लें और खुद भी सावधानी बरतें और अपने परिवार को भी इससे अवगत कराएं। श्रोताओं, अब बात करते हैं समाज के उस हिस्से की जो सबसे ज्यादा यूवी के संपर्क में आता है, यानी हमारे खेतों में काम करने वाले किसान, निर्माण स्थलों पर मजदूरी करने वाले श्रमिक और दिन भर सड़कों पर डिलीवरी या ट्रैफिक संभालने वाले लोग। इनके पास

0: ना तो सनस्क्रीन है और ना ही चश्मा और ना ही जानकारी। यूवी सेफ्टी का उद्देश्य यही है कि हम इन लोगों तक जानकारी पहुंचाएं और संभव हो तो उनके लिए टोपी, स्कार्फ या सनस्क्रीन जैसी छोटी चीजें उपलब्ध कराएं, क्योंकि स्वास्थ्य एक व्यक्ति की जिम्मेदारी नहीं है, पूरे समाज की जिम्मेदारी होती है। नीना सोनकर को दीजिए अनुमति। सभी को नमस्कार।
1: जरूरी है पराबैंगनी सुरक्षा, यूवी सेफ्टी मंथ के अंतर्गत इस विषय पर जानकारी दे रही थी नीना सोनकर कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा में। मीडियम वेव के मीटर पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी लखनऊ के कार्यक्रम। प्रस्तुत है आज दिन भर प्रसारित होने वाले प्रमुख कार्यक्रमों के बारे में एक संक्षिप्त जानकारी।

शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में आज के कलाकार होंगे ऋषिकेश गांगुर्डे, जिनके स्वर में ख्याल गायन आप सुन सकेंगे सुबह 7:31 पर और रात्रि 10:30 पर। श्रृंखला नाटक ये कार्यक्रम लेकर आएंगे रात्रि 10:00, जिसके अंतर्गत सुनेंगे धीरज नाथ त्रिपाठी का लिखा नाटक सूखे के बीज। संपादन और प्रस्तुति सहयोग कीर्ति श्रीवास्तव का होगा और निर्देशक है अतीश श्रीवास्तव। रात्रि 8:10 पर सुगम संगीत के कार्यक्रम में सुनेंगे प्रियंका श्रीवास्तव के स्वर में भजन और हिंदी कार्यक्रम का समय होगा रात्रि 8:00। आज इस कार्यक्रम में सुनेंगे वार्ता दलित चेतना के संवाहक बाबू जगजीवन राम। स्वास्थ्य वार्ता ये कार्यक्रम लेकर आएंगे शाम 7:31 पर। आज सुनेंगे डॉक्टर पूनम तिवारी की वार्ता गट हेल्थ और हमारा इम्यून सिस्टम। साथ ही होगी संजय यादव की वार्ता पेन किलर को कहीं ना, फिजियोथेरेपी को हाँ। इसी के साथ ही हमारी सायंकालीन सभा के कार्यक्रम में शाम 5:10 पर होगा इन्फोटेनमेंट पर आधारित कार्यक्रम युवा तरंग। शाम 5:45 पर लेकर आएंगे कार्यक्रम नई उड़ान, जिसमें सुनेंगे ओबी आधारित कार्यक्रम संकल्प वाणी @1942 नमामि गंगे जनमन का महाअभियान। साथ ही कार्यक्रम में मुद्दा लाइव का विषय होगा एक पौधा अनेक संभावनाएं। साथ ही साथ कार्यक्रम में समय के साथ जानेंगे अमृत अवसर, विकसित भारत संवाद, विकसित भारत प्रगति बुलेटिन और अगली उड़ान के बारे में। लोकायतन कार्यक्रम का प्रसारण समय होगा शाम 6:30 पर। आज इस कार्यक्रम में सुनिए भेंटवार्ता डेंगू बुखार कारण और निवारण। इस विषय पर डॉक्टर सतीश कुमार से भेंट करता होंगे रियाज अहमद। साथ ही सुनेंगे लोकगीत और अपनी बात और होगी चर्चा ऊर्जा संरक्षण विषय पर। किसान भाइयों का अपना कार्यक्रम खेती किसानी लेकर आएंगे शाम 6:50 पर। किसान क्रेडिट कार्ड योजना, इस विषय पर चर्चा के साथ किसान भाई सुनेंगे भेंटवार्ता बरसात में पशुओं की बीमारियां कारण और निवारण। इस विषय पर डॉक्टर जयकेश कुमार पांडे से भेंट करता होंगे डॉक्टर सुशील कुमार राय। साथ ही कार्यक्रम में जानेंगे जानकारी की बातें, कृषि मौसम, बाजार भाव और सुनेंगे लोकगीत। किसान भाइयों के लिए विज्ञान और किसान कार्यक्रम का प्रसारण समय होगा दोपहर 2:30 पर, जिसमें होगी भेंटवार्ता खरीफ में सब्जी उत्पादन। इस विषय पर कौशल कुमार नीरज से भेंट करता होंगे डॉक्टर सुशील कुमार राय। महिलाओं के लिए घर आंगन कार्यक्रम लेकर आएंगे अपराह्न 1:15 पर। विभिन्न विषयों पर चर्चा के साथ सुनेंगे ज्ञानवती दीक्षित की वार्ता प्रकृति के रंग हरियाली के संग। साथ ही सुनेंगे लोकगीत। आकाशवाणी लखनऊ से लोक संगीत के कार्यक्रम में आज की कलाकार होंगी पूजा तोमर। इनके स्वर में अवधि लोकगीत आप सुनेंगे दोपहर 2:45 पर लोक माधुरी कार्यक्रम में और सुबह 9:50 पर कार्यक्रम लोक रंग में। सुबह 9:30 पर उर्दू कार्यक्रम के अंतर्गत सुनेंगे आकाशवाणी लखनऊ की पेशकश गुफ्तगू आमदनी अठन्नई खर्चा रुपया, पेशकश आसिफ इकबाल की होगी। सुबह 9:15 पर जिले की हलचल कार्यक्रम में आज सुनेंगे बागपत और चित्रकूट जिले की हलचल। और इसके साथ ही साथ आपके मेल आपके गीत कार्यक्रम लेकर आएंगे सुबह 8:45 पर। कुछ तुम कहो कुछ हम कहें का समय होगा दिन में 11:00 और दोपहर 1:50 पर होगा कार्यक्रम जवानों के लिए। तो ये थी आकाशवाणी लखनऊ से आज पूरे दिन प्रसारित होने वाले प्रमुख कार्यक्रमों की रूपरेखा। मीडियम वेव 401.61 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज़ पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी लखनऊ। सुबह की 7:10 हुए हैं, प्रस्तुत है कार्यक्रम विविधा।

विविधा कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त कीर्ति विश्वकर्मा। नमस्कार। और विविधा कार्यक्रम में आज का विषय, यात्राएं करें समृद्ध। दोस्तों, रोजमर्रा की तनावपूर्ण और भागदौड़ भरी जिंदगी में ढेरों कामकाज के बीच छुट्टी के आरामदायक पल और इन सुकून भरे दिनों में किसी पर्यटन स्थल की एक छोटी सी यात्रा तन मन में एक नई स्फूर्ति का संचार कर देती है ना? और ऐसा इसलिए क्योंकि इस यात्रा के दौरान हम न सिर्फ प्रकृति के खूबसूरत नज़ारों को करीब से महसूस करते हैं, बल्कि नई जगहों पर जाना, जाने अनजाने लोगों से मिलना, किसी ऐतिहासिक या महत्वपूर्ण स्थानों के बारे में जानना हमें इस विविधताओं से भरी दुनिया से रूबरू कराती है। हमें नए नए अनुभव मिलते हैं और यही तो है यात्राओं की खूबी कि हमारे जीवन को कई स्तरों पर ये समृद्ध बनाती है। सबसे बड़ी बात कि ये हमें किताबी ज्ञान से परे नई चीजों को सीखने का अवसर देती है। जरा सोचिए ना, जिस ताजमहल के चित्र को किताबों में देखा हो, जिस समंदर की लहरों को सिर्फ कहानियों में महसूस किया हो, जब वो नजारा आंखों के सामने हो तो कैसा लगेगा? दोस्तों, इतिहास गवाह है कि यात्रा के दौरान ही नए देशों की खोज हुई, मीलों की दूरियां मिट गईं, विभिन्न सभ्यताओं का प्रसार हुआ, विविध विचारधाराओं का आदान प्रदान हुआ। वास्को डी गामा से लेकर मेगस्थनीज, फाहियान, हुएनसांग, अल्बरूनी, मार्को पोलो, इब्न बतूता, ये सभी वो विदेशी यात्री हुए जिनकी भारत यात्रा वृत्तांत से ऐतिहासिक दस्तावेजों में हमारी भारत भूमि के सदियों वर्ष पहले के सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और राजनीतिक परिदृश्यों का जीवंत वर्णन मिलता है और जिसकी जानकारी हमारे ज्ञान भंडार को समृद्ध करती है कि हम आज अपनी भारतीय सभ्यता और संस्कृति पर गर्व महसूस कर रहे हैं। Thank you.

शाब्दिक अर्थ में देखें तो दोस्तों यात्रा एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने की मात्र एक प्रक्रिया या गतिविधि है, लेकिन भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक रूप से यात्रा केवल एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना नहीं बल्कि ये मानव जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो कई मायनों में फायदेमंद है और हमें पारिवारिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और मानसिक रूप से समृद्ध बनाती है। दोस्तों हम यात्रा क्यों करते हैं? इसलिए ना, ताकि हमें नई चीजें खोजने का आनंद मिले, शांतिपूर्ण सुकून के पल, नए अनुभव, नई जगहों की खोज करें ताकि नए नए लोगों से जुड़े और यादगार पल बनाए। तो यात्रा का सबसे बड़ा लाभ ये है कि ये आपको अपने आरामदायक दायरे से बाहर निकालती है, खासकर यदि आप किसी ऐसी जगह की यात्रा कर रहे हैं जहां आप पहले कभी नहीं गए हों, तो सब कुछ ताज़ा और नया नया लगता है। आप नए परिदृश्य देखते हैं और जीवंत रंगों का अनुभव करते हैं, नया संगीत सुनते हैं, नई नई भाषाएं सुनते हैं, नए खाने की खुशबू और स्वाद आपकी सभी इंद्रियों को झकझोर देती है। सब कुछ बहुत ही रोमांचक और आश्चर्य से भरा होता है। बाजार में मूल भाव कैसे करें, रास्ता कैसे खोजें, ये सारी छोटी छोटी चुनौतियां सभी सुखद लगती हैं। ये यात्राएं हमारे जीवन का साहसिक अनुभव देती हैं और कई बार हमें रहने को स्थान नहीं उपलब्ध होता, कई बार खाने का खाना हमारी पसंद का नहीं होता, तो ये यात्राएं हमें सिखाती हैं कि हम रोज के जीवन की मुसीबतों को कैसे झेल सकते हैं। ऐसी परिस्थिति में हम सहनशीलता के साथ काम करें, मुसीबतों का हल निकालें। और यही नहीं, यात्रा हमें साथी मनुष्यों और जानवरों के प्रति अधिक दयालु होना सिखाती है। दोस्तों आज हम किसी टीवी रिपोर्ट को देखते हैं या रील्स देखते हैं, वीडियोस देखते हैं और इस टेक्नोलॉजी के ज़माने में सभी चीज़ें सभी जगह हमारे पास लगती हैं, लेकिन इसके द्वारा हम दूसरों के दृष्टिकोण से परिचित होते हैं। लेकिन आप जब खुद वास्तव में किसी स्थान को जाकर देखेंगे तो आपके द्वारा किसी निश्चित स्थान पर की गई यात्रा जो आपकी राय आप अपने मन से निकालेंगे ना, वो आपको आपके सफल जीवन के लिए बहुत ही सुखद होगा और आपको आत्म खोज की राह पर ले जाएगा। इसलिए अपनी जिंदगी की जिम्मेदारियों और कर्तव्यों और कर्मों के बीच समय समय पर कुछ दिनों के लिए छुट्टी या फिर लंबी यात्रा जरूर निकले, चाहे जहां आप वहां यात्रा करें, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकले, पैसे बचाए भी और

खर्च भी करें, कोई नई भाषा सीखें, आध्यात्मिक जीवन शैली अपनाएं, कृतज्ञता की भावना विकसित करें और ये जो अनमोल जीवन हमें मिला है ना, उसमें दुनिया भर के अनुभवों को बटोर कर यादगार पलों के साथ जिंदगी के सफर को खुशनुमा बनाएं। वो कहते हैं ना, जीवन चलने का नाम चलते रहो सुबह शाम। तो आप भी अपने जीवन में किसी नई जगह की यात्रा को शामिल करें और अपने अनुभवों को समृद्ध बनाएं।

दोस्तों, यात्राएं हमारे जीवन को तरोताजगी से भर देती हैं, और साथ ही साथ हम इस इंटरनेट के ज़माने में जहां गूगल की नज़रों से टेक्नोलॉजी के ज़रिए घर बैठे बैठे आपस में हम दुनिया का अनुभव कर लेते हैं, लेकिन अगर हम प्रत्यक्ष रूप से किसी जगह पर जाएं तो जो अनुभव हमें प्राप्त होगा और जिन चुनौतियों का अवसर हमें मिलेगा, हम उस चुनौतियों को पार करेंगे, वो हमारे लिए ज़्यादा सुखदायक होगा। विविधा कार्यक्रम में आज बस इतना ही। अपनी रेडियो दोस्त कीर्ति को अब दीजिए इजाजत। मिलेंगे नए विषय के साथ अगली बार। तब तक के लिए एक नई यात्रा के लिए मंगल कामना, शुभ कामना।

विविधा। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम विविधा, मीडियम वेव के मीटर पर यह है आकाशवाणी लखनऊ। सुबह के 7:20 होने को हैं। थोड़ी देर में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार, जिसे हमारे गोरखपुर केंद्र से रिले किया जाएगा। कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार।

0: महात्मा गांधी ने कहा था, अगर आप कुछ नहीं करोगे तो आपके पास कोई परिणाम नहीं होगा।
1: सफलता एक सोच है, अगर आप चाहें तो उसे आप हासिल कर सकते हैं। महात्मा गांधी।
0: जीवन का लक्ष्य है आत्मविकास। अपने स्वभाव को पूर्णतः जानने के लिए ही हम इस दुनिया में आए हैं। ऑस्कर वाइल्ड।
1: अगर हम अपने सामर्थ्य के अनुसार कर्म करें तो खुद को भी अचंभित कर सकते हैं। थॉमस एडिसन।
0: हर तरफ फैल रहा है कूड़ा कचरा, दिन प्रतिदिन पर्यावरण पर गहराता जा रहा है खतरा।
1: प्रदूषण की समस्या आज इतनी बड़ी हो गई है कि पर्यावरण के रास्ते में बाधक बनकर खड़ी हो चुकी है। निल्सन मंडेला।
0: प्रदूषण एक गंभीर समस्या है जिसे ज्यादा टाला नहीं जा सकता है। प्रदूषण को मिटाना है, पर्यावरण को स्वच्छ बनाना है।
2: असली शिक्षा एक इंसान की गरिमा को बढ़ाती है, उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता तो ये दुनिया रहने के लिए कहीं अच्छी जगह होती। APJ अब्दुल कलाम।
3: वृद्धों का सम्मान करें, मर्यादा का ध्यान रखें, बड़े बुजुर्गों की करें मदद, आशीर्वाद मिले वही बड़ी दौलत।

आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं वेद प्रकाश पाठक। पहले मुख्य समाचार। भाजपा के

0: राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के साथ लखनऊ में आयोजित शक्ति केंद्र संयोजक सम्मेलन में शामिल हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, कहा विकासोन्मुखी और जन कल्याणकारी कार्य कर रही है डबल इंजन सरकार। मुख्यमंत्री ने योगी की पाती के जरिए बच्चों और युवाओं से खेलों को अपनी दिनचर्या का अंग बनाने की अपील की, कहा उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों के सुरक्षित भविष्य के लिए नौकरी दे रही है सरकार। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत रोजगार आजीविका मिशन ग्रामीण अधिनियम के तहत राज्यों को 25,000 करोड़ रुपए की सहायता राशि जारी की और श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की बैठक आज, कई अहम प्रशासनिक और वित्तीय मामलों पर होगी चर्चा। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल लखनऊ के राष्ट्र प्रेरणा स्थल में आयोजित शक्ति केंद्र संयोजक सम्मेलन में शामिल हुए। कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक भी मौजूद रहे। सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री योगी ने कहा कि डबल इंजन सरकार विकासोन्मुखी और जन कल्याणकारी कार्य निरंतर कर रही है।
1: आज जो विकास दिखाई दे रहा है, आज जो सुरक्षा का मॉडल है, आज जो सुशासन का मॉडल है, और जिस प्रकार से डबल इंजन की सरकार समाज के प्रत्येक तबके के लिए, क्या वो युवा हो, क्या वह आधी आबादी बहन और बेटियों के स्वावलंबन और सुरक्षा से जुड़ा हुआ मुद्दा हो, क्या वह अन्नदाता किसान हो या गरीबों तक शासन की योजना का लाभ बिना भेदभाव के उपलब्ध करवाने का कार्य बिना रुके हुए, बिना डिगे हुए, बिना झुके हुए, बिना थके हुए निरंतर पहुंचाने का कार्य कर रही है।
0: इस अवसर पर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा कि विगत समय में जिन विषयों को लेकर पूरी दुनिया में अस्थिरता रही, हमारा नेतृत्व सजग रूप से जनता की चिंता करता रहा।
2: पिछले समय में जिन विषयों को लेकर पूरे विश्व में विक अस्थिरता रही, फिर भी हमारा नेतृत्व सजग रूप से हमारे लोगों की चिंता करता रहा। वैश्विक अस्थिरता के बावजूद भी हमारे नेता माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जनता को कोई तकलीफ नहीं होने दिया। हमने ये चिंता की कि विश्व में कोई भी देश किसी भी प्रकार से काम करे, भारत की राजनीतिक और डिप्लोमेटिक राजनीति हमेशा सबको लेकर साथ चलने की रही।
0: भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने कल लखनऊ में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं, पूर्व अध्यक्षों और एनडीए के सहयोगी दलों के साथ महत्वपूर्ण बैठक की। इस दौरान वर्ष 2027 विधानसभा चुनाव की रणनीति पर चर्चा की गई। मीडिया से बात करते हुए भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन ने सेवा और विकास के एजेंडे पर विशेष जोर दिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज योगी की पाती के माध्यम से बच्चों और युवाओं से खेलों को अपनी दिनचर्या का अभिन्न अंग बनाने की अपील की है। एक रिपोर्ट।
3: सोशल मीडिया पर एक संदेश के माध्यम से मुख्यमंत्री ने कहा है कि खेलने वाला ही खिलता है। सरकार उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों के सम्मान एवं सुरक्षित भविष्य के लिए सरकारी नौकरी प्रदान कर रही है। श्री योगी ने कहा कि आज प्रत्येक ग्राम पंचायत में खेल मैदान, ब्लॉक में मिनी स्टेडियम तथा प्रत्येक जनपद में आधुनिक स्टेडियम विकसित किए जा रहे हैं। मेरठ में मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय तैयार है। उन्होंने अभिभावकों से विशेष आग्रह किया है कि बच्चों की खेल प्रतिभाओं को कभी दबाएं नहीं। खेल केवल पदक नहीं दिलाता, अपितु नशे जैसी बुराइयों से बच्चों और युवाओं को दूर रखने के लिए एक सबसे सशक्त ढाल बनता है। युवाओं के लिए खेल आज कैरियर में सपनों को साकार करने का भी माध्यम है। समाचार कक्ष से विवेक सिंह।
0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। यह समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR न्यूज _GKP पर भी उपलब्ध है। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन ग्रामीण 2025 के 1 जुलाई से सफलतापूर्वक लागू होने पर प्रसन्नता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि विकसित भारत जीराम जी को पूरे देश में सिर्फ एक दिन में लागू कर दिया गया। केंद्रीय मंत्री ने कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस मिशन के अंतर्गत राज्यों के लिए 25,000 करोड़ रुपए की सहायता राशि जारी की।

0: मनरेगा को पूरे देश में लागू करने में 3 साल लगे थे, लेकिन मुझे आप सब पर गर्व है, 1 साल 2 साल नहीं, पहले दिन ही विकसित भारत जी राम जी योजना एक साथ पूरे देश में लागू हो गई। 100 दिन नहीं, अब 125 दिन रोजगार, 5 साल में 7.5 लाख करोड़ से ज्यादा की राशि 2,86,000 पंचायतों में ठीक से लग गई, तो गांव संपूर्ण विकसित हो जाएंगे, समृद्ध और विकसित गांव का निर्माण हो जाएगा।
1: श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने आज अपने सदस्यों की एक बैठक बुलाई।

0: गांव संपूर्ण विकसित हो जाएंगे, समृद्ध और विकसित गांव का निर्माण हो जाएगा।
1: श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने आज अपने सदस्यों की एक बैठक बुलाई है। इस बैठक में कई अहम प्रशासनिक और वित्तीय मामलों पर चर्चा की जाएगी। एक रिपोर्ट।
2: 28 जून को जारी एक आधिकारिक सूचना के अनुसार बैठक के एजेंडे में महासचिव चंपत राय और न्यासी डॉक्टर अनिल मिश्रा के त्याग पत्रों पर विचार विमर्श करना भी शामिल है। सदस्यों को न्यास की दान पेटियों के माध्यम से मिले दान की गणना के संबंध में SIT की अंतरिम रिपोर्ट के बारे में भी जानकारी दी जाएगी। बैठक में राम मंदिर के भविष्य के प्रबंधन से संबंधित व्यवस्थाओं पर भी विचार विमर्श किया जाएगा। एजेंडा का एक महत्वपूर्ण बिंदु वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए आय व्यय वितरण, बैलेंस शीट और अन्य वित्तीय दस्तावेजों की प्रस्तुति और अनुमोदन शामिल है। विज्ञप्ति के मुताबिक अध्यक्ष की अनुमति से किसी अन्य मामले पर भी चर्चा हो सकती है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: इस बीच अयोध्या के श्रीराम मंदिर चढ़ावा मामले में विवेचक ने कल जिला कारागार में 8 आरोपियों में से 5 से करीब 6 घंटे तक पूछताछ की। उत्तर प्रदेश आम महोत्सव 2026 का कल इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान लखनऊ में समापन हो गया। इस अवसर पर प्रदेश के उद्यान मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने कहा कि सरकार किसानों की आय बढ़ाने और यूपी के आमों को वैश्विक पहचान दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है। गन्ना किसानों और उनके परिवारों को सामाजिक सुरक्षा देने के उद्देश्य से 11 जुलाई तक प्रदेश की सहकारी गन्ना विकास समितियों द्वारा विशेष सुरक्षा जागरूकता और नामांकन महाअभियान संचालित किया जा रहा है। एक रिपोर्ट।
3: प्रदेश की सहकारी गन्ना विकास समितियां इस अभियान की मुख्य नायक के रूप में कार्य करेंगी। समितियां अब सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के प्रचार प्रसार, जागरूकता, नामांकन तथा लाभार्थियों तक योजनाओं की पहुंच में अग्रणी भूमिका निभाएंगी। समितियां केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने वाली प्रभावी संस्थागत व्यवस्था के रूप में स्थापित होंगी। अभियान के माध्यम से किसानों और उनके परिवारों को प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, अटल पेंशन योजना सहित केंद्र सरकार की विभिन्न सामाजिक योजनाओं से जोड़ते हुए आर्थिक सुरक्षा, वित्तीय समावेशन और भविष्य की सामाजिक स्थिरता सुनिश्चित की जाएगी। अभियान के दौरान सभी समिति परिसरों में बैंकों, इफ्को, चीनी मिलों और अन्य सहयोगी संस्थाओं के संयुक्त सहयोग से विशेष सहायता और नामांकन काउंटर स्थापित किए जाएंगे। ये अभियान विकसित भारत, विकसित उत्तर प्रदेश के संकल्प को गति देने के साथ साथ किसानों के समग्र कल्याण की दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगा। समाचार कक्ष से फजल इनाम।
1: प्रदेश भर में चल रहे वृक्षारोपण अभियान के तहत कल सिद्धार्थनगर जिले में आयोजित एक कार्यक्रम में वहां के सांसद जगदम्बिका पाल ने भी हिस्सा लिया। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा दिए गए वृक्षारोपण के लक्ष्य को जिले में जुलाई माह में पूरा कर लिया जाएगा।
4: उत्तर प्रदेश के सरकार के मुख्यमंत्री योगी जी के द्वारा सिद्धार्थनगर के लिए 45 लाख पौधों को रोपित करने का लक्ष्य है, जिसमें अभी तक 6.25 लाख आज पहली जुलाई से हो चुका है और 12 जुलाई को पूरे प्रदेश के स्तर पे और सिद्धार्थनगर में सभी मंडलों में बड़े व्यापक रूप से वृक्षारोपण अभियान होगा।
1: मौसम विभाग ने इस सप्ताह प्रदेश के पूर्वी और पश्चिमी जिलों में बारिश जारी रहने की संभावना जताई है। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के साथ लखनऊ में आयोजित शक्ति केंद्र संयोजक सम्मेलन में शामिल हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, कहा विकासोन्मुखी और जन कल्याणकारी कार्य कर रही है डबल इंजन सरकार। मुख्यमंत्री ने योगी की पार्टी के जरिए बच्चों और युवाओं से खेलों को अपनी दिनचर्या का अंग बनाने की अपील की, कहा उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों के सुरक्षित भविष्य के लिए नौकरी दे रही है सरकार। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने विकसित भारत रोजगार आजीविका मिशन ग्रामीण अधिनियम के तहत राज्यों को 25,000 करोड़ की सहायता राशि जारी की। और श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की बैठक आज कई अहम प्रशासनिक और वित्तीय मामलों पर होगी चर्चा। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।
5: असली शिक्षा एक इंसान की गरिमा को बढ़ाती है, उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है।

0: यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता तो यह दुनिया रहने के लिए कहीं अच्छी जगह होती। एपीजे अब्दुल कलाम। असली शिक्षा एक इंसान की गरिमा को बढ़ाती है, उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता तो यह दुनिया रहने के लिए कहीं अच्छी जगह होती। एपीजे अब्दुल कलाम।
1: बढ़ते हुए यह धुएं से है सब परेशान, शुद्ध वायु दुर्लभ, खतरे में है मनुष्य की जान। कूड़ा और प्लास्टिक जो लोग जलाएं, प्रदूषण के कारण बन जाएं, सांस लेने में तकलीफ आए, आरोग्य को हानि पहुंचाए।
2: मीडियम वेव 401.6 मीटर यानी 747 किलो हर्ट्ज पर यह है आकाशवाणी लखनऊ, धड़कन देश की। नमस्ते, लखनऊ के सफर में स्वागत है आपका फिर एक बार। प्रस्तुत है शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम, लीजिए सुनिए ऋषिकेश गांगुड़े के स्वर में ख्याल गायन। राग है रामकली, जिसमें विलंबित रचना एक ताल में निबद्ध है और द्रुत रचना तीन ताल में।

ऋषिकेश गांगुड़े के स्वर में अभी आप सुन रहे थे राग रामकली में ख्याल गायन। श्रोताओं, आपको बता दें, ऋषिकेश गांगुड़े के स्वर में ख्याल गायन आप रात्रि 10:30 पर भी सुन सकते हैं। इसी के साथ ही शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम के साथ नमस्ते लखनऊ का आज का अंक भी यहीं समाप्त होता है।

मीडियम वेव 401.6 मीटर यानी 747 किलो हर्ट्स पर। यह है आकाशवाणी लखनऊ, धड़कन देश की।

प्रायोजित कार्यक्रम उड़ान आप सुनेंगे हर मंगलवार को सायं 7:45 पर और NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम आप सुनेंगे सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे से।

अपने रेडियो सेट पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी लखनऊ धड़कन देश की। सुबह के 8 बजने को है, सुनिए हिंदी में समाचार पत्रिका समाचार प्रभात, दिल्ली केंद्र से रिले किया जाएगा बस कुछ ही पलों में।

0: कि एक एक बूंद को हमें बचाना है। तो मेरा खास आग्रह है, वर्षा का बूंद बूंद पानी हम मिलकर के बचाएं।
1: जल है तो हम है, आइए घरों ऑफिसों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग तकनीक अपनाएं। रिचार्ज पिट और शाफ्ट बनवाएं, अनुपयोगी बोरवेलों को ठीक करें, जलाशयों से गाद निकालें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। इस बारिश आइए जुड़े कैच द रेन अभियान से।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा आज से शुरू हो रही है। भारत जिनेवा में उपभोक्ता संरक्षण कानून और नीति पर अंतर सरकारी विशेषज्ञ समूह के नवे सत्र की अध्यक्षता करेगा। भारत ब्रिक्स की अपनी अध्यक्षता में केरलम के कोच्चि में आज से शुरू हो रही महिला कार्य समूह की बैठक की मेजबानी करेगा। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्यों की आज बैठक होगी। भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर समग्र राष्ट्र की भावभीनी श्रद्धांजलि। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें साहस, राष्ट्रवाद और निस्वार्थ सेवा का शाश्वत उदाहरण बताया। और फीफा विश्व कप में 5 बार के चैंपियन ब्राजील की नॉर्वे से 2-1 से हार के बाद नेमार जूनियर ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास की घोषणा की। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा आज से शुरू हो रही है। पहले चरण में श्री मोदी आज इंडोनेशिया पहुंचेंगे। ये प्रधानमंत्री की 4थी इंडोनेशिया यात्रा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मई 2018 में दोनों देशों के संबंधों के व्यापक रणनीतिक भागीदारी तक पहुंचने के बाद से शीर्ष नेतृत्व के बीच ये पहली द्विपक्षीय वार्ता होगी।
1: प्रधानमंत्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियंतो के साथ वार्ता करेंगे और रणनीतिक भागीदारी में प्रगति की समीक्षा करेंगे। वार्ता में दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने पर चर्चा होने की उम्मीद है, जिसमें रक्षा सहयोग, व्यापार, निवेश और ऊर्जा सुरक्षा तथा सांस्कृतिक सहयोग पर खास ध्यान दिया जाएगा। जकार्ता कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण प्रधानमंत्री मोदी का भारतीय समुदाय को संबोधन होगा, जिसे लेकर पूरे देश में उत्साह है। बाली, मेदान, सीमारंग, सुराबाया और जकार्ता के समुदाय सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ भव्य स्वागत की तैयारी कर रहे हैं। हजारों भारतीय नागरिकों और भारतीय मूल के लोगों के जुटने की उम्मीद है, जो इस यात्रा को गर्व का विषय और अपनी मातृभूमि के साथ संबंध मजबूत करने का अवसर मान रहे हैं। 8 जुलाई को प्रधानमंत्री मोदी ऐतिहासिक प्रम्बनन मंदिर के दर्शन के लिए योग्यकार्ता जाएंगे। भारत इस यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के जीर्णोद्धार के प्रयासों में सहयोग कर रहा है, जो दोनों देशों के बीच गहरे सांस्कृतिक संबंधों को रेखांकित करता है। जकार्ता से संदीपन दासगुप्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमीषा।
0: भारत स्विट्जरलैंड के जिनेवा में उपभोक्ता संरक्षण कानून और नीति पर अंतर सरकारी विशेषज्ञ समूह के नवे सत्र की अध्यक्षता करेगा। संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास संगठन ने 6 से 8 जुलाई तक इस सत्र का आयोजन किया है।
2: उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा है कि इस सत्र में सदस्य देश, अंतर्राष्ट्रीय संगठन, उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण, शिक्षाविद और अन्य संबंधित पक्ष उपभोक्ता संरक्षण कानून और नीति से जुड़े उभरते मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। उपभोक्ता मामले विभाग की सचिव निधि खरे इस सत्र की अध्यक्षता करेंगी। वह 3 दिन तक चलने वाले इस सत्र में विचार विमर्श का संचालन करेंगी। सत्र के दौरान उपभोक्ता जानकारी और शिक्षा, टिकाऊ उपभोग, वैश्विक बाजारों में उपभोक्ता संरक्षण कानून के प्रभावी क्रियान्वयन और सीमा पार उपभोक्ता संरक्षण जैसे विषयों पर चर्चा होगी। भारत वाई द प्रिंसिपल मैटर विषय पर आयोजित उच्च स्तरीय फायरसाइड चर्चा में भी भाग लेगा। नीतिका गुप्ता, आकाशवाणी समाचार, नई दिल्ली।
0: भारत अपनी ब्रिक्स अध्यक्षता के तहत ब्रिक्स महिला कार्य समूह की 2 दिन की बैठक की मेजबानी करेगा। केरलम के कोच्चि में आज से शुरू हो रही बैठक में ब्रिक्स सदस्य देशों के वरिष्ठ अधिकारी भाग लेंगे।
3: विभिन्न क्षेत्रों में महिला सशक्तिकरण और महिला नेत विकास से जुड़े प्रमुख मुद्दों पर विचार होगा। साझा प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर भी बातचीत होगी। इस बैठक से सदस्य देशों को महिला नेत विकास के लिए सहमति बनाने का अवसर मिलेगा। ब्रिक्स महिला कार्य समूह ने 4 प्राथमिकता वाले क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया है। इनमें शासन और नेतृत्व में महिलाओं की भूमिका, डिजिटल और वित्तीय गतिविधियों में उनकी समावेशिता, महिला उद्यमिता और कौशल विकास तथा जलवायु परिवर्तन, खाद्य सुरक्षा और पोषण में महिलाओं की भूमिका शामिल है। यह बैठक 8 और 9 जुलाई को होने वाले ब्रिक्स महिला मंत्री

0: स्तरीय सम्मेलन की आधार भूमि तय करेगी। समाचार कक्ष से मैं आशा निवेदी।
1: भारत असम के गुवाहाटी में दो दिन की ब्रिक्स मादक पदार्थ रोधी एजेंसी प्रमुखों की बैठक की मेजबानी करेगा। हमारे संवाददाता ने बताया कि आज से शुरू हो रही बैठक का उद्देश्य संस्थागत संपर्क मजबूत करना और मादक पदार्थ रोधी एजेंसियों के बीच सहयोग बढ़ाना है।
2: बैठक में सिंथेटिक ड्रग्स और प्रिकर्सर रसायनों की अवैध आपूर्ति पर रोक, खुफिया सूचनाओं के आदान प्रदान तथा परिचालन समन्वय को मजबूत बनाने, क्षमता निर्माण और संस्थागत सहयोग बढ़ाने जैसे विषयों पर चर्चा होगी। प्रतिनिधि ने साइकोएक्टिव पदार्थों, डार्कनेट के माध्यम से होने वाली तस्करी, क्रिप्टोकरेंसी आधारित अवैध वित्तीय लेनदेन तथा प्रिकर्सर रसायनों के दुरुपयोग जैसी उभरती चुनौतियों पर भी विचार विमर्श करेंगे। राकेश तोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्यों की आज बैठक होगी। हमारे संवाददाता ने बताया कि मंदिर को मिले दान की छानबीन कर रहे विशेष जांच दल की रिपोर्ट सहित अनेक प्रशासनिक और वित्तीय मुद्दों पर बैठक में चर्चा होगी।
3: बैठक के एजेंडे में महासचिव चंपत राय और न्यासी डॉक्टर अनिल मिश्रा के त्याग पत्रों पर विचार विमर्श करना भी शामिल है। सदस्यों को न्यास की दान पेटियों के माध्यम से मिले दान की गणना के संबंध में सोसाइटी की अंतरिम रिपोर्ट के बारे में भी जानकारी दी जाएगी। बैठक में राम मंदिर के भविष्य के प्रबंधन से संबंधित व्यवस्थाओं पर भी विचार विमर्श किया जाएगा। एजेंडा का एक महत्वपूर्ण बिंदु वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए आय व्यय वितरण, बैलेंस शीट और अन्य वित्तीय दस्तावेजों की प्रस्तुति और मोदन शामिल है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: समग्र राष्ट्र आज भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। इस अवसर पर संस्कृति मंत्रालय पश्चिम बंगाल सरकार के सहयोग से कोलकाता में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है। हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि यह कार्यक्रम डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती के दो वर्षीय आधिकारिक समारोह के अंतर्गत आयोजित किया जा रहा है।
4: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज दोपहर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती समारोह में शामिल होने के लिए कोलकाता पहुंचेंगे। वे न्यू टाउन स्थित इको पार्क जाएंगे, जहां वे श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125 फीट ऊंची प्रतिमा के शिलान्यास समारोह में भाग लेंगे। दोपहर बाद भवानीपुर स्थित श्यामा प्रसाद मुखर्जी के पैतृक निवास पर आयोजित कार्यक्रम में अमित शाह उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण करके श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। कोलकाता से कल्याण लाहा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मनोज।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उन्हें साहस, राष्ट्रवाद और निस्वार्थ सेवा का शाश्वत प्रतीक बताया है। श्री मोदी ने एक आलेख में कहा है कि डॉक्टर मुखर्जी का जीवन अखंड भारत के लिए उनकी अटल प्रतिबद्धता का प्रमाण है। उन्होंने विभाजन के दौरान पश्चिम बंगाल को और इसके बाद जम्मू कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग बनाए रखना सुनिश्चित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि वर्ष 2019 में अनुच्छेद 370 और 35 से निरस्त किया जाना उनके बलिदान के प्रति सर्वाधिक समुचित श्रद्धांजलि थी। मुंबई और तटीय महाराष्ट्र में तेज हवा के साथ लगातार बारिश हो रही है। रायगढ़ जिले में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है, जहां प्रमुख नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। हमारे संवाददाता ने बताया कि रायगढ़ और रत्नागिरी जिलों में मूसलाधार बारिश ने जबरदस्त तबाही मचाई है।
5: मुंबई, ठाणे, पालघर, रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग में तेज हवा के साथ मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट और रायगढ़ जिले के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। एहतियात के तौर पर सभी तटीय जिलों और पुणे में सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूल और कॉलेज बंद रहेंगे। मुंबई के मानखुर्द इलाके में 3 मंजिला कच्ची चौल में घरों के ढहने से 6 लोगों की मौत हो गई। रविवार को ठाणे और पालघर जिलों में तेज बारिश का कहर जारी रहा, जिससे 2 लोगों की मौत हो गई और कई इमारतें ढह गई। सिंधुदुर्ग में कई जगहों पर इमारतें ढहने से नुकसान हुआ है। मुंबई से संगीता गोडबोले की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
1: मौसम विभाग ने आज गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में मूसलाधार बारिश की संभावना व्यक्त की है। ब्राजील के दिग्गज फुटबॉल खिलाड़ी नेमार जूनियर ने फीफा विश्व कप के राउंड 16 में कल रात नॉर्वे से

0: 2-1 से हार के बाद अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास लेने की घोषणा की है। नेमार जूनियर हमेशा ब्राजील के सबसे प्रमुख स्कोरर रहे। कल के मैच में ब्राजील के लिए एकमात्र गोल करने के बावजूद नेमार अपनी टीम को हार से बचा नहीं पाए। महाभारत के कालजयी प्रसंगों को पंडवानी में पेश करने वाली सुविख्यात लोक गायिका तीजन बाई अब हमारे बीच नहीं रही। उनके निधन से लोक संस्कृति की अपूर्णीय क्षति हुई है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी।
1: धन्यवाद मुनीश। देश की राजधानी से प्रकाशित सभी हिंदी समाचार पत्रों की सुर्खियों में आज राम मंदिर परिसर में होने वाली न्यास की बैठक और देश के विभिन्न हिस्सों में मॉनसून की चाल से जुड़े समाचार छाए हुए हैं। साथ ही राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व के अन्य मुद्दों को भी अखबारों ने प्रमुखता से प्रकाशित किया है। राजस्थान पत्रिका ने अपने संपादकीय पृष्ठ पर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती पर चित्र सहित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लेख प्रकाशित किया है। शीर्षक है, देश की एकता और अखंडता को समर्पित जीवन। पत्र ने श्री मोदी के इन शब्दों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। डॉक्टर मुखर्जी के जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य भारत की एकता और अखंडता की रक्षा करना था। देश के विभाजन के समय उन्होंने पश्चिम बंगाल को भारत का अभिन्न अंग बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कुछ वर्षों बाद इसी उद्देश्य से उन्होंने जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर भी संघर्ष किया। अन्य राष्ट्रीय समाचार पत्रों ने भी इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संदेश संपादकीय पन्नों पर छापा है। वहीं जनसत्ता ने ओडिशा में विशेष गहन पुनरीक्षण के दौरान 20 लाख से अधिक लोगों के नाम मतदाता सूची से हटाए जाने के समाचार को पहले पन्ने पर प्रमुखता से छापा है। पत्र ने प्रख्यात पंडवानी गायिका तीजन बाई के निधन का समाचार सचित्र प्रकाशित करते हुए उनकी उपलब्धियों और योगदान पर भी प्रकाश डाला है। दैनिक भास्कर ने गैस आपूर्ति पर लगे प्रतिबंधों को हटाए जाने का समाचार हाशिए में सबसे ऊपर प्रकाशित किया है। पत्र ने देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन की शुरुआत के लिए हो रही तैयारियों की खबर को भी वरीयता दी है। वहीं इंस्टाग्राम पर बच्चों के यौन शोषण से जुड़े कंटेंट के मामले में केंद्र सरकार की ओर से मेटा को जारी नोटिस का समाचार नवभारत टाइम्स, दैनिक भास्कर और देशबंधु सहित कई अखबारों ने पहले पृष्ठ पर दिया है।
0: गृहमंत्री अमित शाह ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 125वीं जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि डॉक्टर मुखर्जी भारतीय जनसंघ के संस्थापक और राष्ट्र की एकता, अखंडता और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के प्रबल समर्थक थे। और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा आज से शुरू हो रही है। भारत जिनेवा में उपभोक्ता संरक्षण कानून और नीति पर अंतर सरकारी विशेषज्ञ समूह के नवे सत्र की अध्यक्षता करेगा। भारत ब्रिक्स की अपनी अध्यक्षता में केरलम के कोच्चि में आज से शुरू हो रही महिला कार्य समूह की बैठक की मेजबानी करेगा। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्यों की आज होगी बैठक। भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर समग्र राष्ट्र की भावभीनी श्रद्धांजलि। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें साहस, राष्ट्रवाद और निस्वार्थ सेवा का शाश्वत उदाहरण बताया। और फीफा विश्व कप में 5 बार के चैंपियन ब्राजील की नॉर्वे से 2-1 से हार के बाद नेमार जूनियर ने फुटबॉल से लिया संन्यास। और इसके साथ ही समाचार प्रभात का अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम अनुजा कुमार। द हेडलाइंस। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी टू एम्बार्क ऑन अ 6-डे विजिट टू इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड बिगिनिंग टुडे। India to chair UNCTAD's 9th session of Intergovernmental Group of Experts on Consumer Protection in Geneva. India to host 2-day BRICS Women Working Group meeting at Kochi in Keralam beginning today. Sri Ram Janmabhoomi Teerth Kshetra Trust convenes meeting at its members in Ayodhya this afternoon. Nation pays

0: पर रवाना होंगे। तीन मुल्कों के इस दौरे के पहले मरहले में जनाब मोदी आज शाम 2 दिन के लिए इंडोनेशिया पहुंचेंगे। जनाब मोदी का इंडोनेशिया का ये चौथा दौरा है और मई 2018 में जब से भारत और इंडोनेशिया के ताल्लुकात जामे दिफाई शराकतदारी की सतह पर लाए गए हैं तब से ये उनका पहला दोतरफा दौरा है। अपने दौरे में वजीर आजम कल इंडोनेशिया के सदर प्राबोवो सुबियांतो से मुलाकात करेंगे और शराकतदारी में अब तक की पेशरफ्त का जायजा लेंगे। हमारे नामानिकार की एक रिपोर्ट।
1: उम्मीद है कि जनाब प्रावो सुबियांतो और वजीर आजम मोदी जामे दिफाई शराकतदारी को मुस्तहकम बनाने पर बातचीत करेंगे जिसमें दिफा से मुतालिक ताउन तजारत और सरमायाकारी खुराक और तवानाई की यकीनी फराहमी नीज सकाफती इश्तराक पर तवज्जो मरकूज की जाएगी। जकार्ता के प्रोग्राम की खास बात वजीर आजम मोदी का भारतीय बिरादरी से खिताब होगा जिसमें मुल्क के बाली मैदान सीमांग और जकार्ता के लोग शामिल होंगे। ये लोग शानदार खैर मकदम की तैयारी कर रहे हैं जिसके दौरान सकाफती प्रोग्राम मुनाकिद किए जाएंगे। इस मौके पर हजारों भारतीय शहरी और भारत नजाद लोग यकजा होंगे और अपने मादर वतन से अपने राबते को मुस्तहकम करने के इस मौके पर फख्र का इजहार करेंगे। 8 जुलाई को जनाब मोदी तारीखी परम्बरन मंदिर के दर्शन के लिए योग्य कीर्ता जाएंगे। भारत यूनेस्को के आलमी विरासती मकाम की बहाली की कोशिशें करता रहा है जिससे दोनों मुल्कों के दरमियान गहरे तहजीबी रिश्तों की अहमियत जाहिर होती है। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता से संदीपन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं मोहम्मद अम्मार।
0: अपने दौरे के दूसरे मरहले में वजीर आजम इस माह की 8 तारीख को 3 रोजा दौरे पर मेलबर्न पहुंचेंगे। यहाँ वो ऑस्ट्रेलिया के वजीर आजम एंथनी अल्बनीज के साथ भारत ऑस्ट्रेलिया तीसरी सालाना समिट में शिरकत करेंगे। अपने 3 मुल्कों के दौरे के तीसरे और आखिरी मरहले में जनाब मोदी इस माह की 10 और 11 तारीख को न्यूजीलैंड जाएंगे। वजीर आजम मोदी न्यूजीलैंड के अपने हमनसब क्रिस्टोफर लक्सन के साथ बातचीत करेंगे। पिछले 40 साल में किसी भारतीय वजीर आजम का न्यूजीलैंड का ये पहला दौरा होगा। सारफिन उमूर खुराक और तकसीम आम्मा की वजारत ने कहा है कि इस इजलास में रुकन ममालिक बैन अल-अक़वामी तंजीमें सारफिन तहफ़ुज़ाती हुक्काम तालीमी इदारे और दीगर मुतालिका फरीक़ैन यकजा होंगे और सारफिन के तहफ़ुज़ से मुतालिक कानून और पॉलिसी के सिलसिले में उभरने वाले मामलात पर बातचीत करेंगे। माहरीन का बैन हुकूमती ग्रुप सारफिन के तहफ़ुज़ से मुतालिक कानून और पॉलिसी पर तआवुन और मुज़ाकरात के लिए आला बैन हुकूमती प्लेटफॉर्म है। पेश है एक रिपोर्ट।
2: सारिफिन उमूर के महकमे की सेक्रेटरी निधि खरे इस इजलास की सदर नशी होंगी। वो सारिफिन के तहफ़ से मुतालिक बुनियादी आलमी तरजीहात के बारे में 3 रोज़ा बातचीत की सदारत करेंगी। इजलास की अहम बातों में सारिफिन के तहफ़ से मुतालिक अक़वाम मुत्तहिदा के उसूलों का आगाज़ शामिल है जिन्हें अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में दिसंबर 2025 में मंजूर किया गया था। भारत आला सतह के मुज़ाकरात में भी शिरकत करेगा जिसका उन्वान है उसूलों की अहमियत क्यों है। नीतिका गुप्ता की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं असदुल्ला।
0: ब्रिक्स मुल्कों की मुनशियात की रोकथाम से मुतालिक एजेंसियों के सरबराहान का इजलास आज आसाम के शहर गुवाहाटी में शुरू होगा। ये 2 रोजा इजलास वजारत दाखिला के तहत मुनशियात की रोकथाम से मुतालिक ब्यूरो NCB के जेर एहतमाम मुनक़द किया जा रहा है। इस इजलास में ब्रिक्स रुकन मुल्कों की इंसदाद मुनशियात एजेंसियों के सरबराहान और सीनियर हुक्काम शिरकत करेंगे ताकि मुनशियात की स्मगलिंग और नशा आवर अशिया के गलत इस्तेमाल के खिलाफ तआवुन को मजीद मजबूत बनाया जा सके। एक रिपोर्ट।
1: गुवाहाटी में होने वाले इस इजलास में सिंथेटिक्स मुनशियात के गैर कानूनी इस्तेमाल और स्मगलिंग इंटेलिजेंस मालूमात के तबादले ऑपरेशनल राबताकारी सलाहियत साजी और इदारा जाती ताउन को फरोग देने पर खसूसी तवज्जो मरकूज की जाएगी। मंदूबीन में नई नफसियाती असरात रखने वाले मुनशियात जिनमें डार्क नेट के जरिए मुनशियात की स्मगलिंग क्रिप्टो करेंसी से मुंसलिक माली लेन देन और इसके गलत इस्तेमाल जैसे उभरते हुए चैलेंजेस पर भी तबादला ख्याल किया जाएगा। इस इजलास में भारत मुनशियात के इस्तेमाल और स्मगलिंग के खिलाफ अपनी कोशिशों को भी उजागर करेगा। इजलास के दौरान रुकन ममालिक मुनशियात से मुतालिक बदलते हुए खतरा से निपटने के लिए मुशतरक हिकमत अमली पर गौर करेंगे और बैन अल-अक़वामी तआवुन को मजीद मजबूत बनाने के इकदाम पर तबादला ख्याल करेंगे। राकेश डोली की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मोहम्मद अम्मार।
0: भारत आसाम के शहर गुवाहाटी में आज नशीली अशिया की रोकथाम से मुतालिक एजेंसियों के ब्रिक्स सरबराहान की 2 रोजा मीटिंग की मेजबानी करेगा। वजारत दाखिला ने कहा है कि मीटिंग में ब्रिक्स रुकन मुल्कों की इन एजेंसियों के सरबराहान और सीनियर अफसरान शिरकत करेंगे जिसका मकसद नशीली अशिया पर काबू पाने वाली एजेंसियों के माबैन इदारा जाती तसलसल को मुस्तहकम बनाना और कामकाज के

0: हालांद ने मैच के आखिरी लम्हात में दो गोल किए। नेमार ने इजाफी वक्त में पेनल्टी के जरिए एक गोल जरूर किया, लेकिन वो शिकस्त का फर्क कम करने के सिवा कुछ न कर सके। नेमार के रिटायरमेंट के साथ ब्राज़ील की फुटबॉल के एक शानदार बैन अलाक्वामी दौर का इख्तिताम हो गया। ब्राज़ील के लिए यह मुसलसल सातवां मौका था जब उसे वर्ल्ड कप के नॉकआउट मरहले में किसी यूरोपीय टीम के हाथों शिकस्त का सामना करना पड़ा। आकाशवाणी का खबरों का शोभा हिंदी और अंग्रेजी में बराह रास्त नशर होने वाले अपने फोन इन प्रोग्राम पब्लिक स्पीक में आज रात 9:30 बजे डिजिटल इंडिया टेक्नोलॉजी के जरिए शहरियों को बाइख्तियार बनाए जाने के मौजू पर एक तफसीली मुजाकरा नशर करेगा। ये मुजाकरा साइबर सिक्योरिटी के माहिर गुलशन राय के साथ किया जाएगा। प्रोग्राम के दौरान सामीन इस मौजू पर अपने सवालात इन टेलीफोन नंबर्स पर पूछ सकते हैं 0112342100 और 0112331444। इसके अलावा आप अपने सवालात 9289094044 पर भी व्हाट्सएप कर सकते हैं या #AskEIR के साथ एक्स पर भी भेज सकते हैं। ये थी खबरें, अब अखबारात के आईने के साथ हैं असदुल्ला।
1: शुक्रिया असलम। कौमी राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले आज के बेशतर उर्दू अखबारों ने अलग अलग खबरों को अपनी शह सुर्खी बनाया है। रोजनामा इनकलाब और प्रताप समेत आज के सभी अखबारों ने मुल्क में LNG सप्लाई में बेहतरी और हुकूमत का इमरजेंसी गैस रेगुलेशन वापस लेने के फैसले को सफ़े अव्वल पर शाये करते हुए लिखा है कि मगरबी एशिया में सूरत हाल में नुमाया बेहतरी आने के बाद कुदरती गैस सप्लाई पर आयद पाबंदी खत्म कर दी गई है। वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर ए जयशंकर मगरबी एशिया के दौरे पर, तवानाई, तिजारत और सरमायाकारी और सिक्योरिटी समेत कई अहम उमूर पर करेंगे तबादले ख्याल। इस खबर को आज के अखबारों ने खसूसियत के साथ जगह दी है। रोजनामा प्रताप की सुर्खी है, जिनेवा में मस्नूई ज़हानत AI से मुतालिक अक़वामे मुत्तहिदा के आलमी मुकालमे में भारतीय वफद की क़यादत वज़ीर ममलकत बराए ख़ारजा कीर्ति वर्धन करेंगे। हुकूमत ने सोशल नेटवर्किंग साइट इंस्टाग्राम पर बच्चों के जिंसी इस्तेहसाल और नाज़ेबा सलूक से मुतालिक मवाद पेश किए जाने के मामले में मेटा को सख्त नोटिस जारी करते हुए 7 दिन के अंदर तफसीली जवाब तलब किया है। वजारत इलेक्ट्रॉनिक्स और इतलाती टेक्नोलॉजी के इस बयान को अखबारों ने अहमियत के साथ जगह दी है।
0: और आखिर में खास खबरें एक बार फिर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के अपने 6 रोजा दौरे पर रवाना होंगे। भारत जिनेवा में UNCTAD के सारफीन के तहफ़ से मुतालिक माहरीन की बैन हुकूमत ग्रुप के नवे इजलास की सदारत करेगा। भारत आज से केरलम के शहर कोची में ब्रिक्स खवातीन के वर्किंग ग्रुप की 2 रोजा मीटिंग की मेजबानी करेगा। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने आज दोपहर अयोध्या में अपने अरकान की मीटिंग तलब की है। मुल्क आज भारतीय जनसंघ के बानी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को उनके यौम पैदाइश पर खिराज अकीदत पेश कर रहा है। वजीर आजम ने उन्हें हौसले, वतन परस्ती और बेलौस खिदमत की एक लाफानी मिसाल करार दिया है। और नेमार जूनियर ने फीफा आलमी कप में 5 बार के आलमी चैंपियन ब्राज़ील की नॉर्वे के हाथों 2-1 शिकस्त के बाद बैन अलाक़वामी फुटबॉल से रिटायर होने का ऐलान कर दिया है। इसी के साथ ये खबरनामा खत्म हुआ।
2: मीडियम वेव 401.6 मीटर यानी 747 किलो हर्ट्ज पर यह है आकाशवाणी लखनऊ, धड़कन देश की। सुबह के 8:45 हुए हैं। थोड़ी देर में हम आपके लिए लेकर आएंगे कार्यक्रम आपके मेल आपके गीत।
3: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
4: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
3: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
4: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
3: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001424 पर।
4: 8700001424।

अपने रेडियो सेट पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी लखनऊ धड़कन देश की, और आप हमारे कार्यक्रम डीटीएच सेवा के साथ मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी सुन सकते हैं। समय हो गया है आपके फेवरेट प्रोग्राम जिसका रहता है आपको बेसब्री से इंतजार, आपके मेल आप

के गीत। और आज इस कार्यक्रम में आपके मेल और पसंदीदा फिल्मी गीतों को लेकर मैं हूँ आपके साथ आपकी रेडियो दोस्त कीर्ति विश्वकर्मा। नमस्कार।

तो श्रोताओं, करते हैं कार्यक्रम की शुरुआत इस खूबसूरत से ट्रैक के साथ, जिसमें आवाज़ है मनहर उदास और आनंद कुमार की। संगीत कल्याण जी आनंद जी का है और इंदीवर ने इस गीत को लिखा है। फिल्म है कुर्बानी। और इस गीत के लिए हमने जिन श्रोताओं के मेल को शामिल कर लिया है वो है मेरठ कैंट से दिग्दर्शन और कविता गौड़, सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह, डॉक्टर अमनदीप, कालका से शुभचंद्र बजाज, साहिल बजाज, बिट्टा बजाज, सनावत से शेख मूसा मोहसिन, जिला खरगोन सनावत मध्य प्रदेश से मास्टर अशोक वर्मा, अर्चना वर्मा, अनुज वर्मा, आयुषी वर्मा, रमेश चंद्र वर्मा, शेख मूसा भाईजान, भाई राजकुमार बोड़ाना और सुदामा नगर खंडवा से लक्ष्मी नंदिनी, रोहित, ऋतु, मुकेश और जगताप, हनुमानगढ़ राजस्थान से रजाक मोहम्मद, समीम बेगम, इमरान खान, इरफान खान और जीशान खान, बड़ा बम चौक खंडवा मध्य प्रदेश से ममता मार्कंडेय, संजय मार्कंडेय और बेबी किट्टू। इसके साथ ही साथ जिला पंजौनिया, जिला जालौन से हैं सत्येंद्र कुमार चंसौलिया, आदर्श सार्थक अलौकिक और गांव नंगल खेड़ा फगवाड़ा पंजाब से हैं बालकृष्ण शर्मा, प्रवीण शर्मा, मुनीश शर्मा और राहुल शर्मा। तो चलिए आप सबके ढेर सारे मेल के साथ करते हैं कार्यक्रम की शुरुआत कुर्बानी फिल्म के इस खूबसूरत से ट्रैक के साथ।

आकाशवाणी लखनऊ से ये है कार्यक्रम आपके मेल आपके गीत। और कार्यक्रम में अगले गाने की ओर बढ़ रहे हैं हम, लेकिन इस गाने के बारे में बताएं उससे पहले हम बता दें कि हमने किन किन श्रोताओं के मेल्स को शामिल कर लिया है। जिला रायबरेली गांव पहाड़ीपुर से रामराज राजू भानु, रामशंकर पत्रकार भाई वाले, रक्षा मौर्य, राम सागर शाहू, रसूलपुर वाले रामचरण प्रजापति, ताज मंजिल लक्कड़ बाजार खडवा से मोहम्मद रफीक पवार, बेनजीर कौसर, मोहम्मद साकिब पवार, अलमास बानू पवार, मोइन छोटू पवार, मोहम्मद हसनैन पवार। इसके साथ ही साथ पार्थ रेडियो क्लब छत्रपति संभाजी नगर से हैं राजेश साबले पाटिल, राजदीप राजेश, राशि राजेश, श्रीमती शीतल राजेश, मॉडल टाउन करनाल से सुधीर, नूतन किरण ठाकुर, नरिंदर तनीजा और संदीप गुगलानी जग्गी दुआ जी। किसान रेडियो क्लब ग्राम व पोस्ट लल्हौआ जिला खीरी से विजय पाल यादव, शुभम यादव, ऋचा यादव, शिखा यादव, गुड़िया यादव, बबलू यादव और विजय पांडे जी। दंतरेगी से भागवत वर्मा, शांति देवी, लीलावती, विनीता वर्मा, रुद्र वर्मा। ग्राम बगबुड़वा पथौरिया से पैथरिया से नरेन नेताम, कुसुम नेताम। ऑक्सीजन पार्क राहुल नगर अमरावती महाराष्ट्र से सिद्धार्थ गुंडाने, अर्चना गुंडाने, प्रणय प्रसिद्धि, हीरा मण शेंडे, प्रतिभा गुंडाने। झज्जर हरियाणा से बिट्टू भाटिया, रीटा भाटिया, रजत भाटिया और मयंक भाटिया। अनारकली बाजार जगराव से सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपक मल्होत्रा, गवैया मल्होत्रा, भाई सुच्चा सिंह पाठक। गांव नथना पंजाब से हरजिंदर छिंदा, जसवीर जस्सी, सीता और गीता। और आप सब श्रोताओं के लिए हम पहुंचा रहे हैं आपके रेडियो सेट पर हीरो फिल्म का ये खूबसूरत सा ट्रैक, जिसमें आवाज़ है अनुराधा पौडवाल और मनहर उदास की, बोल आनंद बख्शी के हैं और संगीत लक्ष्मीकांत प्यारीलाल का।

तो ये है प्रोग्राम आपके मेल आपके गीत, और अपनी पसंद के गीत सुनने के लिए आप हमें मेल कर सकते हैं इस पते पर, आपके पत्र आपके मेल @gmail.com। बहुत सारे मेल आ चुके हैं हमारे पास, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, और शामिल करने जा रहे हैं हम अगले और कुछ मेल, और सुनाएंगे हम कार्यक्रम में आपको अगला गीत। खैल बाजार पानीपत से नरेश मल्होत्रा, नीटू लक्ष्य मल्होत्रा, लाडू कोयल।

मल्होत्रा, पापा जी नानक चंद्र मल्होत्रा, शिवाजी कॉलोनी रोहतक से पीयूष सिक्का, कोयल सिक्का, डुगू भाविक सिक्का, ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राहे, मेहराज जहां आजाद नगर लक्सर हरिद्वार से हैं, मेहर नगर उमेड़खेर महाराष्ट्र से हैं, अभिजीत गम्हाड़कर, श्रीमती सरिता गम्हाड़कर, प्रिंस एकांश गम्हाड़कर बदलापुर मुंबई से हैं, प्रणीता गम्हाड़कर, सिद्धांत गम्हाड़कर, लाडला टुकटुक गम्हाड़कर, आकार हाइट्स बहादुरा नागपुर से हैं, वैशाली शैलेश गांवकड़, सुमित गांवकड़ और कुमारी ध्वनि गांवकड़, वैष्णव कॉलोनी सनावत से हैं मोहम्मद सादिक, मुश्ताक अहमद, मोहम्मद शाकिर, मोहम्मद अलकमा खत्री, मोहम्मद अल्तमश खत्री, रमेश कोण, मोहम्मद शादाब खत्री, जामा मस्जिद रोड गोगावा से हैं हाजी इसहाक लोलामानी, मोहम्मद उमर कासमी, हाजी अयूब शेरी, जिला खरगोन सनावत मध्य प्रदेश से हैं मास्टर अशोक वर्मा, अर्चना वर्मा, अनुज वर्मा, आयुषी वर्मा, रमेश चंद्र वर्मा, शेख मूसा भाईजान, भाई राजकुमार बोड़ाना और सुदामा नगर खंडवा से लक्ष्मी नंदनी, रोहित, ऋतु और मुकेश जगताप, इनका नाम हमने शामिल कर लिया है। सांगली जिले के जत शहर से हैं अल्ताफ हुजरे, सैफुल्ला सबाहत, किरत हुजरे, रेहान शेख, ऊपरकोट मोहल्ला चौखुंटी बुलंदशहर से हैं मोहम्मद सईद अब्बासी, निगहत परवीन अब्बासी, शाहनवाज अब्बासी, सरवराज अब्बासी, फरदीन अब्बासी, सुहान अब्बासी, अरजान अब्बासी, अवान अब्बासी और अब्बासी परिवार के सभी सदस्य। रामगंज खंडवा मध्य प्रदेश से हैं विजय सिंह महोबिया, कविता महोबिया, कुंडलेश्वर वार्ड खंडवा से हैं योगेश गुजराती राम सिंह, कबीर रेडियो श्रोता संघ डांडी लोहारा बालोद छत्तीसगढ़ से हैं देवशंकर तामूरिया, अजय देव तामूरिया, तुषार देव तामूरिया, मोताला महाराष्ट्र से हैं विजय सुरलकर, रतन माला सुरलकर और ओम कुमार कुमकुम। तो चलिए आप सबके लिए हम लेकर आ गए हैं अगला ट्रैक कार्यक्रम आपके मेल आपके गीत में और ये है फिल्म वक्त हमारा से है से और इस गाने में आवाज़ है अलका याग्निक और उदित नारायण की, बोल समीर के हैं और संगीत नदीम श्रवण का।

0: फिल्म आकाश के रोशन सितारों की महफिल आज के मेहमान विविध भारती पर हर बुधवार शाम 4 बजे पिटारा में सुनिए। रहिए कहीं भी, सुनते रहिए विविध भारती। विविध भारती, आपकी बात पहुंचाए करोड़ों तक।
1: आकाशवाणी लखनऊ से यह है कार्यक्रम आपके मेल आपके गीत, और कार्यक्रम में हमने शामिल कर लिया है और भी ढेर सारे मेल। दाऊद सराय सहारनपुर से अनवर साबरी, शन्नो साबरी, मुदसिर साबरी, मुजक्किर साबरी, जरीफ अंसारी, शास्त्री नगर बीट शहर से किशन सपकाल, आशा सपकाल, सोनिया सपकाल, साइरा सपकाल, विशाल सपकाल, चंडीगढ़ सिटी से सतीश अनेजा, बिमला अनेजा बलिया, उत्तर प्रदेश से फातिमा वली बेलदार, सोनम वली बेलदार, आसमा वली बेलदार, डब्बू वली बेलदार, जिला अंबागढ़ चौकी छत्तीसगढ़ से रिजवान खान, आयशा साबिया, अनस और रेहान, बटेडा रोड मंडी डबवाली से राजेंद्र नारंग, अंजू नारंग, मोहित नारंग, तानिया नारंग, सरगुजा मैनपाट से सोनम थापा, फातिमा थापा, आदिबा थापा और आसमा थापा, गांव जाखोत से शंभू दयाल खटक, विमला देवी, योगेश कुमार, दीपक कुमार और कुमारी पूजा खटक। और आप सभी के लिए पहुंच रहा है आपके रेडियो सेट पर अंदाज फिल्म का ये खूबसूरत सा गाना, जिसमें आवाज अलका याग्निक और उदित नारायण की है।

तो श्रोताओं, ये था कार्यक्रम आपके मेल आपके गीत, और इस गीत के साथ ही ये कार्यक्रम आप समाप्त करने की दीजिए इजाज़त अपने रेडियो दोस्त कीर्ति विश्वकर्मा को। आप भी सुनना चाहते हैं अपने पसंद के गीत तो मेल कर सकते हैं हमें इस पते पर, आपके पत्र आपके मेल @gmail.com पर। कल मिलेंगे फिर एक नए तरीके के साथ, नए अंदाज के साथ में। तब तक के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी लखनऊ के कार्यक्रम। ये है आकाशवाणी लखनऊ, हमारा अगला कार्यक्रम बस कुछ ही पलों में।

मीडियम वेव की मीटर पर यह है आकाशवाणी लखनऊ। सुबह के 9:15 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम जिले की हलचल। आज सुनिए बागपत और चित्रकूट जिले की हलचल।

0: जिले की हलचल। आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए बागपत और चित्रकूट जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं बागपत जिले की हलचल। आलेख और स्वर है राजीव कुमार का।
1: श्रावण मास की महाशिवरात्रि पर 8 से 11 अगस्त तक लगने वाले ऐतिहासिक श्री परशुरामेश्वर मेले की तैयारियां शुरू हो गई हैं। इसी सिलसिले में डीएम अस्मिता लाल और एसपी सूरज कुमार राय ने अधिकारियों और मेला समिति के साथ बैठक कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। डीएम ने कहा कि कावड़ यात्रा के दौरान शिव भक्तों को किसी प्रकार की असुविधा नहीं होनी चाहिए। इसके लिए कावड़ मार्ग पर सड़क, पेयजल, प्रकाश, सफाई, चिकित्सा सुरक्षा और मोबाइल शौचालय जैसी सभी मूलभूत सुविधाएं समय से उपलब्ध कराई जाए। उन्होंने कावड़ मार्ग की झाड़ियों की कटाई, क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत, ट्रांसफार्मरों की बैरिकेडिंग और विद्युत पोलों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। बैठक में यह भी तय किया गया कि सूचना विभाग की ओर से कावड़ यात्रा ऐप तैयार किया जाएगा, जिसमें QR कोड के माध्यम से श्रद्धालुओं को मेला, स्वास्थ्य सेवाओं और अन्य सुविधाओं की जानकारी मिलेगी। मेला परिसर और कावड़ मार्ग पर CCTV कैमरे, अग्निशमन उपकरण, एम्बुलेंस, अस्थायी अस्पताल, निःशुल्क ई रिक्शा और व्हील चेयर की भी व्यवस्था रहेगी। डीएम ने अधिकारियों से श्रावण मास की इस कावड़ यात्रा और मेले की

0: जीरो वेस्ट महोत्सव के रूप में बनाने के लिए समन्वय के साथ कार्य करने का आह्वान किया। दानवीर भामाशाम की जयंती के अवसर पर कलेक्ट्रेट सभागार में व्यापारी कल्याण दिवस का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता डीएम अस्मिता लाल ने की। इस अवसर पर एडीएम एवं संयुक्त आयुक्त राज्य कर सहित राज्य कर विभाग के अधिकारी, व्यापारी, उद्यमी और अधिवक्ता मौजूद रहे। कार्यक्रम में वित्तीय वर्ष 2025-26 के दौरान जनपद में सर्वाधिक जमा कर करने वाली 5 प्रमुख फर्मों को भामाशाह सम्मान से सम्मानित किया गया। डीएम ने सम्मानित व्यापारियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि ईमानदारी से कर अदा करने वाले व्यापारी देश और प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इस दौरान राज्य कर विभाग के अधिकारियों, व्यापार मंडल के पदाधिकारियों और बड़ी संख्या में व्यापारियों ने भाग लिया। लखनऊ में हुए कोचिंग सेंटर अग्निकांड के बाद जिला प्रशासन ने अग्नि सुरक्षा मानकों के पालन को लेकर सख्ती बढ़ा दी है। जनपद भर में कोचिंग सेंटर, कंप्यूटर सेंटर, लाइब्रेरी और अन्य सार्वजनिक संस्थानों की जांच के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। मुख्य अग्निशमन अधिकारी अमेंद्र प्रताप सिंह के नेतृत्व में किए गए निरीक्षण में कई संस्थान बिना अग्निशमन विभाग की अनापत्ति प्रमाण पत्र यानी NOC के संचालित पाए गए। कई स्थानों पर आपातकालीन निकास अग्निशमन उपकरण और फायर ब्रिगेड वाहनों के पहुँच मार्ग जैसी आवश्यक व्यवस्थाएं भी नहीं मिली। प्रशासन की संयुक्त टीम ने बड़ौशहर की खतरी गढ़ी समेत जनपद भर में 65 से ज्यादा स्थानों पर फायर सेफ्टी मानकों का उल्लंघन करने वाले कोचिंग सेंटर, कंप्यूटर सेंटर और लाइब्रेरी को सील कर दिया। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यह अभियान आगे भी जारी रहेगा। जिला प्रशासन ने सभी संस्थानों से अग्निशमन नियमों का पालन सुनिश्चित करने की अपील की है। सरूपुर गांव में उत्तर प्रदेश स्थानीय ग्रामीण निकाय समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष राम अवतार सिंह की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई। बैठक में आयोग के सदस्यों, अधिकारियों और गांव के लोगों ने हिस्सा लिया। इस दौरान पिछड़ी जातियों की जनसंख्या, सामाजिक आर्थिक स्थिति के साथ साथ गांव में चल रहे विकास कार्यों पर विस्तार से चर्चा की गई। ग्रामीणों ने आयोग को बताया कि गांव में पिछड़ी जाति के कई परिवार आर्थिक रूप से कमजोर हैं और अभी भी अनेक लोग बुनियादी सुविधाओं से वंचित हैं। आयोग के अध्यक्ष राम अवतार सिंह ने कहा कि आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को शासन की जन कल्याणकारी योजनाओं को पूरा लाभ मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि पिछड़ी जातियों की वास्तविक जनसंख्या और उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति का वैज्ञानिक आकलन किया जा रहा है ताकि स्थानीय निकायों में उनके समुचित प्रतिनिधित्व और आरक्षण के संबंध में उचित संस्तुतियां शासन को भेजी जा सके। बागपत बड़ौत खेगड़ा विकास प्राधिकरण ने अवैध निर्माण और अनधिकृत कॉलोनियों के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी है। प्राधिकरण ने स्पष्ट किया है कि उसके अधिकार क्षेत्र में किसी भी भवन या कॉलोनी का विकास शुरू करने से पहले मानचित्र, लेआउट और अन्य आवश्यक अनुमतियां लेना अनिवार्य है। बिना स्वीकृति किए गए निर्माण के खिलाफ आगे सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। प्राधिकरण ने आम नागरिकों और भूखंड खरीदने के इच्छुक लोगों से अपील की है कि किसी भी प्लॉट या कॉलोनी में निवेश करने से पहले उसकी वैधता का सत्यापन करे। सांसद डॉक्टर राजकुमार सांगवान ने केंद्र सरकार के शहरी विकास मंत्री से सादरा से खेगड़ा तक मेट्रो ट्रेन का विस्तार कराने की मांग की थी। शहरी विकास राज्य मंत्री तोखन साहू ने उनकी मांग पर सकारात्मक रुख अपनाते हुए सादरा से खेगड़ा तक मेट्रो ट्रेन के विस्तार का प्रस्ताव यूपी सरकार को भेज दिया है। इसकी जानकारी शहरी विकास राज्य मंत्री ने सांसद को पत्र भेज कर दी है। इस महत्वपूर्ण परियोजना के साकार होने पर बागपत एवं आसपास के क्षेत्रों के लोगों को बेहतर, सुरक्षित, तेज और आधुनिक परिवहन सुविधा उपलब्ध कराने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम साबित होगी।
1: बागपत जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं चित्रकूट जिले की हलचल। आलेख और स्वर है अजय प्रताप सिंह का।
2: भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय के निर्देशों के क्रम में जनपद चित्रकूट में BBG रामजी योजना के व्यापक प्रचार प्रसार एवं जन जागरूकता के उद्देश्य से विकास खंड एवं ग्राम पंचायत स्तर पर जन जागरूकता कार्यक्रमों एवं जन सम्मेलनों का आयोजन किया जा रहा है। कार्यक्रमों के माध्यम से ग्रामीणों को योजना के उद्देश्यों, लाभों और सहभागिता आधारित विकास कार्यों की जानकारी प्रदान की जा रही है। योजना के अंतर्गत जल संरक्षण, प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन तथा ग्रामीण आधारभूत संरचना के सुदृढ़ी करण हेतु विभिन्न विकास कार्य गतिमान है। दिनांक 1 जुलाई 2026 तक जनपद की 35 ग्राम पंचायतों में मास्टर रोल निर्गत किए गए हैं, जिनके अंतर्गत 11 जल संचयन कार्य, तालाब, चेक डैम तथा 24 अन्य विकास कार्य संचालित किए जा रहे हैं। जिलाधिकारी पुलकित गर्ग ने जानकारी दी कि जनपद चित्रकूट में पर्यटन सुविधाओं के विस्तार हेतु 11.77 करोड़ की लागत से निर्माणाधीन इको टूरिज्म पर आधारित श्री राम वाटिका टूरिज्म इको पार्क का काम चल रहा है। परियोजना के अंतर्गत इको लॉज, फूड कोर्ट, कैफेटेरिया, नेचर ट्रेल, चिल्ड्रेन प्ले एरिया, MP थिएटर, एडवेंचर गेम्स, सोलर लाइटिंग, पार्किंग, जलापूर्ति, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, रेन वाटर हार्वेस्टिंग सहित विभिन्न आधुनिक पर्यटन सुविधाओं का विकास किया जा रहा है। यह परियोजना जनपद चित्रकूट को एक प्रमुख इको टूरिज्म गंतव्य के रूप में स्थापित करने के साथ स्थानीय रोजगार, पर्यटन

0: गतिविधियों एवं क्षेत्रीय आर्थिक विकास को नई गति प्रदान करेगी।
1: गणेश पार्क के पास टूरिज्म विभाग के माध्यम से श्री राम वाटिका टूरिज्म इको पार्क जो है वो विकसित किया जा रहा है। इसकी धनराशि लगभग 12 करोड़ की धनराशि से ये प्रोजेक्ट विकसित किया जा रहा है। और इस पार्क का जो इम्पोर्टेंट फीचर्स हैं, वो ये हैं कि वहाँ पे बैठने के लिए एक अच्छा एम्फी थिएटर है लगभग 200 की क्षमता का, साथ साथ बहुत अच्छे श्री राम और रामायण से जुड़े जो हमारे विदर्स हैं उसकी कहानी पूरी उसमें उकेरी जाएगी। वहाँ पे सभी लोगों के बैठने के लिए उचित व्यवस्था, एक अच्छा हॉर्टिकल्चर का जो पार्क है वो विकसित और पूरे पाथवे के साथ लगभग 70% कार्य इसका पूरा हो चुका है। अगले 3 से 4 महीनों में इसका लोकार्पण जो है वो कर लिया जाएगा।
0: तहसील मानिकपुर क्षेत्र में सिंचाई विभाग द्वारा वर्ष 1984 में निर्मित बरदहा बांध के पुनरुद्धार कार्य कराया जा रहा है। साथ ही 11.40 किलोमीटर लंबी बरदहा मुख्य नहर एवं उससे संबंधित 14 महत्वपूर्ण संरचनाओं के पुनरुद्धार का कार्य भी प्रगति पर है। कार्य पूर्ण होने के उपरांत आगामी मानसून में नहर संचालन के माध्यम से कृषकों को बेहतर सिंचाई सुविधा उपलब्ध होगी तथा छरिया बंदी बराह माफी टैंक एवं जरिया टैंक को भी जलापूर्ति सुनिश्चित की जा सकेगी।
1: लगभग 12 से 14 करोड़ का जो प्रोजेक्ट है वो गवर्नमेंट द्वारा स्वीकृत किया गया है और इससे सभी किसानों को अत्यधिक लाभ मिलेगा और जितनी फसल वर्तमान में जो लेते थे उससे 2 या 3 गुना उससे ज्यादा फसल जो है वो वहाँ पर ले पाएंगे। बरदहा डैम को चौड़ा भी किया जा रहा है, वहाँ पे सारे जो होल्स हैं उनको भी भरा गया।
0: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की प्रेरणा से प्रदेश में लागू नई टेक होम राशन व्यवस्था के अंतर्गत जनपद चितपुर में आंगनवाड़ी लाभार्थी हेतु नई पोषाहार रेसिपी के अनुसार वितरण प्रारंभ कर दिया गया है। वर्तमान में जनपद की 4 विकास परियोजनाओं के अंतर्गत चयनित आंगनवाड़ी केंद्रों पर गर्भवती एवं धात्री माताओं शिशुओं तथा बच्चों की पोषण आवश्यकताओं के अनुरूप निर्धारित श्रेणियों में पोषाहार उपलब्ध कराया जा रहा है। शीघ्र ही जनपद के सभी आंगनवाड़ी केंद्रों में नई व्यवस्था लागू की जाएगी। चितकूट जिले में मानसून सत्र के मद्देनजर बालू और मोरम के खनन पर 3 माह का प्रतिबंध लगाया गया है। अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व चंद्रशेखर ने जनपद के संचालित सभी बालू एवं मोरम खनन पट्टा धारकों तथा अनुज्ञा धारकों को निर्देश जारी करते हुए 1 जुलाई 2026 से 30 सितंबर 2026 तक नदी तल से उप खनिजों के खनन और परिवहन पर पूर्ण रोक लगाने को कहा है। यह प्रतिबंध भारत सरकार के वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी गाइडलाइन और सस्टेनेबल सैंड माइनिंग मैनेजमेंट गाइडलाइन 2016 के तहत लगाया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य वर्षा ऋतु में नदियों के प्राकृतिक प्रवाह, जैव विविधता एवं पर्यावरणीय संतुलन को सुरक्षित रखना है। चित्रकूट जिले के पशुपालकों के लिए मिनी नंदनी कृषक समृद्धि योजना के तहत 10 स्वदेशी उन्नत नस्ल की गायों की डेयरी इकाई स्थापित करने पर 11.80 लाख रुपए तक का अनुदान मिलेगा। यह अनुदान 2 चरणों में दिया जाएगा। योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी प्रमोद कुमार ने बताया कि 10 गांवों की डेयरी इकाई की कुल अनुमानित लागत 23.60 लाख रुपए है। इसमें लाभार्थी को 15% अंशदान स्वयं करना होगा जबकि 35% राशि बैंक ऋण के माध्यम से प्राप्त की जा सकती है। योजना के तहत 50% लाभ महिला पशुपालकों और दूध उत्पादकों को दिया जाएगा। इच्छुक पशुपालक नंद बाबा दुग्ध मिशन पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। योजना से संबंधित अधिक जानकारी के लिए पशु चिकित्सा अधिकारी कार्यालय अथवा उप दुग्धशाला विकास अधिकारी कार्यालय से संपर्क किया जा सकता है।
2: ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।
3: जिले की हलचल इस कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे बागपत और चित्रकूट जिले की हलचल। मीडियम वेव के मीटर पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी लखनऊ, धड़कन देश की।
4: फिल्म आकाश के रोशन सितारों की महफिल आज के मेहमान, विविध भारती पर हर बुधवार शाम 4 बजे पिटारा में सुनिए। रहिए कहीं भी, सुनते रहिए विविध भारती। विविध भारती आपकी बात पहुंचाए करोड़ों तक।
5: अब वक्त है उड़ान का, अब वक्त है पहचान का, अब वक्त है अपने हुनर को आवाज देने का। जुड़िए नई उड़ान से, जहां सपनों को मिलता है आगाज और मेहनत को मिलती है आवाज।
6: तुमने दी आवाज, लो मैं आ गया।
5: हर शाम 5:45 से 6:15 तक सिर्फ आकाशवाणी लखनऊ पर। नई उड़ान, आगाज हर हुनर का, आवाज हर मेहनत की।
3: आकाशवाणी लखनऊ से लीजिए सुनिए देश गान।

अभी आप सुन रहे थे समूह स्वर में देश गान। ये है आकाशवाणी लखनऊ, हमारा अगला कार्यक्रम बस कुछ ही पलों में।

मीडियम वेव के मीटर पर यह है आकाशवाणी लखनऊ। सुबह के 9:30 हुए हैं। प्रस्तुत है उर्दू कार्यक्रम। आज सुनिए आकाशवाणी लखनऊ की पेशकश।

0: साथ खर्च करें, बचत की आदत अपनाएं और अपनी माली इस्तेताद के मुताबिक ही जिंदगी गुजारने की भरपूर कोशिश करें। यही तर्ज अमल किसी भी फर्द, खानदान और माशरे तीनों के लिए इस्तेहकाम और खुशहाली का बाइस बन सकता है। लिहाजा आज के इस बेहद खूबसूरत प्रोग्राम में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आमदनी कम होते हुए कैसे खर्च पर काबू पाया जा सकता है। इन्हीं सब बातों के पेश नज़र आज हमने अहतमाम किया है एक गुफ्तगू का, मौजू है आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया। इस उन्वान पर बातचीत करने के लिए आज की उर्दू बज में हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है सी ए मोहतरमा अरूबा मुमताज़ साहिबा और नाचीज सैयद मोहम्मद उमर। हम सबसे पहले अपने मेहमान खुसूसी का आज के इस प्रोग्राम में खैर मकदम करते हैं, इस्तकबाल करते हैं।
1: शुक्रिया।
0: और अब बगैर किसी तमीद व ताखिर मोहतरमा अरूबा मुमताज साहिबा से सवाल है। अरूबा साहिबा, चूंकि आप पिछले कई सालों से सीए के तौर पर बैंकिंग खिदमत अंजाम दे रही हैं, तो आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया जो एक मारूफ कहावत है, जैसा कि आप खुद जानती हैं, मौजूदा माशी हालात में इस कहावत की अहमियत व इफादियत को आप किस तरह देखती हैं, हमारे सामीन के लिए इसकी वजाहत फरमाएं।
1: जी बिल्कुल, ये कहावत आज भी उतनी ही जरूरी है जितनी पहले थी। इसका सीधा सा मतलब है कि हमें अपनी आमदनी के हिसाब से खर्चा करना चाहिए। अगर खर्च आमदनी से ज्यादा हो जाए तो धीरे धीरे पैसों की परेशानियां शुरू हो जाती हैं। आजकल ऑनलाइन शॉपिंग, आसानी से मिलने वाले लोन्स और हर तरह के ऑफर्स की वजह से कई बार लोग अपनी जरूरत से ज्यादा खर्चा कर देते हैं।
0: जी।
1: फिजूल खर्च से बचने के लिए हमें बचत करना बहुत जरूरी है।
0: तो बहुत उम्दा आप कह रही हैं कि आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया, ये मुहावरा हमें ये सबक देता है कि अखराजात हमेशा आमदनी के मुताबिक होने चाहिए। मौजूदा महंगाई के दौर में ये कहावत पहले से कहीं ज्यादा अहम हो जाती है, क्योंकि माली नज्म व ज़ब्त ही माशी इस्तेहकाम की बुनियाद है। बहुत ही उम्दा बात आपने कही। एक और सवाल यहाँ पर करेंगे, अभी आपने बढ़ती हुई महंगाई का तस्करा किया, एक सवाल महंगाई के ताल्लुक से करेंगे कि बढ़ती हुई महंगाई और महदूद आमदनी के दौर में घरेलू बजट को मुतवाजिन रखने के लिए किन बुनियादी उसूलों को अपनाना जरूरी है, इस पर आप क्या कहती हैं?
1: घर का बजट बनाना हर इंसान के लिए बहुत जरूरी है।
0: जी,
1: बजट से हमें ये पता चलता है कि हमारी कमाई कितनी है और खर्च कितना हो रहा है। सबसे पहले जरूरी खर्च जैसे राशन, बच्चों की पढ़ाई, इलाज, बिजली, पानी, इन सबको अहमियत देनी चाहिए। और उसके बाद जो पैसे बचते हैं उसमें से हमें बचत करनी चाहिए। बजट बनाने से घर खर्च कंट्रोल में रहते हैं और अचानक कोई जरूरत या मुश्किल आ जाए तो उसका सामना करना आसान हो जाता है।
0: तो बहुत अच्छी बात आपने कही कि घरेलू बजट मुतवाजिन रखने के लिए ज़रूरी है कि ज़रूरियात को तरजीह दी जाए, गैर ज़रूरी अखराजात से बचा जाए, हर माह बजट बनाया जाए जैसे आपने कहा, और आमदनी का कुछ हिस्सा बजट के लिए मुख्तस किया जाए ताकि आने वाले ऐसे वक्तों के लिए जिस वक्त में इंसान परेशान होता है उससे मदद हासिल कर सके। तो बहुत ही उम्दा बात आप कर रही हैं। अभी आपने खर्च की बात की, तो खर्च में एक खर्च ज़रूरी होता है और एक खर्च जो होता है वो फजूलियात में जाता है, यानी कि गैर ज़रूरी चीज़ों में भी हम खर्च करने लगते हैं। तो एक सवाल यहाँ पर ये करेंगे कि आज के दौर में फजूल खर्ची और गैर ज़रूरी अखराजात के रुझानात में इजाफा क्यों हो रहा है, एक सवाल तो ये, और इसके मुआशरे और ख़ानदान पर क्या असरात मुरतब होते हैं, इस पर आपकी क्या राय?
1: आजकल सोशल मीडिया, ऑनलाइन शॉपिंग और हर वक्त मिलने वाले ऑफर्स की वजह से लोग कई बार बिना सोचे समझे खर्च कर देते हैं।
0: जी।
1: कई बार हमें किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है पर तब भी हम उसे खरीद लेते हैं। इससे बचने के लिए हमें ज़रूरत और ख्वाहिश में फ़र्क समझना बहुत ज़रूरी है। कुछ खरीदने से पहले एक लिस्ट बनाना चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि उसी के हिसाब से हम सामान खरीदें। मेरी राय में अगर हम खरीदारी से पहले सोच लें कि क्या ये वाकई ज़रूरी है तो फिजूल खर्च से बचा जा सकता है।
0: तो बहुत अच्छी बात आपने कही कि दिखावे की जिंदगी और आसान कर्ज की सहूलियात ने फिजूल खर्ची में इजाफा किया है। ये मुसल्लम हकीकत है कि हम दिखावे के लिए कुछ ना कुछ खरीदने लगते हैं, और इसी तरीके से इसके नतीजे क्या होते हैं वो ये है कि कर्ज

0: बढ़ाना चाहते हैं
1: जी,
0: लेकिन खुद शेयर मार्केट में रोज चीजें नहीं देख सकते। इसमें एक्सपर्ट्स यानी प्रोफेशनल फंड मैनेजर्स होते हैं जो आपका पैसा अलग अलग जगहों पे अलग अलग असेट्स में लगाते हैं। म्यूचुअल फंड में सबसे पहला फायदा आपका ये होता है कि आप छोटे अमाउंट से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जैसे म्यूचुअल फंड में आपकी SIP होती है, आप छोटे अमाउंट से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट करने की अच्छी संभावना होती है। और इन्वेस्टमेंट से पहले 3 बातों का ध्यान जरूर रखना चाहिए। अपना फाइनेंशियल गोल क्लियर कर लें कि आप म्यूचुअल फंड में अगर पैसा लगा रहे हैं तो वो किस चीज के लिए लगा रहे हैं। आपको बिजनेस करना है, आपको कुछ खरीदना है, आपकी रिस्क लेने की क्षमता कितनी है, और सिर्फ हाई रिटर्न देखकर इन्वेस्ट ना करें।
1: तो बहुत उम्दा बात कही कि म्यूचुअल फंड तवील मुद्दत में बेहतर मुनाफे का जरिया बन सकता है जैसा अभी आपने कहा, लेकिन इसमें मार्केट का खतरा लगा रहता है, इस पर भी नजर रखनी चाहिए। सरमायाकारी से पहले अपने माली मकसद, खतरा बर्दाश्त करने की सलाहियत और माहिरीन के मशवरे को मद्देनजर रखना बहुत जरूरी है, तभी आप म्यूचुअल फंड में अपना पैसा लगाएं। बहुत उम्दा बात आपने कही। अभी म्यूचुअल फंड के साथ साथ आपने, क्योंकि आप CA भी हैं, तो आप देखते हैं क्रेडिट कार्ड का बड़ा दौर है। हर शख्स जो है क्रेडिट कार्ड से उधार पैसे ले रहा है, कर्ज ले रहा है। एक सवाल ये करेंगे कि कर्ज लेकर जरूरियात या ख्वाहिशात पूरी करना किस हद तक ये सही है, और बाद में इसके क्या नतीजे हो सकते हैं, इस पर आप क्या कहती हैं?
0: मेरे हिसाब से कर्ज तभी लेना चाहिए जब उसकी वाकई में आपको जरूरत हो और उसका कोई मकसद हो
1: जी।
0: जैसे तालीम, घर खरीदना या कारोबार शुरू करना या बढ़ाना, ऐसे कर्ज को जिम्मेदाराना फैसला माना जा सकता है। लेकिन सिर्फ दिखावा, महंगी चीजें खरीदना या गैर जरूरी ख्वाहिशें को पूरी करने के लिए अगर आप कर्ज ले रहे हैं तो वो ठीक नहीं है। इससे आगे चलकर बोझ बढ़ सकता है। कर्ज लेने से पहले ये देखना बहुत जरूरी है कि उसकी किश्त यानी EMI हम अपनी आमदनी में से आसानी से दे सकते हैं कि नहीं। तो कर्ज लेने से पहले आप ये जरूर देखें कि आप किस मकसद के लिए उसे ले रहे हैं।
1: तो बहुत अच्छी बात आपने कही कि जरूरियात के तहत कर्ज लिया जा सकता है और लेना मुनासिब हो सकता है, लेकिन ख्वाहिशात पूरी करने के लिए कर्ज लेना दानिशमंदी नहीं है, अकलमंदी नहीं है। इससे कर्ज का बोझ, सूद की अदायगी और माली मुश्किलात में मजीद इजाफा हो सकता है, जैसा कि आपने भी कहा, तो इससे बचना चाहिए। एक और सवाल यहाँ पर करेंगे, माली शमूलियत के तहत बैंक खाते, डिजिटल अदायगी, बीमा और पेंशन जैसी सहूलियात आम आदमी की माशी सलामती यानी जिंदगी में किस हद तक मामिन साबित हो सकते हैं, इस पर आप क्या कहती हैं?
0: माली शमूलियत का सीधा मतलब है कि हर इंसान तक बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज की पहुंच हो
1: जी।
0: जब किसी के पास बैंक अकाउंट होता है तो उसका पैसा ज्यादा सुरक्षित रहता है और सरकारी योजनाओं का फायदा सीधा उनके बैंक अकाउंट में आ सकता है। इसके अलावा बैंक से जुड़ने पर लोगों में बचत की आदत बढ़ती है और जरूरत पड़ने पर आसानी से कर्ज या दूसरी सुविधाओं का फायदा भी मिल सकता है।
1: तो बहुत उम्दा बात कही कि बैंक खाते, डिजिटल अदायगी, बीमा और पेंशन जैसी सहूलियात माली तहफ्फुज फराहम करते हैं, बचत को फरोग देते हैं और हुकूमत की मुख्तलिफ स्कीमों के फवाइद बराए रास्त अवामुन नास तक पहुंचाने में मददगार भी साबित होते हैं, इसलिए इस तरफ तवज्जो देनी चाहिए। एक आखिरी सवाल आपसे करेंगे कि आखिर में हमारे सामीन को आज के इस प्रोग्राम के तहत आप क्या पैगाम देना चाहेंगी ताकि वो अपनी आमदनी, खर्च, बचत और सरकारी स्कीमों से फायदा उठाते हुए एक मजबूत और मुतवाजिन मुआशी जिंदगी गुजार सके।
0: मैं अपने सभी लिसनर्स से बस इतना कहना चाहूंगी कि आपकी आमदनी कम हो या ज्यादा, पैसों का सही इस्तेमाल और थोड़ी बचत करना बहुत जरूरी है। सोच समझकर खर्च करें, जितना हो सके बचत की आदत डालें और सरकार की फायदेमंद स्कीम्स की जानकारी लेकर उन सबका लाभ जरूर उठाएं। याद रखिए, आज की छोटी छोटी आपकी बचत सही फाइनेंशियल डिसीजन कल को सुरक्षित बनाता है। बचत की आदत हमें घर में शुरू से डालनी चाहिए ताकि वक्त आने पर उसका सही इस्तेमाल किया जा सके। आजकल कई सारे इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं, जैसे कि SIP हो गया, बैंक अकाउंट खुलवाना हो गया। बैंक अकाउंट जरूर खुलवाएं, उससे आपकी बचत की आदत बनती है। हर महीने थोड़ा पैसा अलग रखें अपनी आमदनी से ताकि जरूरत आने पर उसको इस्तेमाल किया जा सके।
1: तो बहुत अच्छा पैगाम आपने दिया, बहुत ही उम्दा आपने मैसेज दिया है कि अपनी आमदनी के मुताबिक खर्च करें, बाकायदा बचत करें, सोच समझ कर सरमायाकारी करें।

सरकारी स्कीमों से फायदा उठाएं और माली नज्म व ज़ब्त को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएं। यही माशी खुशहाली और पायदार तरक्की का रास्ता है। सामीन, आज की संजीदा और बामकसद गुफ्तगु से ये हकीकत वाज़ह होकर सामने आती है कि माशी इस्तेहकाम का राज ज्यादा आमदनी में नहीं बल्कि आमदनी और अखराजात के दरमियान मुनासिब तवाजुन कायम रखने में है। अगर हम अपनी ज़रूरियात को तरजीह दें, फजूल खर्ची से बचें, बचत की आदत अपनाएं और माली मंसूबा बंदी के साथ जिंदगी गुजारें तो न सिर्फ अपनी बल्कि अपने खानदान की माशी जिंदगी को भी ज्यादा महफूज और पुरसकून बना सकते हैं। और अब हम अपने मेहमान खुसूसी सी ए मोहतरमा अरूबा मुमताज साहिबा के बे इंतहा ममनून और मशकूर हैं कि आपने हमारे सामईन के लिए बहुत ही अच्छी और उम्दा मालूमात फराहम की। इसी के साथ आज का उर्दू प्रोग्राम यहीं पर ख़त्म होता है। अपने मेज़बान दोस्त सैयद मोहम्मद उमेर को दीजिए इजाज़त। आदाब।

जिले की हलचल। ये आकाशवाणी है। अभी आप सुन रहे थे उर्दू कार्यक्रम के अंतर्गत आकाशवाणी लखनऊ की पेशकश। मीडियम वेव 401.61 मीटर यानी 747 किलो हर्ट्ज पर यह है आकाशवाणी लखनऊ, धड़कन देश की।

0: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
1: डाउनलोड वेव्स ओटीटी ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।
2: मीडियम वेव 401.61 मीटर पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी लखनऊ। सुबह के 9:50 हुए हैं। प्रस्तुत है लोकगीत का कार्यक्रम लोक रंग। आज की अवधि लोकगीत कलाकार हैं पूजा तोमर। इनके स्वर में सबसे पहले आइए सुनते हैं घोड़ी गीत।

लोकगीत के कार्यक्रम लोक रंग में आज के कलाकार हैं पूजा तोमर। इनके स्वर में आइए अब सुनते हैं द्वार चार।

पूजा तोमर के स्वर में अभी आप सुन रहे थे अवधि लोकगीत। इन्हें आप हमारे कार्यक्रम लोक माधुरी में दोपहर 2:45 पर भी सुन सकते हैं। इसी के साथ ही लोक रंग कार्यक्रम अब समाप्त होता है। ये है आकाशवाणी लखनऊ, हमारा अगला कार्यक्रम बस कुछ ही पलों में।

0: आइए जुड़िए विज्ञान जगत के साथ, जहां हर जटिल सवाल का जवाब मिलता है रोचक अंदाज में। क्या है आपके जीवन में विज्ञान की भूमिका, कैसे बदल रही है तकनीक आपकी दुनिया, जानिए विशेषज्ञों से, सुनिए रोचक चर्चाएं और पाइए विज्ञान से जुड़े ताजा अपडेट्स। तो सुनना न भूलें
1: विज्ञान जगत हर शनिवार शाम 7:30 बजे आकाशवाणी लखनऊ पर।
2: जोश को मिले दिशा, मेहनत को मिले मान, कला को विस्तार मिले, परंपरा को मिले नई उड़ान।
3: कुछ करिए बस बस बड़ा पौधे, अब कुछ करिए।
2: सुनिए नई उड़ान, जहां गाने हो, बातें हो, योजनाएं हो और हर खबर लाए विकास और अवसर की जानकारी। श्रोताओं के दिल कहे, नई उड़ान निभाएगा असली यारी। हर शाम 5:45 से 6:15 तक सिर्फ आकाशवाणी लखनऊ पर, गूंजे सफलताओं की आवाज।
4: मैं डॉक्टर राजेश हर्षवर्धन, चिकित्सा अधीक्षक SJPGIMS और संयुक्त निदेशक राज्य अंग एवं उत्तर प्रत्यारोपण संगठन उत्तर प्रदेश, आज आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारे देश में अंग जैसे किडनी, लीवर, हार्ट, कॉर्निया, इनकी वैसे रोगियों की संख्या काफी ज्यादा हो रही है, बढ़ रही है, जिनके केस में ये अंग काम नहीं कर रहे हैं और उन्हें अंग प्रत्यारोपण की आवश्यकता है। आप एक मुहिम के रूप में आगे आकर SOTOUP के वेबसाइट पे, होम पेज पे प्लीज नाउ बटन क्लिक करें और QR कोड स्कैन करके अंग दान करने का शपथ लें, क्योंकि अंग दान महादान है। आपके इस निर्णय से किसी की जिंदगी बच सकती है। दान जगत का नियत धर्म है, व्यर्थ मनुष्य डरता है, एक दिवस तो स्वयं उसे सब कुछ देना पड़ता है, बचते वही समय पर जो सर्वस्व दान करते हैं, इतु का ज्ञान रहा न जिन्हें वो देकर भी मरते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप यही मैसेज अपने सभी संपर्क में फैलाएंगे। धन्यवाद।
5: मीडियम वेव के मीटर पर यह है आकाशवाणी लखनऊ, प्रस्तुत है फिल्म संगीत का कार्यक्रम और इस कार्यक्रम में सबसे पहले हम आपको सुनवाने जा रहे हैं कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाज़ में हसरत जयपुरी के लिखे इस गीत को, जिसे संगीत दिया है अनु मलिक ने और फिल्म है मैं खिलाड़ी तू अनाड़ी।

फिल्म संगीत के कार्यक्रम में अगली आवाज़ आपके रेडियो सेट पर पहुंच रही है। अभिजीत और साधना सरगम की फिल्म है जिगर, संगीत आनंद मिलंद का।

0: घर आंगन मा है बहार, कहानी कविता और बतकही के फुहार, आपन बोली बानी संग लोक गीतन के बहे बयार, खान पान संग सेहत के और स्वावलंबन के बहचली है बयार, घर आंगन संग होई के तैयार, चलो विकास के रफ्तार, सोम बृहस्पति और साथे है दिन शनिवार, ईमेल और पाती के होए भरमार।
1: अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत का कार्यक्रम मीडियम वेव 401.61 मीटर यानी 747 किलो हर्ट्स पर। यह है आकाशवाणी लखनऊ, धड़कन देश की। आप हमारे कार्यक्रम डीटीएच सेवा के साथ साथ मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन एआईआर पर भी सुन सकते हैं। ये आकाशवाणी लखनऊ है। सुबह के 10:10 होने को हैं। सुनिए न्यूज़ बुलेटिन विश्व दर्पण दिल्ली केंद्र से बस कुछ ही पलों में।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रवाना। श्री मोदी ने कहा इस यात्रा से व्यापक रणनीतिक साझेदारी और प्रगाढ़ होगी। भारत जिनेवा में उपभोक्ता संरक्षण कानून और नीति पर अंतर सरकारी विशेषज्ञ समूह के 9वें सत्र की अध्यक्षता करेगा। भारत ब्रिक्स की अपनी अध्यक्षता में केरलम के कोच्चि में आज से शुरू हो रही महिला कार्य समूह की बैठक की मेजबानी कर रहा है। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में प्रदर्शनकारियों पर पाकिस्तानी रेंजर्स की गोलीबारी में एक व्यक्ति की मौत और कई लोगों के घायल होने के बाद तनाव बढ़ा। और फीफा विश्व कप में 5 बार के चैंपियन ब्राजील की नॉर्वे से 2-1 से हार के बाद नेमार जूनियर ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास लेने की कर दी है घोषणा। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रवाना हो गए हैं। पहले चरण में श्री मोदी आज इंडोनेशिया पहुंचेंगे। ये प्रधानमंत्री की 4थी इंडोनेशिया यात्रा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मई 2018 में दोनों देशों के संबंधों के व्यापक रणनीतिक भागीदारी तक पहुंचने के बाद से शीर्ष नेतृत्व के बीच पहली द्विपक्षीय वार्ता होगी।
1: प्रधानमंत्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियंतो के साथ वार्ता करेंगे और रणनीतिक भागीदारी में प्रगति की समीक्षा करेंगे। वार्ता में

0: दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने पर चर्चा होने की उम्मीद है, जिसमें रक्षा सहयोग, व्यापार, निवेश और ऊर्जा सुरक्षा तथा सांस्कृतिक सहयोग पर खास ध्यान दिया जाएगा। जकार्ता कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण प्रधानमंत्री मोदी का भारतीय समुदाय को संबोधन होगा, जिसे लेकर पूरे देश में उत्साह है। बाली, मेदान, सेमारंग, सुराबाया और जकार्ता के समुदाय सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ भव्य स्वागत की तैयारी कर रहे हैं। हजारों भारतीय नागरिकों और भारतीय मूल के लोगों के जुटने की उम्मीद है, जो इस यात्रा को गर्व का विषय और अपनी मातृभूमि के साथ संबंध मजबूत करने का अवसर मान रहे हैं। 8 जुलाई को प्रधानमंत्री मोदी ऐतिहासिक प्रम्बनन मंदिर के दर्शन के लिए योग्यकार्ता जाएंगे। भारत इस यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के जीर्णोद्धार के प्रयासों में सहयोग कर रहा है, जो दोनों देशों के बीच गहरे सांस्कृतिक संबंधों को रेखांकित करता है। जकार्ता से संदीपन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमीषा।
1: श्री मोदी ने कहा कि वे राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के निमंत्रण पर इंडोनेशिया जा रहे हैं। इस यात्रा से दोनों देशों की व्यापक रणनीतिक भागीदारी और मजबूत होगी। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो वर्ष 2025 के गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में भारत आए थे। इंडोनेशिया से प्रधानमंत्री मोदी ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। उनकी यात्रा प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के निमंत्रण पर हो रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड यात्रा से भारत की एक्ट ईस्ट नीति, महासागर तथा स्वतंत्र और मुक्त हिंद प्रशांत क्षेत्र के प्रति भारतीय दृष्टिकोण और सशक्त होगा। भारत स्विट्जरलैंड के जिनेवा में उपभोक्ता संरक्षण कानून और नीति पर अंतर सरकारी विशेषज्ञ समूह के नवे सत्र की अध्यक्षता करेगा। संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास संगठन ने 6 से 8 जुलाई तक इस सत्र का आयोजन किया है।
2: उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा है कि इस सत्र में सदस्य देश, अंतर्राष्ट्रीय संगठन, उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण, शिक्षाविद और अन्य संबंधित पक्ष उपभोक्ता संरक्षण कानून और नीति से जुड़े उभरते मुद्दों पर विचार विमर्श करेंगे। उपभोक्ता मामले विभाग की सचिव निधि खरे इस सत्र की अध्यक्षता करेंगी। वह 3 दिन तक चलने वाले इस सत्र में विचार विमर्श का संचालन करेंगी। सत्र के दौरान उपभोक्ता जानकारी और शिक्षा, टिकाऊ उपभोग, वैश्विक बाजारों में उपभोक्ता संरक्षण कानून के प्रभावी क्रियान्वयन और सीमा पार उपभोक्ता संरक्षण जैसे विषयों पर चर्चा होगी। भारत वाई द प्रिंसिपल मैटर विषय पर आयोजित उच्च स्तरीय फायरसाइड चर्चा में भी भाग लेगा। नीतिका गुप्ता, आकाशवाणी समाचार, नई दिल्ली।
1: भारत असम के गुवाहाटी में 2 दिन की ब्रिक्स मादक पदार्थ रोधी एजेंसी प्रमुखों की बैठक की मेजबानी करेगा। हमारे संवाददाता ने बताया कि आज से शुरू हो रही बैठक का उद्देश्य संस्थागत संपर्क को मजबूत करना और मादक पदार्थ रोधी एजेंसियों के बीच सहयोग बढ़ाना है।
3: बैठक में सिंथेटिक ड्रग्स और प्रिकर्सर रसायनों की अवैध आपूर्ति पर रोक, खुफिया सूचनाओं के आदान प्रदान तथा परिचालन समन्वय को मजबूत बनाने, क्षमता निर्माण और संस्थागत सहयोग बढ़ाने जैसे विषयों पर चर्चा होगी। प्रतिनिधि ने साइकोएक्टिव पदार्थों, डार्कनेट के माध्यम से होने वाली तस्करी, क्रिप्टो करेंसी आधारित अवैध वित्तीय लेन देन तथा प्रिकर्सर रसायनों के दुरुपयोग जैसी उभरती चुनौतियों पर भी विचार विमर्श करेंगे। राकेश तोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
1: विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में प्रदर्शनकारियों पर पाकिस्तान रेंजर्स की गोलाबारी में एक व्यक्ति की मौत हो गई और कई के घायल होने के बाद तनाव और बढ़ गया है। हमारी संवाददाता ने खबर दी है कि यह घटना बुनियादी अधिकारों, आर्थिक राहत और राजनीतिक स्वतंत्रता की मांग के प्रदर्शनों के बीच हुई है।
4: पूरे क्षेत्र में पाकिस्तान विरोधी प्रदर्शनों में 600 से अधिक नागरिक अधिकार कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया है। इस बीच कल लंदन में प्रवासी कश्मीरियों ने प्रदर्शनकारियों के समर्थन में रैली निकाली। दूसरी ओर पाकिस्तान में कराची के अब्बासी शहीद अस्पताल में भी विरोध प्रदर्शन तेज हो गए हैं, जहां डॉक्टर लंबित वेतन, बेहतर सुरक्षा और सुविधाओं में सुधार की मांग कर रहे हैं। डॉक्टरों ने मांगे पूरी नहीं होने पर सेवाएं बंद कर देने की चेतावनी दी है। विश्व दर्पण के लिए मैं निवेदी।
1: पुर्तगाल, ग्रीस और स्पेन में सैकड़ों दमकल कर्मी जंगल में लगी भीषण आग से जूझ रहे हैं। स्पेन

0: और इटली ने पुर्तगाल में 3 दिन से लगी भीषण आग को बुझाने में मदद के लिए अपने अतिरिक्त दमकल कर्मी भेजे हैं।
1: ग्रीस के दूसरे सबसे बड़े शहर थेसालोनिकी के कुछ हिस्सों में अधिकारियों ने लोगों से घर के अंदर रहने का आग्रह किया है। यूरोपीय संघ की कोपरनिकस उपग्रह मानचित्रण एजेंसी के अनुसार कल तक जंगल की आग 12,000 हेक्टेयर क्षेत्र में फैल चुकी थी। यूरोपीय संघ के नागरिक सुरक्षा और मानवीय सहायता विभाग ने बताया कि स्पेन ने शुक्रवार को पुर्तगाल को अतिरिक्त सहायता के रूप में 120 दमकल कर्मी और 45 वाहन भेजे, जबकि इटली और स्पेन से 3 दमकल विमान भी मदद के लिए भेजे गए। स्पेन में पूर्वोत्तर गिरोना क्षेत्र में शुक्रवार से लगी जंगल आग लगभग 2,200 हेक्टेयर क्षेत्र में फैल चुकी है। विश्व दर्पण के लिए समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
0: प्रचंड तूफान बावी ने अमरीकी प्रशांत द्वीपों पर दस्तक दी है। चक्रवात और मूसलाधार बारिश से गुआम और उत्तरी मारियाना द्वीपों पर असर पड़ा है। लगभग 290 से लेकर 350 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से यह तूफान प्रशांत द्वीपों की ओर बढ़ रहा है। अमरीकी राष्ट्रीय मौसम सेवा ने इससे विनाशकारी तबाही की चेतावनी दी है। इससे समुद्र में लगभग 11 मीटर ऊंची लहरें उठ सकती हैं। ब्राजील के दिग्गज फुटबॉल खिलाड़ी नेमार जूनियर ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास ले लिया है। 5 बार के विश्व चैंपियन ब्राजील की राउंड 16 में कल रात नॉर्वे से 2-1 से हार और छठे विश्व कप खिताब से चूकने के कुछ पलों बाद ही उन्होंने ये घोषणा की। वे हमेशा ब्राजील के सबसे प्रमुख स्कोरर रहे। कल के मैच में भी उन्होंने ब्राजील के लिए एकमात्र गोल किया, लेकिन बावजूद इसके वो अपनी टीम को हार से बचा ना पाए। उनके संन्यास से ब्राजील फुटबॉल में एक सर्वाधिक प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय करियर का अंत हो गया है। और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रवाना। श्री मोदी ने कहा, इस यात्रा से व्यापक रणनीतिक साझेदारी और प्रगाढ़ होगी। भारत जिनेवा में उपभोक्ता संरक्षण कानून और नीति पर अंतर सरकारी विशेषज्ञ समूह के 9वें सत्र की अध्यक्षता करेगा। भारत ब्रिक्स की अपनी अध्यक्षता में केरलम के कोच्चि में आज से शुरू हो रही महिला कार्य समूह की बैठक की मेजबानी कर रहा है। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में प्रदर्शनकारियों पर पाकिस्तानी रेंजर्स की गोलीबारी में एक व्यक्ति की मौत और कई लोगों के घायल होने के बाद तनाव बढ़ गया है। और फीफा विश्व कप में आज इंग्लैंड ने मेक्सिको को 3-2 से हराकर क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: मीडियम वेव 401.61 मीटर यानी 747 किलो हर्ट्ज पर यह है आकाशवाणी लखनऊ, धड़कन देश की। सुबह के 10:20 हुए हैं। थोड़ी देर में हम आपके लिए लेकर आएंगे नए तरानों का कार्यक्रम चित्रपट से।

0: बदल रहा है भारत, तेज है रफ्तार,
1: जुड़ रहा है हर कोना, हर दिल में पल रहा मंजिलों का ख्वाब।
0: एक ऐसा कार्यक्रम
1: जहां मिलती है सरकारी योजनाओं की सीधी जानकारी,
0: विकास की बातें, संगीत की मिठास
1: और एक नए भारत की आवाज़।
0: जुड़िए हर शाम 5:45 पर,
1: सुनिए बदलते भारत की धड़कन नई उड़ान के साथ आकाशवाणी लखनऊ के विशेष कार्यक्रम में।
2: मैं डॉक्टर राजेश हर्षवर्धन, चिकित्सा अधीक्षक SJPGIMS और संयुक्त निदेशक राज्य अंग एवं उत्तर प्रत्यारोपण संगठन उत्तर प्रदेश, आज आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारे देश में अंग जैसे किडनी, लीवर, हार्ट, कॉर्निया, इनकी वैसे रोगियों की संख्या काफी ज्यादा हो रही है, बढ़ रही है, जिनके केस में ये अंग काम नहीं कर रहे हैं और उन्हें अंग प्रत्यारोपण की आवश्यकता है। आप एक मुहिम के रूप में आगे आकर SOTOUP के वेबसाइट पे, होम पेज पे प्लीज नाउ बटन क्लिक करें और QR कोड स्कैन करके अंग दान करने का शपथ लें, क्योंकि अंग दान महादान है। आपके इस निर्णय से किसी की जिंदगी बच सकती है। दान जगत का नियत धर्म है, व्यर्थ मनुष्य डरता है, एक दिवस तो स्वयं उसे सब कुछ देना पड़ता है, बचते वही समय पर जो सर्वस्व दान करते हैं, इतु का ज्ञान रहा न जिन्हें वो देकर भी मरते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप यही मैसेज अपने सभी संपर्क में फैलाएंगे। धन्यवाद।

मीडियम वेव के मीटर पर हम हैं आकाशवाणी लखनऊ और प्रस्तुत है कार्यक्रम चित्रपट से, जहां हम आपके लिए लेकर आए हैं नई तरानी। और इस कार्यक्रम में हम शुरुआत करने जा रहे हैं जुबीन नौटियाल और नीति मोहन की आवाज़ में गाए इस गाने के साथ में, जो है फिल्म दो दीवाने शहर में से। इस गाने को लिखा है अभिरुचि चंद ने और संगीत है हशीम अब्दुल वहाब का।

0: रीजन तो बता दो ना बोलने का।
1: नए तरानों का कार्यक्रम चित्रपट से सुन रहे हैं आप आकाशवाणी लखनऊ से, और अगली आवाज आपके रेडियो सेट पर पहुंच रही है अरिजीत सिंह और सुनिधि चौहान की। फिल्म है कॉकटेल 2 और इस गाने के लिए बोल लिखे हैं अमिताभ भट्टाचार्य ने, संगीत दिया है प्रीतम ने।

चित्रपट से कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से, और हम आपको अब सुनवाने जा रहे हैं जुबीन नौटियाल और सुवर्णा त्रिपाठी की तिवारी की आवाज़ में धड़क टू फिल्म का ये गीत, जिसे लिखा है ओजिल दलाल ने और संगीत दिया है तनिष्क बागची ने।

धुरंधर इस फिल्म का गाना अब हम आपको सुनवाने जा रहे हैं अरिजीत सिंह और अरमान खान की आवाज़ में, जिसे लिखा है इरशाद कामिल ने और संगीत दिया है आदर्श ने।

शुभ मंगल सावधान, इस फिल्म का गाना अभी आप सुनेंगे शाशा तिरुपति की आवाज़ में। गीत और संगीत तनिष्क और वायु का है।

0: फुकरे रिटर्न, इस फिल्म का गाना हम आपको सुनवाने जा रहे हैं ज्योतिका टांगरी की आवाज़ में, बोल कुमार के हैं और संगीत शारी बौर तोशी का।
1: धक धड़क भड़क दिल धड़क धड़क गया, अटक अटक ना माना, लट गई रे उलझ गए कैसे कोई हट गया, मन से लिपट अनजाना। वो नील अंग सा रूप रंग ले सगल समाधि प्रेम भंग, अंग अंग फिर मन में दंग और दल बदंग मैं संग सा।

0: ये कस्टमर केयर कहाँ है? हाँ मैडम
1: जी,
0: ये केवाईसी अपडेट के लिए मुझे बार बार मैसेज क्यों आ रहा है?
1: क्योंकि बैंकिंग सेवाओं के लिए निर्धारित समय पर केवाईसी अपडेट करवाना चाहिए।
0: पर ये होगा कैसे?
1: अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस करेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसका डिक्लेरेशन दें।
0: अच्छा, और अगर कोई बदलाव हो तो?
1: तो ऐसे में पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण देकर केवाईसी अपडेट करवा सकते हैं।
0: बस
1: बस
0: समझ गया।
1: अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
2: आरबीआई कहता है,
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: आकाशवाणी लखनऊ से ये है कार्यक्रम चित्रपट से, और इस कार्यक्रम में अब हम आपको सुनवाने जा रहे हैं ऐश किंग और सचिन जिगर की आवाज़ में स्त्री फिल्म का ये गाना, जिसे लिखा है वायु ने और संगीत दिया है सचिन जिगर ने।

आकाशवाणी लखनऊ से ये है नए तरानों का कार्यक्रम चित्रपट से, और अगला गाना फिल्म सीता रामम से। इस गाने में आवाज है शाश्वत सिंह की, बोल लिखे हैं मंदार चोलकर ने और संगीत दिया है विशाल चंद्रशेखर ने।

मीडियम वेव 401.6 मीटर पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी लखनऊ। आप हमारे कार्यक्रम डीटीएच सेवा और न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी सुन सकते हैं। ये है नए तरानों का कार्यक्रम चित्रपट से, और कार्यक्रम की ये है अंतिम पेशकश जो है फिल्म चांद मेरा दिल से। आवाज़ राघव चैतन्य और जोनीता की है, बोल लिखे हैं अमिताभ भट्टाचार्य ने और संगीत सचिन जिगर का है।

0: अब आज का चित्रपट से कार्यक्रम समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं।
1: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
2: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
1: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
2: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
1: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001-4242 पर।
2: 8700001-4242।
0: मीडियम वेव 401.61 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। 11 बज चुके हैं और शुरू हो गया है हमारे श्रोताओं का और हमारा भी पसंदीदा फिल्म संगीत का फोन एन इंटरैक्टिव प्रोग्राम कुछ तुम कहो कुछ हम कहें। इस कार्यक्रम में आप करेंगे अपने दिल की बात हमसे और सुनेंगे कुछ हमारी भी बातें। इसके लिए आपको सिर्फ एक काम करना है, ये फोन नंबर नोट करिए और मिलाइए 0522-223-8825 यानी 0522-2238825। कीजिए हमारे साथ कुछ बातें और सुनिए अपनी पसंद के गीत। तो कार्यक्रम शुरू करते हैं और मिलते हैं हमारे कार्यक्रम के आज के सबसे पहले कॉलर श्रीचंद जी से। हेलो
3: जी। जी जी नमस्कार।
0: नमस्कार श्रीचंद जी, आप अपना पूरा परिचय दे दीजिए एक बार।
3: मैं दीदी जी श्री चंद ग्राम जलालपुर जिला बांदा से बोल रहा हूँ। दीदी
0: क्या नाम बताया आपने?
3: श्री चंद्र निषाद।
0: अच्छा, ग्राम बांदा से, बांदा
3: जलालपुर ग्राम बांदा जिला,
0: बांदा जिला से स्वागत है आपका। कैसे हैं आप?
3: ठीक ठाक है, बढ़िया है दीदी।
0: बढ़िया है, बस यही सुनना चाहते हैं हम, क्योंकि आप बढ़िया हैं तो हम भी बढ़िया हैं, है ना?
3: जी, जी।
0: और बताइए क्या कहना चाहेंगे, कौन अपने दिल की कौन सी बात आज हमारे साथ शेयर करना चाहेंगे?
3: और तो ज्यादा दीदी जी मेरे दिल में बात कुछ नहीं है।
0: क्यों भाई, ऐसा क्यों?
3: आज बढ़िया पहली कॉल लग गई बहुत दिन के बाद, इतना ही
0: तुम पूरा मौका मिल रहा है आपको। पहली कॉल लगने में कितना फायदा होता है ना। चलिए ठीक है, कोई नहीं, अगली बार कोई बात सोच के आइएगा, ठीक है? तो सुनवाएं आप सुनना चाहते हैं कौन सा गीत, अपने आप से बता दीजिए।
3: भावरे निखिराए फूल फूल खोले गए रात,
0: प्रेम रोग फिल्म का ये गीत है।
3: हाँ,
0: सुनिए आप सभी इनकी पसंद है। धन्यवाद धन्यवाद।

0: कार्यक्रम में मिलते हैं बहुत दूर त्रिपुरा से संगीता जी से। हेलो,
1: नमस्कार
0: राधे राधे संगीता देवनाथ जी।
1: जी
0: जी, त्रिपुरा में कौन सी जगह से बोल रही हैं आप?
1: त्रिपुरा की नर्तिस से बोल रही हूँ।
0: हेलो
1: जी,
0: जी कहिए, क्या कहना चाहेंगी?
1: मैं तो अच्छी हूँ, आप कैसे हो? बहुत दिनों की बात आपके साथ बात करने का मौका मिला।
0: अच्छा, इसका मतलब आपने पहचान लिया।
1: चलिए, आपके साथ बात करने का तो मौका मिलता ही नहीं।
0: अरे नहीं नहीं,
1: इतना भी दिया। और अच्छा, में एक दिन आप आती हो तो कैसे मिले आपको?
0: एक बार बताइए, हर व्यक्ति जब भी
1: आती तो बहुत अच्छी होती।
0: जब भी नहीं नहीं ऐसा होता है ना, जब रोज रोज आते हैं ना तो फिर उतनी इम्पोर्टेंस नहीं होती है, फिर वो खत्म हो जाती है। इंतजार के बाद जब कोई मिलता है,
1: खत्म होगी नहीं।
0: जब इंतजार के बाद कुछ
1: तो सब छूटा जाती है।
0: नहीं नहीं, और एक बात और है, अब आपसे बात हो रही है, ऐसी किसी से भी बात हो, क्योंकि आपके प्रोग्राम में तो फोन मिलता ही नहीं। अरे भाई, आपका आज तो मिल गया है ना, तो फिर और बातें करते हैं, कुछ और बातें करते हैं। चलिए अब बताइए, कुछ और बात करिए।
1: और क्या बताऊं?
0: हाँ, कैसा है,
1: बताइए ना आपके बारे में कुछ।
0: हाँ, हमारे बारे में
1: थोड़ा कुछ,
0: हमारे बारे में
1: पता होना चाहिए ना।
0: अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा, हमारे बारे में ये है कि हम अपने श्रोताओं को बहुत चाहते हैं और बहुत उनका उनकी फ़ोन कॉल्स का सबका हम भी इंतज़ार करते हैं। हफ्ते भर हम भी इंतज़ार करते हैं, आप ये मत सोचिए कि आप ही याद करते हैं, हम भी याद करते हैं, है ना। और जब आप लोगों से बात करने का मौका मिलता है तो बस चूकते नहीं है, बस ये रहता है कि बस जल्दी से फ़ोन लगे। अगली बार लिख के लाइएगा क्या बात करनी है, ठीक है? भूलिएगा नहीं। चलिए, तो
1: अगली बार खाते पे लिख लूंगी पहले। सोमवार दिन तो मैडम जी आएगी, क्या क्या कहना है।
0: बिल्कुल बिल्कुल, चलिए ठीक है। तो आज आपकी पसंद का गीत सुनवाते हैं, आप सुनना चाहते हैं सिलसिला फिल्म का गीत। हाँ
1: जी जी,
0: ठीक है,
1: और सारे छुपाओं को लेके सुनूंगी। हाँ, सुनिएगा।
0: बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में फोन करने के लिए। नमस्कार, अपना ख्याल रखिएगा, धन्यवाद।

0: कार्यक्रम में मिलते हैं उनसे जिनको हमारे कार्यक्रम के सभी श्रोता जानते हैं। बहुत बढ़िया आवाज है और हैं कौन? पूनम जी, वो भी कानपुर से, लखनऊ के पड़ोस से। हाँ जी पूनम जी।
1: कोयल गाती है,
0: आहा,
1: कोयल गाती है, पंछी भी झूम उड़ते हैं।
0: वाह।
1: जब आपकी आवाज आती है आकाशवाणी लखनऊ में,
0: आहा,
1: तब खुशियों के फूल खिल उठते हैं।
0: गुड मॉर्निंग। वाह वाह वाह वाह, आपने तो सब जगह फूल खिला दिए। आपकी आवाज भी तो फूल खिला रही है।
1: बहुत फूल खिलाती है, और जब आती है तो सच में खुशियों के फूल खिल जाते हैं।
0: ये तो हमारे श्रोताओं का, आप सबका प्यार है जो बोलता है, वरना ऐसा नहीं है, हम ही नहीं है, हमारे श्रोता भी इतने, आप लोग इतने टैलेंटेड हैं, इतने बढ़िया बोलते हैं, इतना बढ़िया लिखते हैं कि मज़ा आ जाता है हमको भी सुन के। इसीलिए आप लोगों से बात करने में बहुत अच्छा लगता है।
1: मैम मुझे भी सच में आपसे बात करके एकदम, मैं क्या बताऊं, ऐसा लगता है ना कि मेरे पैर जमीन पर।
0: अरे वाह वाह वाह, आज तो हम भी उड़ गए।
1: हम दोनों ही हवा में उड़ रहे
0: हैं। चलिए बढ़िया।
1: और मैम बताएं, आप तो हफ्ते में एक बार आती हैं, और मैं इतना प्रयास कर रही थी कि आपसे बात हो जाए, आपसे बात हो जाए। चलिए आज हो गई।
0: हाँ,
1: बहुत अच्छा लग रहा है।
0: हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है कि आपसे बात हो रही है। तो जी, पूनम जी,
1: और
0: आप
1: मैं बस
0: भी
1: यही कहना चाहती हूँ कि मैम हफ्ते में अगर दो बार आपसे बातें हो जाए तो और अच्छा रहेगा। लेकिन
0: देखिए, सबको
1: बहुत अच्छा दिन चूज किया है, सोमवार के दिन आप आती हैं। अरे
0: ये सब हमने कोई चूज नहीं किया, हमको जब बुला लेते हैं हम तभी आ जाते हैं। और देखिए
1: अच्छा।
0: क्या है ना कि सभी ऐसा होता है ना कि हर दिन एक अलग आवाज, एक अलग अंदाज आपको सुनने को मिलता है आकाशवाणी से। इसकी भी
1: हाँ।
0: तो मतलब एक अलग ही बात हो जाती है ना। अगर वही आवाज रोज मिलेगी, वही अंदाज रोज मिलेगा, तो थोड़े दिन में आप बोर हो जाओगे कि अरे क्या ये तो वही आ गई। तो इसलिए
1: नहीं मैम, कुछ आवाजें जो है ना वो दिल में बस जाती हैं, और बार बार बस मन करता है सुनने का, बात करने का। ऐसी ही आपकी आवाज है।
0: चलिए, अच्छी अच्छा लगा सुन के, और आपको मतलब बहुत बहुत धन्यवाद, और हमारे सभी श्रोताओं को इतना प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो सुनवाए आपकी पसंद का गीत।
1: शुक्रिया आपको भी, और हम तो बस चाहेंगे मैम आप हमेशा खुश रहें, और हमेशा बस रेडियो लखनऊ में आती रहे।
0: आप भी। चलिए तो सुनवाए आप कौन सा गीत सुनना चाहते हैं?
1: मैम गाना है तुमसे अच्छा कौन है फिल्म का, दूर वादियों से आ रही है, और ये गीत सुनाइएगा आप मुझे, और मैं सुनाना चाहती हूँ आपको, और हमारी बहुत सारी दोस्त हैं, आप हैं, रिंकी पिंकी जी हैं, गुंजन तिवारी जी हैं, समा परवीन जी हैं, अविनाश जी हैं, भगवान सिंह परमार जी हैं, और साथ साथ राम बाबू शर्मा जी हैं, फुलचंद पाल जी हैं, और जितने भी श्रोता लाइव सुन रहे हैं,
0: सबके लिए
1: कुछ हम सभी के लिए,
0: सबके लिए सुनवाते हैं ये गीत। धन्यवाद कॉल करने के लिए। नमस्कार
1: नमस्कार।

0: कार्यक्रम में मिलते हैं अमृतसर से। हेलो, थोड़ा सा रेडियो सेट से दूर चले जाइए जी। सर्वेश जी बोल रहे हैं अमृतसर से, अपना Hello. पूरा परिचय दे दीजिए। हेलो,
1: मैं सर्वेश बोल रहा हूँ जी, अमृतसर से
0: जी। स्वागत है सर्वेश जी आपका, कैसे हैं आप?
1: ठीक है जी, आप सुनाओ।
0: हम भी बढ़िया हैं। क्या करते हैं सर्वेश जी?
1: मैं ब्लॉक प्रिंटिंग करता हूँ जी।
0: अच्छा, वाह, अच्छा, अमृतसर में ब्लॉक प्रिंटिंग। तो ये जो फुलकारी का काम होता है उधर पर, फुलकारी का काम
1: हाँ जी,
0: है ना, तो वो क्या ये आपके ब्लॉक प्रिंटिंग पे ही होता है?
1: लेडीज सूट होते हैं, बेडशीट होती हैं।
0: हाँ, अच्छा, तो उसमें प्रिंटिंग वाला है आपका काम?
1: प्रिंटिंग वाला, हाँ जी।
0: चलिए बढ़िया है। तो बेडशीट्स में भी करते हैं, सूट्स के उसमें हाँ भी करते होंगे, कपड़ों में भी करते होंगे?
1: हाँ जी, लेडीज सूट है।
0: लेडीज सूट में, वाह बहुत बढ़िया। तो कितना टाइम लगता है एक सूट तैयार करने में?
1: एक सूट तैयार करने में 2 घंटे लगते।
0: अच्छा, और दिन में आप कितना कर लेते हैं, कितने सूट्स का तैयारी कर लेते
1: हैं? दिन में अकेले हूँ तो 3-4।
0: अच्छा, कितना मजा आता है करने में?
1: मजा तो बहुत आता, थकावट बहुत हो जाती है।
0: देखिए क्या होता है ना कि अगर आपके इंटरेस्ट का काम होता है तो थकान थोड़ी कम ही लगती है, ऐसा नहीं है, है ना? अब ये तो आपके ऊपर है
1: ना, चलते रहो,
0: ये बहुत अच्छी बात है। देखिए तो अब ईश्वर ने हमको अगर शरीर दिया है तो हमें उसको इस्तेमाल में लाना ज़रूरी है, और दूसरा अगर हमको कोई हुनर दिया है तो उसको तो ज़रूर ही, क्योंकि जो जैसे आप ब्लॉक प्रिंटिंग कर रहे थे, हर आदमी तो नहीं कर सकता ना ये, और फिर उसमें थोड़ा सा डिज़ाइंस का भी अंदाज़ आना चाहिए कि कितना बड़ा ब्लॉक कहाँ पर, कितने बड़े कपड़े में कितना बड़ा वाला यूज़ करना है, कहाँ पर इस्तेमाल करना है ना, ये सब चीज़ें हैं जो बारीकियाँ हैं। जब आप करते रहते हैं और सीखते हैं उससे, जब करने से क्या होता है आप सीखते भी हैं और नई नई चीजें, नए डिजाइन्स। तो आप लोग ब्लॉग बनाते भी होंगे, क्रिएट भी करते होंगे?
1: बनाते नहीं है, करते अच्छा हैं, ब्लॉग बाहर से आते हैं।
0: अच्छा, बाहर से आते हैं, अच्छा, चलिए बहुत अच्छा काम है, और हम लोगों के लिए तो बहुत अच्छा है क्योंकि हम लोगों को तो अच्छे अच्छे सुंदर प्रिंटिंग वाले सूट्स मिलते हैं, बेडशीट्स मिलती हैं, है ना? तो बहुत अच्छा, अपना काम आगे जारी रखिए और खूब मेहनत करिए। थकते हैं तो कोई बात नहीं, थकिए कोई दिक्कत नहीं है, आराम करिए और फिर शुरू हो जाइए, ठीक है ना? चलिए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। तो आप गाना कौन सा, आपने गाना जो चुना है

0: खलनायक, मुझे तो इसके बारे में बात करनी थी। क्यों भाई?
1: वैसे ही अच्छा लगता है।
0: अच्छा नायक नहीं, खलनायक हूँ मैं। अरे नहीं, अरे आर्टिस्ट लोग कैसे खलनायक हो सकते हैं। चलिए कोई बात नहीं, गाना अच्छा लगता है तो सबको सुनने का हक है ना। तो सुनवाते हैं फिर खलनायक फिल्म का ये गीत आपके लिए, ठीक है? धन्यवाद कॉल करने के लिए। नमस्कार।
1: थैंक यू।
0: नमस्कार।

0: हमारे कार्यक्रम में जुड़ गए हैं बहेड़ी से, चित्रकूट धाम के पास से दिनकर जी, जो कि अपना परिचय अपने मुंह से देंगे अपने अंदाज में। जी
1: जी हाँ, सुन रहे हैं इसी समय आप आकाशवाणी लखनऊ का फेवरेट शो, कुछ तुम कहो कुछ हम कहें। तो भाइयों बहनों, जल्दी से जल्दी फोन उठाइए और जुड़ जाइए। और सिर्फ आपको करना क्या है, आपको सिर्फ 2238825 पर कॉल लगाना है। और जी हाँ, मत भूलिए एसटीडी कोड लगाना 0522। और देखते हैं हमारे नेक्स्ट कॉलर कहाँ से हैं। नमस्कार बहन जी।
0: नमस्कार नमस्कार, आपका अंदाज बहुत ही बढ़िया है और हमको बहुत मजा आया।
1: जी मैंने कुछ नकल किया था पहले, बहुत कर लेता था, 10-20% नकल किया है। हमारे सबसे खास आपसे भी बताया था कि अमीन सयानी रहा करते थे। और ये जो है, चूंकि 30 साल वक्त बीत गया तो मेमोरी बिल्कुल हट चुकी है।
0: नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, आपकी मेमोरी बहुत बढ़िया है और आपने बहुत बढ़िया अंदाज लिया है। तो ये,
1: और मैं चित्रकूट धाम के बहेरी ग्राम से दिनकर सिंह बात कर रहा हूँ। दीदी जी को राम की तपोभूम से 100-100 बार राम राम भेज रहा हूँ।
0: राम राम राम राम हमारी तरफ
1: से। दीदी
0: से
1: एक और चीज सुनाना चाहता हूँ राष्ट्रभक्त के, उसमें
0: बताइए।
1: कुछ गुमनाम व्यक्ति, कुछ गुमनाम व्यक्ति अपना नाम इतिहास में दर्ज नहीं कराते, बट देशभक्त में, देशभक्ति के तर्ज में इतिहास बदलने में ही विश्वास करते हैं, इतिहास बदलने में विश्वास करते हैं।
0: वाह क्या बात कही आपने। और ऐसे
1: मेरे पास एक दो ऐसे लोग रहे हैं कि जिन्होंने राष्ट्र के लिए बहुत कुछ किया,
0: ऐसे बहुत लोग हैं,
1: बार उनके इतिहास में नहीं है, वो बोले हम देश के लिए काम किए। हाँ,
0: नाम के लिए नहीं करते हैं, सिर्फ काम के लिए करते हैं। ये
1: दी दी दी,
0: ये तो बहुत बड़ी चीज।
1: लोगों को अपने हम लोग दिल में बसाते हैं और उनकी रज को माथे पर लगाते हैं, माथे पर लगा, जितने भी देशभक्त ऐसे गुमनाम देशभक्त हैं।
0: और उनसे सीखना भी चाहिए, अगर हमारी नॉलेज में कोई ऐसा व्यक्ति है जो अच्छा काम कर रहा है, देश के लिए कुछ कर रहा है, तो हमें उसके जो आदर है वो ऐसे ही आदर सम्मान तो करना चाहिए। लेकिन उसके प्रति जो आदर सम्मान है ना, वो हमारे कर्मों के साथ दिखना चाहिए, वो जरूरी है।
1: बिल्कुल दीदी,
0: ठीक है ना,
1: सही कह रही दीदी।
0: अच्छा, मेरा ये मानना है, हमारा ये मानना है कि हम बहुत बड़े काम अगर नहीं भी कर सकते हैं अपने देश के लिए।

0: तो हम अपने लेवल पे छोटे काम तो कर सकते हैं, और छोटे काम क्या है ना, वो छोटे काम बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। जैसे सबसे बड़ी परेशानी क्या है, कूड़ा। हमारे देश में सबसे बड़ी तकलीफ की बात यह है कि व्यक्ति ये समझता नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं, और वो क्या करेगा, पान मसाला खरीदा, अपने मुंह में डाला और उसकी वो फेंकी, आपने कोई फल
1: जी,
0: खाया
1: बिल्कुल, रोड पे
0: उसके
1: फेंक दिया
0: छिलके
1: और
0: फेंक
1: थूकता भी
0: दिए,
1: रोड पे है सब
0: आपने
1: जी।
0: अपने घर में सफाई करी, कूड़ा बाहर फेंक दिया। कितनी
1: जी जी
0: गलत
1: जी जी
0: चीजें
1: जी
0: हैं, और अगर इन सब चीजों के लिए हम अपने को कंट्रोल करें और समझें कि हम यहाँ वहां ना थूकें, हम गंदगी ना फैलाएं, सबसे बड़ी राष्ट्रभक्ति, सबसे बड़ी देशभक्ति हमारे लोगों के लिए यही है। ये तो हम कर ही सकते हैं ना, इसमें ना हमारा पैसा खर्चा हो रहा है, ना हमारा कोई समय बर्बाद हो रहा है। मतलब जो लोग समझते हैं कि हम क्यों करें, अरे भाई आपका देश है, जैसे आपका घर है, अपने घर को आप साफ रखना चाहते हैं, अपने घर को जब साफ रहता है तो आपको अच्छा लगता है, तो ऐसे
1: जी
0: ही
1: जी जी जी
0: आपका
1: जी
0: अड़ोस पड़ोस है, आपके आपका मोहल्ला है, आपका शहर है, तो वहां क्यों गंदगी करते हो भाई, वो भी तो हमारा घर ही है, हमारा ही तो है। जब हम अपना समझते हैं तो उस गंदगी उसमें क्यों फैलाते हैं, ये बात अगर हर व्यक्ति समझ ले तो हमारे देश से गंदगी खत्म हो जाए, कूड़ा खत्म हो जाए, और उसका सही तरह से कैसे उसको आगे काम करना है इस बारे में सोचें सब लोग। जैसे छिलके वगैरह हैं उसको खाद बन जाए, इस तरह से छोटी छोटी चीजें हैं जो हम लोग सोच सकते हैं और समझ के कर सकते हैं। उससे क्या होगा, ना कूड़ा बिखरेगा ना बीमारी फैलेगी, बस ये सब छोटी छोटी चीजें हैं ना, इतना सोच
1: जी
0: ले
1: जी जी
0: आदमी तो
1: जी जी
0: क्या परेशानी है बताइए।
1: दीदी, और एक चीज, एक दिन आप बात कर रही थी कि एक ही नाव में सवार है, तो मुझे ऐसा लगा कि आपकी जो सेवानिवृत्त सितंबर में होगी, क्योंकि मैंने एक सबको ही पकड़ा था, और वो आप समझ गए होंगे किनसे बात होती रही
0: आप
1: होगी।
0: बहुत समझदार हैं।
1: तो आपको भी मैं ढेर सारी शुभकामनाएं दे
0: बहुत बहुत
1: रहा हूं कि
0: धन्यवाद।
1: जितना आपने सेवा दिया है और जो दिलों में आपने जगह बनाया वो हमेशा बनी
0: बस
1: रहेगी,
0: ये तो
1: और
0: हम
1: एक दिन आना है तो जाना भी पड़ता है।
0: वो तो है ही, आगे वालों के लिए भी तो जगह छोड़नी है ना, तो ये
1: जी, बिल्कुल,
0: चलिए
1: और समय के साथ
0: ठीक
1: चलना
0: ठीक
1: भी पड़ता है
0: तो
1: दीदी।
0: बस फिर ये समय के साथ ही अब सुनवाते हैं आपकी पसंद का गीत, तो आप
1: जी
0: सुनना
1: जी
0: चाहते
1: दीदी,
0: हैं
1: सभी के साथ
0: जी?
1: मैं इस गीत को हमारे प्रेमदास बाबा, देवी शंकर और फूलचंद पाल और विजय पांडे जी के साथ और मांगीलाल चंदेल बेटा सिंह के साथ
0: जीवन
1: सुनूंगा।
0: मृत्यु फिल्म का गीत आप सुनना चाहते हैं, ठीक है, तो सुनवाते
1: जी
0: हैं।
1: जी
0: धन्यवाद
1: नमस्कार
0: कॉल करने के
1: दीदी,
0: लिए, नमस्कार।

0: कार्यक्रम में मिलते हैं बनारस से हमारे कॉलर से। हेलो
1: जी, नमस्कार।
0: नमस्कार, अपना परिचय दे दीजिए।
1: मैं यूपी बनारस से मौसम अंसारी बात कर रहा हूँ।
0: स्वागत है आपका बनारस से। अंसारी जी, कैसे हैं आप?

0: कार्यक्रम में मिलते हैं बनारस से हमारे कॉलर से। हेलो
1: जी, नमस्कार।
0: नमस्कार, अपना परिचय दे दीजिए।
1: मैं यूपी बनारस से मौसम अंसारी बात कर रहा हूँ।
0: स्वागत है आपका बनारस से अंसारी जी, कैसे हैं आप?
1: अच्छे हैं। 4 महीने पहले मेरा कॉल लगा था आकाशवाणी बरेली में, और 4 महीने के बाद ये मेरी दूसरी कॉल है।
0: ये बरेली नहीं है तो आकाशवाणी लखनऊ है।
1: जी हाँ, लखनऊ है, भूल गया।
0: कोई बात नहीं, कोई
1: पहली बार लग रहा है मैम, आपसे ही बात हुआ था।
0: अच्छा,
1: 4 महीने पहले।
0: अच्छा,
1: उसके बाद से कॉल ही नहीं लग पा रहा था, कोशिश करता हूँ बहुत।
0: हाँ,
1: मगर आज
0: चलिए आज लग गया तो आज आप क्या कहना चाहेंगे कार्यक्रम में?
1: एक गाना सुनना चाहता हूँ।
0: वो तो है,
1: गीत के बोल है।
0: वो तो है, एक मिनट, वो तो है, गाना तो आप सुनेंगे ही, लेकिन कार्यक्रम का नाम क्या है? कुछ तुम कहो कुछ हम कहें।
1: कार्यक्रम का नाम तो मैम आकाशवाणी लखनऊ है। मैं प्रोग्राम सुनता हूँ, रेगुलर नहीं सुनता हूँ, कभी कदा सुनता हूँ, तो प्रोग्राम का नाम तो थोड़ा मैं मुझे याद नहीं है।
0: कुछ तुम कहो
1: मगर
0: कुछ
1: अभी
0: हम कहें,
1: 3-4 श्रोताओं को मैंने कॉल सुना, और 10:30 बजे से प्रोग्राम आ रहा था।
0: नहीं, ये कार्यक्रम 11 बजे से आता है आपके रेडियो सेट पे।
1: हाँ, ये कार्यक्रम 11,
0: ठीक है,
1: और 10 बजे से कार्यक्रम आती है गाने वाली।
0: हाँ, वो गाने वाने चित्रपट से होते रहते हैं, वो तो चित्रपट से कार्यक्रम में गाने बजते हैं, लेकिन ये जो कार्यक्रम है ना, कुछ तुम कहो कुछ हम कहें, इस कार्यक्रम का नाम इसीलिए है कि कुछ आप भी कहें और कुछ हम भी कहें, तो कुछ भी आप कह सकते हैं इस कार्यक्रम में, अपने दिल की कोई भी बात, कोई भी जहन में आपके कुछ आ रहा हो तो वो आप बता सकते हैं। आप क्या करते हैं वैसे?
1: मैम, मैं बनारसी साड़ियों का काम करता हूँ, साड़ी बनाता हूँ।
0: क्या बात है, क्या बात है, हम लोगों तो बनारसी साड़ियाँ जो हैं वो बहुत पसंद आती हैं। एक तो अपने यूपी का है कारीगरी, है ना, और बनारसी साड़ियों का तो जैसे आपको पता ही होगा क्योंकि आप काम करते हैं, तो आपके पास तो बाहर से भी बहुत ऑर्डर्स आते होंगे, लोग बहुत अप्रिशिएट करते हैं, बहुत पसंद करते हैं बनारस का काम।
1: क्योंकि मैम हम लोग का पूरा पीढ़ी बचपन से यही काम करता है, और मैं भी जब से बड़ा हुआ हूँ तब से यही काम करता
0: तो
1: है।
0: कितने साल हो गए हैं आपको?
1: और अभी मुझे काम करते करते करीब 2010 से मैं ये साड़ियों का काम करता हूँ,
0: बहुत बढ़िया,
1: जब से होश संवारा हूँ, और अभी भी वही काम करता हूँ बनारसी साड़ियों का।
0: बहुत अच्छा,
1: तो
0: आप
1: अभी भी साड़ी बना रहा था मैम, आपका
0: अच्छा।
1: प्रोग्राम
0: हाँ
1: सुन रहा था।
0: हाँ हाँ तो अच्छा
1: तो
0: है,
1: आपका
0: बहुत
1: आपका प्रोग्राम बहुत ही अच्छा है, पर बीच बीच में कॉल लगाते रहते हैं पर मेहनत सफल नहीं हो पाता,
0: कोई
1: तो
0: बात
1: आज
0: नहीं, आज तो हो गई,
1: सफल हो गई।
0: आज हो गई, उसके लिए आपको बहुत बहुत मुबारक हो, और आज आप काम में भी बहुत मन लगाएंगे और बहुत खूबसूरत साड़ी बनाएंगे, है ना?
1: जी, बहुत खूबसूरत साड़ी मैम बनाते भी हैं, और एक तरीके की साड़ी नहीं बनाते, एक साड़ी बनाएंगे उसकी दूसरी डिजाइन रहेगी, फिर दूसरी लगाएंगे तो उसकी दूसरी डिजाइन रहती है।
0: आज कितना अच्छा दिन है ना, कि हमको पहले ब्लॉक प्रिंटिंग जो करते हैं अमृतसर में उनसे बात हुई, आज इस समय आपसे बात हो रही है, तो आज कलाकारों का दिन है मेरे ख्याल में।
1: जी, आप पूनम जी भी जुड़ी थी आपके
0: हाँ
1: प्रोग्राम में।
0: हाँ वो भी कलाकार ही हैं, और क्या, इतने बढ़िया बढ़िया शायरी सुनाती हैं, है ना,
1: वो
0: तो
1: तो कलाकार ही हैं, उनको तो मैं बहुत सालों से जानता हूँ, वो
0: अच्छा
1: हर
0: अच्छा
1: जगह अपना कलाकारी दिखाती हैं और शायरी मारती हैं।
0: चलिए बहुत अच्छा है, तो ऐसे ही आप सब श्रोता हमसे जुड़े रहें और अपने जो हुनर है वो हमारे साथ शेयर करते रहें, है ना?
1: मैं एक बात पूछना चाहता हूँ कि
0: बताइए।
1: लखनऊ में बारिश हुई कि नहीं?
0: बहुत कम हुई है, और बस बादल आते हैं, थोड़ा सा उम्मीद जगाते हैं और चले जाते हैं,
1: क्योंकि
0: कल शाम को थोड़ी
1: आज
0: सी
1: मेरे यहाँ
0: बारिश हुई।
1: सुबह काफी तेज धूप था, और कुछ देरों में मौसम चेंज हो गया और बारिश बहुत ही अच्छा खासा हो गया।
0: बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ऐसा ही हो सब जगह हो, बस हम तो यही दुआ करते हैं। तो
1: बिल्कुल,
0: मौसम
1: और
0: अच्छा
1: बहुत ही
0: होगा
1: अच्छा
0: तो
1: मौसम है, तो एक मौसम के बारे में एक गीत सुनना चाहता हूँ।
0: बहुत अच्छा गीत आपने सुनवाने के बोला है।
1: और मैम आपकी इजाजत हो तो 2 कड़ी गुनगुना दूं।
0: हाँ हाँ बिल्कुल।
1: ये मौसम आया है, 30 सालों में आ जा खो।

0: जाए ख्वाबों ख्यालों में।
1: बहुत
0: ये गीत
1: बढ़िया,
0: है मैम।
1: चलिए सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये गीत। धन्यवाद कॉल करने के लिए, नमस्कार।
0: नमस्कार।

कार्यक्रम चल रहा है कुछ तुम कहो कुछ हम कहें आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से, और हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे श्रोता। हेलो हेलो, हमारे साथ जो श्रोता जुड़े हैं उनसे हम बात करते हैं। हेलो बोलिए। हेलो जी बोलिए। हेलो कहाँ चले गए आप, अभी तो थे लाइन पे। हेलो, बहुत कुछ बात करना चाह रहे थे और पता नहीं क्यों अब इनसे बात हमारी नहीं हो पा रही है, और इनकी पसंद का गीत हम सुनवाते हैं। हेलो आप बोलिए, आपकी आवाज़ नहीं आ रही है हमको, पता नहीं, हम ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं कर सकते हैं तो इसलिए हम ये फ़ोन काटते हैं और सुनवाते हैं इनकी पसंद का गीत गोपी फिल्म से। धन्यवाद।

0: कार्यक्रम कुछ तुम कहो कुछ हम कहें में मिलते हैं अब हरदोई जिले से हमारे श्रोता से। हेलो, आप थोड़ा सा रेडियो सेट से दूर हो जाइए ताकि हमारी आवाज इको ना करे।
1: जी,
0: कौन बोल रहे हैं?
1: जी, मैं जयपाल बोल रहा हूँ।
0: जयपाल जी, स्वागत है आपका, कैसे हैं आप?
1: ठीक है जी, बहन जी।
0: जी, क्या कहना चाहेंगे कार्यक्रम में?
1: कार्यक्रम में ये कहना चाहते हैं कि सरस्वती चंद्र का गाना सुनवा दीजिए, जय चंदन सबदन चंचल चितवन।
0: वो तो हम सुनवा ही देंगे, लेकिन कार्यक्रम का नाम है कुछ तुम कहो कुछ हम कहें, तो कुछ तो और भी कहना पड़ेगा आपको। कोई तो बात कहिए।
1: और क्या, ग्राम गणनी सुरैया जिला हरदोई से बोल रहा हूँ।
0: हाँ, वो तो ठीक है। तो जयपाल जी, आपकी दिनचर्या क्या रहती है ये बताइए। चलिए,
1: हाँ जी,
0: आपकी दिनचर्या क्या रहती है, आप सुबह से क्या करते हैं?
1: दिनचर्या क्या, मैं नेत्रहीन हूँ और बैठा रहता हूँ, गाना ना सुनता रहता हूँ।
0: तो घर में
1: 40 साल से।
0: हाँ, तो घर में
1: क्या, मैं शौकीन हूँ, सुनता रहता हूँ।
0: ये तो बहुत अच्छी बात है। तो सिर्फ गाने सुनते हैं कि और भी कार्यक्रम सुनते हैं हमारे?
1: मैं पूरा कार्यक्रम सुनता रहता हूँ।
0: अच्छा,
1: सुबह से शाम तक सुनता रहता हूँ।
0: अच्छा, तो आपको क्या अच्छा लगता है हमारे कार्यक्रमों में और क्या आप चाहते हैं क्या हो आगे? और
1: सारे प्रोग्राम मुझे अच्छे लगते हैं।
0: तो मतलब कोई विशेष कार्यक्रम जिसके बारे में कुछ बताना चाहें?
1: वैसे कार्यक्रम तो सभी अच्छे हैं।
0: चलिए, अच्छी बात है। हमारे अच्छे श्रोता, हाँ, जो जिनको हमारे सारे कार्यक्रम अच्छे लगते हैं। चलिए ठीक है, अच्छा लगा।
1: एक साल के बाद फोन मिला है मेरा।
0: अरे बाबा रे, अच्छा अच्छा चलिए, बधाई आपको बहुत बहुत। तो सुनवाते हैं आपकी, आप कौन सा गाना अपनी अपने आप से बता दीजिए फिर से। सरस्वती चंद्र का गीत सुनना चाहते हैं?
1: ये सरस्वती चंद्र का गाना है, चंदन सबदन चंचल चितवन।
0: तो सुनवाएं आपको आपकी पसंद का गीत।
1: जी,
0: धन्यवाद कॉल करने के लिए। नमस्कार।
1: नमस्कार।

0: कार्यक्रम में मिलते हैं केसरी सिंह राजपूत जी से। हेलो।
1: हाँ दीदी को राधे राधे।
0: राधे राधे जी, आप कहाँ से बोल रहे हैं जरा हमारे सुनने वालों को सबको बता दीजिए।
1: बैरसिया जिला भोपाल मध्य प्रदेश से बात कर रहा हूँ दीदी।
0: बैरसिया जिला भोपाल मध्य प्रदेश से। कैसे हैं आप केसरी सिंह जी?
1: बहुत बढ़िया दीदी, और आप कैसे हो?
0: हम भी बढ़िया हैं। क्या कहना चाहेंगे कार्यक्रम में आज?
1: आपकी आवाज दीदी थोड़ी स्लो आ रही है।
0: आप कार्यक्रम में क्या कहना चाहेंगे?
1: कार्यक्रम में दीदी बस यही कहना चाहेंगे कि ये निरंतर लगातार युगों युगों तक चलता रहे और श्रोता कॉल लगाते रहे और आप लोगों से बात होती रहे।
0: वाह बस
1: और परोपकार की भावना सदैव दिल में जिंदा रखें दीदी।
0: हाँ।
1: बाकी चाहे और कुछ थोड़ा थोड़ी किसी चीज में कंजूसी कर लें, पर दूसरे के काम जरूर आए किसी न किसी बहाने से।
0: बहुत अच्छी बात कही आपने।
1: मन या धन जो जैसे भी बने।
0: बहुत अच्छी बात कही। देखिए क्या है कि तन भी हमारा खत्म हो जाएगा, ठीक है, और हमारा धन भी यही रह जाएगा, ठीक है। क्या क्या रहता है हमारे जाने के बाद? वो रहता है हमारा व्यवहार, हमारे काम, है ना? तो
1: बिल्कुल, बिल्कुल,
0: अगर हम
1: बिल्कुल।
0: अच्छे काम करेंगे, अगर हम लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करेंगे, तो वही तो रह जाएगा, बाकी हम रहें या ना रहें, है ना?
1: हाँ जी, हाँ जी,
0: तो
1: हाँ जी।
0: ये है कि बहुत अच्छी बात आपने बताई, परोपकार करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए, चाहे हम अपने जानने वालों को मदद करें या कोई अनजान को मदद कर दें या पशु पक्षी की मदद कर दें। जैसे आजकल कभी पानी बरस रहा है, कहीं पर बिल्कुल सूखा है, तो पक्षियों को पानी दे दें, दाना दे दें, ताकि वो, भाई हम तो ले लेते हैं अपने हाथों से, पक्षी वगैरह कहाँ, उनके लिए तो उनको तो ढूंढना पड़ता है ना। तो ये सब
1: जी
0: भी
1: जी
0: परोपकार
1: बिल्कुल। उनको दीदी बरसात में उनके घोंसलों की बहुत आवश्यकता होती है। हम अपने जैसे मकान घर रहते हैं, उनकी बालकनी पे या छज्जे पर ये पुष्टे के अपन घर टाइप के बनाकर लगा दें, तो उससे वो घोंसले बना लेते हैं दीदी, उनकी बरसात निकल जाती
0: उनको
1: है।
0: अच्छा,
1: और
0: हाँ,
1: जब
0: सही
1: बरसात
0: बात है,
1: में
0: okay.
1: जब अपनी ये गाय मवेशी आती है तो अपनी जगह खाली पड़ी रहती है घर के सामने, तो उनको उठाए ना रात में जैसे पानी बरस रहा है और वो किसी
0: और क्या।
1: आश्रय के हिसाब से आई है गौ माता, तो उसको भगाना नहीं चाहिए।
0: नहीं,
1: वो
0: बिल्कुल
1: अपन क्या कभी कभी लोग बाग ये सोचते हैं कि इसको गोबर को फेंकना पड़ेगा, अरे फेंक दो भैया, क्या क्या दिक्कत है।
0: सही बात है। चलिए, तो बहुत अच्छी बात करी आपने। अब आपके पसंद का गीत सुनवाते हैं, तो बता
1: जी
0: दीजिए
1: दीदी फर्ज
0: फर्ज
1: की
0: की
1: जंग का
0: जंग।
1: सुनवाइए, सबसे मतलब 50% आपके लिए डेडिकेट रहेगा। और
0: धन्यवाद।
1: और राम बाबू शर्मा जी हैं, मांगीलाल चंदेल जी, गजराज लोधी जी, सारून अंसारी जी, सुनील झा जी, प्रेम सिंह जी और जितने भी लाइव सुन रहे हैं सबके लिए रहेगा।
0: वो सब बाकी 50% में, ठीक है?
1: जी जी वो बाकी सब 50 में आ जाएंगे, 50 आप अकेले के लिए रहे।
0: धन्यवाद कॉल करने के लिए। नमस्कार, धन्यवाद।

कार्यक्रम में मिलते हैं हमारे। आ ये तो बड़ा गड़बड़ हो गया। ये हरदोई से हमारे श्रोता थे जिनका कि फ़ोन कट गया, तो उनकी पसंद की कव्वाली हम आपको सुनवाते हैं। ये नूरे इलाही फ़िल्म की कव्वाली है, आइए सुनते हैं।

0: कार्यक्रम में मिलते हैं हम अपने अगले कॉलर से। हेलो
1: हेलो, नमस्ते दीदी।
0: नमस्ते, ग्राम लहरपुर सीतापुर से
1: जी। मैं सुनील कुमार बोल रहा हूँ दीदी।
0: सुनील कुमार जी, कैसे हैं आप?
1: दीदी अच्छे हैं, और आप बताइए दीदी कैसे हैं?
0: हम भी बढ़िया हैं। क्या कहना चाहेंगे आज के इस कार्यक्रम के लिए?
1: दीदी कहना क्या है, खेतों में धान की रोपाई चल रही, वहीं पे है मैम।
0: अच्छा, तो ये बारिश आपके तरफ हुई क्या कल रात शाम को?
1: हुई थी दीदी, हल्का फुल्का हुई थी, और अभी तो मौसम साफ है एकदम, धूप निकली हुई है।
0: धूप निकली हुई है, बस ऐसे ही हो रहा है, छुटपुट बारिश हो रही है, कोई खास यहाँ पर नहीं हो रही है, सब महाराष्ट्र में ही बरस जा रहा है उधर ही, तो इधर पर अभी मानसून आया नहीं है। और
1: उत्तर प्रदेश में तो अभी बरसात नहीं शुरू नहीं हुई है जैसी होनी चाहिए।
0: बिल्कुल बिल्कुल, तो अभी थोड़ा सा जैसे उम्मीद भी कम है,
1: ज्यादा बरसात हो रही है, तो यहाँ पे जो जिनके समर है वहीं पे धान की रोपाई हो रही है, जिनके पास पानी का साधन है वहीं अपना काम कर रहे हैं।
0: सही बात है, ये तो है, परेशानी तो है, अब क्या किया जाए, ये तो प्रकृति है और प्रकृति से तो हम लोग आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, है ना?
1: जी दीदी, ये तो होता है रहता
0: तो
1: है, क्योंकि प्रकृति जो होता है तो वो तो अपने ही अनुसार पानी बरसेगा जब कभी मौसम आएगा।
0: और थोड़ा सा हम लोगों की भी कमी है, जो कि आज दुनिया भर में इतना बुरा हाल हो रखा है, तो कमी तो हमारी
1: तो
0: तरफ
1: बहुत
0: भी
1: है,
0: है
1: क्योंकि
0: कि हम
1: जो
0: लोगों ने भी
1: पेड़ों की
0: ध्यान नहीं
1: कटाई
0: दिया।
1: चल रही है, इसी इसी वजह से तो हमारे यहाँ बरसात नहीं हो रही है।
0: हम लोगों ने बहुत गलत कर रखा है, लेकिन क्या किया जाए, भी इस चीज़ के लिए भी सोचना चाहिए सभी को कि हम पर्यावरण को कैसे बचा के रख सकते हैं। चलिए,
1: और ये हमारा तो यही कहना है कि अभी बरसात में सब लोग जितने हमारे श्रोता भाई हैं, एक एक पेड़ जरूर लगाएं, क्योंकि
0: जरूर
1: बरसात
0: लगाएं,
1: में
0: जो
1: ये
0: हमारे
1: बरसात के
0: हाथ
1: लिए
0: में
1: पेड़
0: है वो
1: लगाना
0: हम
1: बहुत
0: कर सकते
1: जरूरी
0: हैं,
1: है।
0: जो हमारे हाथ में वो तो हम कर सकते हैं ना, तो हम जरूर लगाएं, और पेड़ लगाएंगे तो हमारी आगे की पीढ़ी को उसको भी तो कुछ मिलेगा ना। हम ये क्यों सोचें कि अभी हम पेड़ लगा रहे हैं, हम तो चलो बुढ़े हो जाएंगे, हमको क्या मिलेगा, लेकिन आप अगर एक फल का पेड़ अभी लगाते हैं तो 4 साल 5 साल बाद हमारी जो आने वाली पीढ़ी है वो तो उससे लाभान्वित होंगे ना, तो ये सोचना चाहिए और इसके हिसाब से हम लोगों को आगे

0: कदम उठाने चाहिए। ठीक है,
1: जी जी जी
0: तो सुनवाते हैं आपकी पसंद का गीत। आप सुनना चाहते हैं अजूबा फिल्म का गीत है?
1: जी दीदी जी। और इस गाने में आप रहेंगी और हमारे अविनाश तेली जी रहेंगे और जितेंद्र पाल जी हैं और मोनू भाई मेरा छोटा है।
0: ठीक, तो सबके लिए
1: और जितने श्रोता लाइव सुन रहे हैं आकाशवाणी लखनऊ, सभी को सुनाऊंगा दीदी।
0: बहुत बहुत धन्यवाद। सुनिए अपनी।

0: कार्यक्रम में मिलते हैं हमारे अगले श्रोता से। हेलो,
1: हाँ जी नमस्ते।
0: नमस्ते, कौन बोल रहे हैं, अपना परिचय दे दीजिए।
1: मैं मेरा राम प्रसाद, ग्राम अरनी, जिला हरदोई से।
0: जी, क्या कहना चाहेंगे कार्यक्रम में?
1: कहते हैं रेडियो एक गाने का माध्यम ही नहीं है।
0: हम्म,
1: और इसमें वो आवाज है जो वेदों में होती है।
0: जो
1: इसमें वो आवाज है जो वेदों में होती है।
0: हम्म,
1: और इसे अगर सुनकर आदमी भक्ति को प्राप्त कर सकता है।
0: क्या कर सकता है?
1: भक्ति इसके अंदर आ सकती है।
0: अच्छा, चलिए आपकी बात को समझेंगे हम भी और सुनवाएं आपकी पसंद का गीत।
1: जी,
0: आप सुनना चाहते हैं लोफर फिल्म का गीत? ठीक है, तो सुनवाते हैं आपकी पसंद का गीत। धन्यवाद कॉल करने के लिए। नमस्कार।

0: कार्यक्रम में मिलते हैं हमारे आखिरी कॉलर से। हेलो
1: जी मैम, नमस्ते, मैं दीक्षा पाली बोल रही हूँ।
0: जी दीक्षा जी, कैसी हैं आप? नमस्ते
1: जी, मैं बहुत ठीक हूँ। और मैं ये, मुझे हम लोग लगा रहे थे फोन, सुना तो बड़ा दुख हो रहा है कि आप रिटायर हो जाएंगी।
0: अरे अब उस बात को छोड़िए और बताइए, गाना आप कौन सा सुनेंगी?
1: मैं गाना सुनूंगी मंडोली नागिन फिल्म का।
0: जी तो सुनवाएं आपकी पसंद का गीत, क्योंकि समय बहुत कम
1: जी
0: है।
1: हाँ, मेरे पति हैं श्री भीमलाल पाली और बड़े बेटे उल्लास पाली, छोटे बेटे उत्कर्ष पाली और मेरे चाचा हैं कुंज बिहारी चाचा और भैया धर्मेंद्र भैया सिंगापुर से।
0: धन्यवाद
1: आप और आपको मैं समय बहुत

श्रोताओं, हमें ये कहना है कि कुछ लोगों का फ़ोन लगा और उनसे हमें हमारी बात नहीं हो पाई, उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। और अब आज का ये कार्यक्रम कुछ तुम कहो कुछ हम कहें यहीं पर समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। अब प्रस्तुत है NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम।

0: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार
0: और अजीत का भी नमस्कार। आइए सुनते हैं सबसे पहले सुविचार जो हमें भेजा है यवतमाल विदर्भ महाराष्ट्र से संतोष खडसे और विनोद खडसे जी ने। लिखते हैं,
2: वक्त का काम तो है गुजरना, बुरा है तो सब्र करो, अच्छा है तो शुक्र करो।
0: बहुत सुंदर विचार आपका, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आइए अब सुनते हैं पिछले दिनों संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम और उनके संदेश।
2: रानीगांव नगरी छत्तीसगढ़ से क्लेश कुमार साहू, चित्ररेखा साहू, शुभम और सेजल साहू।
0: और पलारी छत्तीसगढ़ से नितेश कुमार देवांगन, दुर्गा प्रसाद देवांगन और पराग टेलर।
2: बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता, डिम्पल देवांगन और दुर्गा चौक रायगढ़ से गेंदलाल, श्रीवास, संतोष, श्रीवास, शिवकुमारी और रामदुलारी।
0: खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा और अंकुश अरोड़ा लिखते हैं, सर अजीत जी, मैडम विमलेश जी, सप्रेम नमस्ते जी।
2: देश एवं विदेश में सुने जाने वाला एकमात्र कार्यक्रम उमंग ही है, जिसे सुनकर मनोरंजन होता है और बहुमूल्य जानकारी का खजाना छिपा होता है। हर आयु के लोगों के लिए इस कार्यक्रम में कुछ न कुछ जरूर होता है।
0: हम ये भी आशा करते हैं कि उमंग कार्यक्रम इसी तरह से आगे भी प्रसारित होगा। उमंग कार्यक्रम में कहानी चिड़िया की बच्ची सुनवाई गई, बेहद पसंद आई, आपका आभार। और अगला संदेश हमें मिला है जिला तहसील ठियोग शिमला हिमाचल प्रदेश से सूरज चौहान जी का।
2: संदेशों के लिए धन्यवाद। और अब जानते हैं पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर।
0: तो हमारा पहला प्रश्न था कि भारत को और किन किन नामों से जाना जाता है और इसका संवैधानिक नाम क्या है।
2: इसका उत्तर है साथियों, भारत को इंडिया, हिंदुस्तान, आर्यवर्त, जम्बूद्वीप, भारतवर्ष इत्यादि नामों से जाना जाता है। लेकिन इसे संवैधानिक रूप से भारत और इंडिया के नाम से जाना जाता है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 1 में लिखा है, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ होगा।
0: हमारा दूसरा प्रश्न था, कोयले को जीवाश्म ईंधन या फॉसिल फ्यूल क्यों कहते हैं।
2: इसका उत्तर भी जान लेते हैं साथियों, कोयला पेड़ों और वनस्पतियों से बना है। पेड़ों और वनस्पतियों में

0: जीवन होता है, इसलिए इसे जीवाश्म ईंधन कहते हैं।
1: और अब सुनिए हमारा तीसरा प्रश्न। हमने आपसे पूछा था सोने को स्टार डस्ट क्यों कहते हैं।
0: इसका उत्तर है साथियों, सुपरनोवा या बड़े बड़े तारों के टकराने या फटने से जो धूल उत्पन्न हुई उससे सोना बना, इसलिए इसे स्टार डस्ट कहते हैं।
1: और अब सुनिए हमारा अगला प्रश्न जो हमने आपसे पूछा था। हमारा प्रश्न था डायमंड सीड किसे कहते हैं।
0: डायमंड सीड छोटे से प्राकृतिक हीरे को कहते हैं जिसकी नकल करके कृत्रिम हीरे बनाए जाते हैं।
1: और हमारा अंतिम प्रश्न था सिलिका और सिलिकॉन में क्या अंतर है।
0: सिलिका से एक विशेष वैज्ञानिक प्रक्रिया द्वारा ऑक्सीजन निकालने पर जो तत्व प्राप्त होता है उसे सिलिकॉन कहते हैं।
1: तो श्रोताओं, ये थे हमारे पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर। और अब सुनिए आज का प्रश्न। हमारा आज का प्रश्न है, कंगारू के कितने पैर होते हैं।
0: 8800440559। और हमारे ईमेल यानी audio@cit.nic.in पर आप अपने संदेश और प्रश्नों के उत्तर भेज सकते हैं।
1: आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बड़ी अच्छी तरह से प्रश्नोत्तरी में प्रतिभाग किया। आइए अब सुनते हैं उमंग कार्यक्रम का मासिक संस्करण श्रोता संवाद। विषय है मनोदर्पण। स्वागत है आप सभी श्रोता मित्रों का उमंग रेडियो कार्यक्रम के मासिक संस्करण श्रोता संवाद में। मैं हूं आपका मित्र अजीत। नमस्कार श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं कि श्रोता संवाद में हम हर महीने चर्चा करते हैं शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार और NCERT की संयुक्त पहलों के बारे में। तो इस क्रम में आज हमारे स्टूडियो में विशेषज्ञ के रूप में उपस्थित हैं प्रोफेसर विनोद कुमार शनवाल। आपको बता दें कि प्रोफेसर विनोद कुमार शनवाल NCERT के शैक्षिक मनोविज्ञान और शिक्षा आधार विभाग में मनोदर्पण प्रकोष्ठ के प्रभारी हैं। तो डॉक्टर साहब, अपने श्रोताओं की ओर से मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं।
2: जी धन्यवाद, सभी को नमस्कार।
1: श्रोताओं, आज का हमारा विषय बहुत महत्वपूर्ण होने जा रहा है क्योंकि आज हम चर्चा करेंगे विशेषकर विद्यार्थियों के मानसिक स्वास्थ्य पर, और साथ ही साथ हमारी चर्चा के केंद्र में रहेंगे शिक्षक और अभिभावक भी। तो डॉक्टर शनवाल, सबसे पहले मेरा अनुरोध है हमारे श्रोताओं को मनोदर्पण के बारे में कुछ जानकारी दीजिए।
2: जी धन्यवाद। देखिए, मनोदर्पण एक भारत सरकार की आत्मनिर्भर पहल के अंतर्गत शिक्षा मंत्रालय की एक पहल है
1: जी।
2: और इस पहल का उद्देश्य विद्यार्थियों, शिक्षकों एवं अभिभावकों के मानसिक स्वास्थ्य एवं मनोसामाजिक सहायता उपलब्ध कराने से संबंधित है
1: जी।
2: जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार की पहलें हम लोग करते हैं, जिसमें सबसे प्रमुख जो हमारी पहल है कि हम सुबह 8 बजे से लेकर के शाम के 8 बजे तक 12 घंटे का टेली काउंसलिंग हेल्पलाइन हम अभिभावकों को, विद्यार्थियों को और शिक्षकों को उपलब्ध कराते हैं
1: जी।
2: हमारी जो टेली हेल्पलाइन है इसका नंबर है 8448440632। इस 12 घंटे के अंतराल में विद्यार्थी, अभिभावक और शिक्षक कभी भी किसी भी समस्या को लेकर के हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे जो काउंसलर हैं वो 12 घंटा के लिए उपलब्ध रहते हैं। इसके अलावा हमारा जो दूसरा जो कार्यक्रम है वो होता है वेबिनार। वेबिनार में जैसे आपको मैंने बताया कि हमारी काउंसलिंग सर्विसेज है, काउंसलिंग सर्विसेज से जो हमें ट्रेंड्स मिलते हैं, जैसे हमारे शिक्षक साथी या अभिभावक या विद्यार्थियों की जो समस्याएं होती हैं, उन समस्याओं को लेकर के हम आगे के लिए एक सहयोग सत्र करते हैं। सहयोग सत्र हमारा प्रतिदिन आधे घंटे का होता है, जिसमें हम बाहर से कुछ काउंसलर्स को बुलाते हैं और हमारे विभाग के एक्सपर्ट भी उसमें होते हैं। उस समय उनके जो प्रश्न उत्तर होते हैं उनका भी हम जवाब देने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा जो हमें ईमेल से भी उनके पत्र प्राप्त होते हैं उनका भी हम जवाब देते हैं। इसके अलावा आपको दो चीजें और बता दूं कि हमारा इसके अंतर्गत एक चीज और भी आती है, परिचर्चा। परिचर्चा हम 1.5 घंटे का एक सत्र करते हैं जो प्रत्येक शुक्रवार को करते हैं 2:30 से 4 बजे तक। इस 1.5 घंटे के परिचर्चा के अंतर्गत हम विभिन्न प्रकार के एक्सपर्ट्स को बुलाते हैं, अलग अलग टॉपिक्स को लेकर के हम डिस्कशन करते हैं, जिससे कि हमारे विद्यार्थियों को किसी प्रकार की समस्या ना हो और जो भी उनके जो कंसर्न्स रहते हैं या जो चैलेंजेस रहते हैं उसका निदान उन्हें समय समय पर मिलता रहे
1: जी।
2: इसके अलावा जो कार्यक्रम रहता है हमारा, जैसे हमने आपको बताया टेली हेल्पलाइन हमारा एक कार्यक्रम है, दूसरा हमारा सहयोग रहता है, तीसरा हमारा परिचर्चा रहता है, और इसके अलावा समय समय पर विद्यार्थियों के लिए, अभिभावकों के लिए या हमारे जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उन सब के लिए तनाव प्रबंधन हेतु विभिन्न प्रकार की जो सहायक सामग्री है वो भी हम समय समय पर उपलब्ध कराते हैं
1: जी। डॉक्टर साहब,

0: ने बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी दी मनोदर्पण के बारे में। मेरा अगला प्रश्न है आपसे, अपने श्रोताओं की ओर से, कि आज के समय में विद्यार्थियों में तनाव और चिंता बढ़ने के प्रमुख कारण क्या क्या हैं, और हम ये भी जानना चाहेंगे कि इनसे निपटने के सरल उपाय आप क्या क्या सुझाना चाहेंगे।
1: जी, आपका बहुत अच्छा प्रश्न है अजीत जी। प्रमुख जो कारण है आज के समय में विद्यार्थियों में, एक तो प्रतिस्पर्धा बहुत अधिक है
0: जी,
1: जो अत्यधिक प्रतिस्पर्धा है। दूसरा, विद्यार्थी परीक्षा को लेकर के और अपने भविष्य को, करियर संबंधी जो दबाव है उसको भी महसूस करते हैं। एक सोशल मीडिया का काफी प्रभाव इनके ऊपर देखा जाता है, खास करके जो डिजिटल उपकरण है इनका अत्यधिक उपयोग करना, और साथ साथ जिस प्रकार से तेजी से जो हमारा जो शैक्षणिक और सामाजिक जो परिवेश है ये परिवर्तित हो रहा है
0: जी,
1: उसको लेकर के इसमें कुछ प्रकार के मुख्य कारण है। जैसे मैंने आपको बताया कि अत्यधिक प्रतिस्पर्धा, इसके अंदर क्या रहता है कि जो दूसरे विद्यार्थियों से कई बार अभिभावक भी तुलना करते हैं, या जैसे हमने कहा कैरियर से संबंधित कुछ भविष्य में प्रवेश परीक्षाएं हैं या भविष्य को लेकर के चिंता करना, या सोशल मीडिया का जो प्रभाव है उसमें इवन दो आपको बड़ी हैरानी हो गई ये सुनकर के, कुछ विद्यार्थियों में तनाव का कारण ये होता है कि मेरी जो लाइक्स हैं वो कम हो गए हैं, तो उनके जो लाइक्स हैं इस प्रकार की भी चिंता वो बच्चे करते हैं। जो डिजिटल उपकरण है इसके अंदर स्क्रीन टाइम बढ़ता चला जा रहा है, जब ज्यादा डिजिटल उपकरण का इस्तेमाल करते हैं तो उसका इस्तेमाल करने के बाद बच्चों में एकाग्रता की कमी आती है, उनका दिनचर्या प्रभावित होती है, और इसको लेकर के उनका अगले दिन का भी जो कार्यक्रम है, जो कार्यकलाप है, वो भी प्रभावित होते हैं। तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो चीजें रहती हैं, विभिन्न प्रकार की नई तकनीकी आ गई हैं, नई विकल्प आ गए हैं, उनको लेकर के भी कुछ चीजों को समझते हुए विद्यार्थी थोड़ा अधिक समय इस पर लगाते हैं
0: जी।
1: अब इसके बड़े सरल उपाय हो सकते हैं, जैसे सबसे पहले विद्यार्थियों को ये समझना होगा, और खास तौर के हमारे अभिभावकों को, विद्यार्थियों को समझाना पड़ेगा या अध्यापक साथियों को भी समझाना पड़ेगा कि तनाव और चिंता चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में होना स्वाभाविक है, इसमें कोई नई बात नहीं है, और ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया के लिए हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण जो चीज है वो है नियमित व्यायाम, योग, और बीच बीच में जिसको हम डीप ब्रीदिंग कहते हैं, गहरी श्वास लेकर के इसका भी अगर हम अभ्यास करते हैं, उसके उपरांत अगर हमारे विद्यार्थी पर्याप्त नींद लेते हैं
0: जी,
1: संतुलित आहार इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है, और नियमित दिनचर्या बनाए रखना
0: जी,
1: जैसे कई बार उनको कोई लेसन पढ़ना होता है या कोई काम करना होता है, उसके बजाय वो क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर चले गए या फिर चैटिंग करने लग गए, उसमें उनका अधिक समय चला गया, लेसन के लिए समय कम बच गया, तो उनका जो ध्यान भटकता है उसको भी उनको एक नियमित दिनचर्या रखनी पड़ेगी, और उस नियमित दिनचर्या में उनको अपना जो समय है उसको पढ़ाई में, खेल में, बीच बीच में विश्राम में, और सबसे महत्वपूर्ण बात है मनोरंजन के बीच में भी एक संतुलन बनाना पड़ेगा
0: जी। बिल्कुल बिल्कुल,
1: अगर ये कर पाते हैं, इसके अलावा मित्रों से मिलना, परिवार के साथ मिलना, और खास करके जो सकारात्मक जो जुड़ाव है वो बढ़ाना पड़ेगा
0: जी।
1: कई बार क्या होता है कि अगर ये सारी चीजें नॉर्मल चलती हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर ऐसा नहीं चलता है तो किसी परामर्शदाता से या किसी मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ से सहायता लेने में भी
0: जी
1: विद्यार्थी को
0: संकोच
1: किसी प्रकार का संकोच नहीं करना चाहिए
0: जी। जी डॉक्टर साहब, आपने बड़ी उपयोगी जानकारी दी। अब आते हैं परीक्षा के मुद्दे पर। अक्सर देखा गया है कि परीक्षा के दिनों में हमारे विद्यार्थी बहुत अधिक तनाव में आ जाते हैं, तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगा अपने श्रोताओं की ओर से कि परीक्षा के दिनों में खासकर बच्चों पर बढ़ते दबाव को कम करने के लिए अभिभावक और शिक्षक, उनकी भूमिका क्या हो सकती है?
1: देखिए, अभिभावक की और शिक्षक की तो भूमिका हमेशा ही महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि जब हम बात करते हैं विद्यार्थियों की तो विद्यार्थियों के जीवन में अभिभावक का और शिक्षक का एक महत्वपूर्ण रोल रहता है। अब यहाँ पर सबसे पहली बात अभिभावक की क्या है, विद्यार्थी को ध्यान पूर्वक सुनना, जो बात वो कहना चाहते हैं, उनकी जो चिंताएं हैं, उनकी जो शंकाएं हैं
0: जी,
1: उनको बड़े ध्यान से सुनना और धैर्य पूर्वक सुनना, ये सबसे पहली बात।
0: बिल्कुल, बहुत जरूरी।
1: कई बार ये होता है कि अगर हमारी बात को कोई अच्छे से सुन ले, समझ ले, तो फिर हमें काफी रिलैक्स फील करता है, राहत मिलती है
0: जी।
1: दूसरी जो चीज रहती है कि हमें बीच बीच में थोड़ा सा एक भावनात्मक समर्थन, या ये कहिएगा कि एक तरीके से मनोबल बढ़ाने के कुछ चीजें भी मिल जाती, जैसे हमें ये बताना पड़ेगा कि विद्यार्थी ये समझे कि परिणाम के ऊपर फोकस नहीं करना है, केवल प्रयास और सीखने की प्रक्रिया पर ध्यान देना है। देखिए, मैं बड़ी महत्वपूर्ण बात करने जा रहा हूँ कि हमें प्रयास और सीखने की प्रक्रिया पर

0: ध्यान देना है, परिणाम की बात नहीं करनी है।
1: परिणाम से आपका मतलब रिजल्ट?
0: जी, रिजल्ट से
1: जी।
0: क्योंकि देखिए, अगर हम सीरियसली प्रयास कर रहे हैं और हम सीखने की प्रक्रिया पर ध्यान दे रहे हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण है। रिजल्ट कई बार मैटर नहीं करता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि सभी बच्चे 90% अंक लाएं, और अंकों की तो बात ही नहीं करनी चाहिए हमें। क्योंकि देखिए, किसी भी व्यक्ति के सफलता के लिए केवल उसके नंबर ही या उसके मार्क्स ही एक सिंगल पैरामीटर नहीं है। आज के समय में जो हम बात करते हैं, वो बात करते हैं कि किसी भी बालक के सर्वांगीण विकास की, होलिस्टिक डेवलपमेंट की हम बात करते हैं। होलिस्टिक डेवलपमेंट में केवल एक उसकी पढ़ाई ही शामिल नहीं है, समाज में उनका क्या रोल है, अपने बाकी मित्रों के साथ उसका किस तरह का काम है, या परिवार में क्या भूमिका है, देश के प्रति उनकी क्या चिंता है, तो बहुत सारी जो चीजें हैं वो सारी की सारी चीजें इसके अंदर शामिल होती हैं। विद्यार्थियों को ये भी कहीं ना कहीं बताना आवश्यक है कि देखिए, हमारे सामने बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं जो हमारे बहुत अच्छे क्रिकेटर हैं।
1: बिल्कुल,
0: हमारे बहुत अच्छे क्रिकेटर हैं, हमारे बहुत अच्छे रेसलर्स हैं, हमारे बहुत अच्छे स्पोर्ट्स पर्सन हैं। उन्होंने पढ़ाई के अलावा दूसरे फील्ड में काम किया और वो आज के समय में एक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो विद्यार्थियों को समझना पड़ेगा कि एकेडमिक्स के अलावा भी बहुत सारे फील्ड हमारे पास है। कोई म्यूजिक में अपनी हॉबी ले सकता है, कोई क्रिएटिव एक्टिविटीज में अपनी हॉबी क्रिएट कर सकता है, तो बहुत सारी ऐसी चीजें हो सकती हैं। और ये पेरेंट्स को भी समझना पड़ेगा कि केवल और केवल एकेडमिक्स ही नहीं, एकेडमिक्स के अलावा भी बहुत बड़ी दुनिया है।
1: जी।
0: दूसरी जो बात मैं कहना चाह रहा हूं कि जो बच्चों के ऊपर बहुत अधिक अपेक्षाओं का दबाव ना डालें, बच्चों से हम बहुत अधिक अपेक्षा ना करें, उनको पर्याप्त नींद का हम मौका दें, उनको पौष्टिक भोजन हम करवाएं, और उनको बीच बीच में, जैसे बहुत लंबे समय तक वो पढ़ते तो बीच बीच में छोटे छोटे ब्रेक उनको दे करके कि ठीक है, बहुत लंबा पढ़ लिए, अब थोड़ी देर खेल लीजिए,
1: तो आराम कर लीजिए,
0: आप थोड़ा आराम कर लीजिए। इसके अलावा तनाव प्रबंधन के कुछ सकारात्मक तरीके भी हैं। जैसे मान लीजिए, सुबह उनको थोड़ा सा योग के बारे में बता दिया, या थोड़ा मेडिटेशन कराने की प्रैक्टिस उनको करा दी, या बीच में जहां वो तनाव में महसूस, उनको थोड़ा सा रिक्रिएटिव एक्टिविटीज लाइक कोई म्यूजिक आपने सुना दिया, कोई छोटे मोटे गेम उनको करा दिए। और आज के समय में तो बहुत सारे गेम, को जरूरी नहीं है कि ग्राउंड में खेलने वाले गेम हो, इन हाउस भी गेम बहुत सारे होते हैं। लेकिन मेरा आपसे निवेदन सिर्फ यही रहेगा कि वो गेम जितने भी हों या जो भी चीजें रहें, इलेक्ट्रॉनिक गेम ना होने चाहिए। क्योंकि अगेन क्या होगा कि अगर वो इलेक्ट्रॉनिक गेम होंगे तो फिर दोबारा फिर उसकी भी एक समस्या रहेगी।
1: जी हाँ जी।
0: तो वो गेम जो भी रहे, जैसे लूडो है, सांप सीढ़ी, कुछ भी अपने छोटे छोटे गेम जो हमारे अपने घरों में खेले जा सकते हैं, और बच्चों की भावनाओं को नकारने के बजाय उनकी बात को बड़े पॉजिटिव तरीके से हमको समझना चाहिए।
1: जी, जी।
0: ये कुछ तथ्य या कुछ बिंदु मैंने अभिभावकों की भूमिका के बारे में बताए हैं।
1: जी।
0: और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भावनात्मक प्रबंधन, जैसे कौशल विकसित करना, बहुत सारी छोटी छोटी टेक्निक्स या बहुत छोटी छोटी चीजें हो सकती हैं जो अध्यापक उनको बता सकते हैं। जैसे मैं आपको उदाहरण के माध्यम से समझाने की कोशिश करता हूँ कि एक विद्यार्थी है, वो पढ़ाई कर रहे हैं, तो हम उनको कहेंगे अच्छा, आपने पढ़ाई किया, अब ऐसा करो, आप चित्रकला में थोड़ा काम करके देखो, कुछ अपनी बात को कहानी के माध्यम से, कुछ रचनात्मक गतिविधि जिसको हम बोलते हैं, कि आप ऐसा करिए कि आप कोई चित्रकला में कुछ काम करिए, कोई कहानी लेखन का काम कर लीजिए, या जिसको हम ग्रुप डिस्कशन कहते हैं, समूह चर्चा, ऐसी गतिविधियों में आप आगे चलें। क्या होता है कि उससे थोड़ा सा उनका फोकस भी रहता है और अपना थोड़ा सा एक तरीके से समय भी उनको मिल जाता है।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: इसके अलावा देखिए, विद्यार्थियों में कुछ विद्यार्थी ऐसे होते हैं जिनको विशेष आवश्यकता रहती है, उनकी बातों को समझना और उनके साथ संवेदनशील होकर के उनकी जो समस्याएं हैं उनकी चिंता करना।
1: जी, बिल्कुल बिल्कुल।
0: इसके अलावा विद्यार्थियों में छोटी छोटी उपलब्धि है उसकी भी सराहना करना, उनको बीच बीच में मोटिवेट करना, अच्छा आपने बहुत अच्छा काम किया। जैसे किसी विद्यार्थी को आपने कोई असाइनमेंट दिया, कोई होमवर्क दिया, उसने करके दिखाया, अरे बहुत अच्छा किया आपने, आप तो इससे भी अच्छा कर सकते हो। तो इस तरीके से जो छोटे छोटे जो मोटिवेशन हैं, छोटी छोटी जो चीजें रहती हैं, इससे उनको काफी एक तरीके से ये मानिए कि उनको बड़ा मोटिवेशन मिलता है, मनोबल बढ़ता है, और इस तरीके से वो और आगे इसके लिए कोशिश करते हैं। दूसरा, परामर्श की जो सेवाएं हैं उनकी जानकारी देना। हमारे पास जो काउंसलिंग सेवाएं हैं, अन्य जो संसाधन हैं, जो सहायता संसाधन हो सकते हैं, उनकी भी चीजें शेयर करना, ये चीजें यहाँ यहाँ उपलब्ध हैं, आप देख लीजिए, समझ लीजिए। और ये एक जो सबसे महत्वपूर्ण जो इसमें काम हो सकता है, अध्यापक का और पेरेंट्स, यानी कि अभिभावक, अध्यापक और विद्यार्थी, इन तीनों के बीच में एक तारतम्य, एक बहुत अच्छा जो कनेक्शन रहे,
1: तालमेल रहे,
0: तालमेल जितना रहेगा उतना ही अच्छा रहेगा।
1: तो डॉक्टर साहब, इतनी उपयोगी जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा विश्वास है कि हमारे श्रोता जरूर इससे बहुत लाभान्वित

0: होंगे। अब एक विशेष प्रश्न पर मैं आता हूँ, और वो प्रश्न ये है कि मोबाइल फोन, सोशल मीडिया और ऑनलाइन गेम्स का बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है और इनके संतुलित उपयोग के लिए आप क्या सुझाव देना चाहेंगे। मूल प्रश्न है इनका संतुलित उपयोग।
1: जी, आपका ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए, जो संभावित नकारात्मक प्रभाव इसके हो सकते हैं, सबसे बड़ा जो चिंता और तनाव, क्योंकि लगातार तुलना करते हैं, इसमें भी क्या होता है, उनके लाइक अधिक हो गए, हमारे लाइक कम हो गए, यहाँ भी हमने तुलना कर ली,
0: ऐसा होता
1: उसके
0: है।
1: बाद हम क्या करते हैं, ऑनलाइन किसी भी चीज के ऊपर या सोशल मीडिया में कोई चीज आती है, ऑनलाइन गेम आता है, इवन ऑनलाइन गेम के अंदर तो कई तरह की बहुत सारी खतरनाक चीजें भी होती हैं। अगर आपको जानकारी हो तो जैसे ये ब्लू वेल टाइप के जो गेम थे, तो कुछ लोग क्या करते हैं कि उन ऑनलाइन गेम के माध्यम से हमारे विद्यार्थियों को चीट करने की कोशिश करते हैं, उनसे भी बचना चाहिए। दूसरा क्या होता है कि लगातार स्क्रीन को देखने से नींद आने में बाधा उत्पन्न होती है, नींद की क्वालिटी प्रभावित होती है, और क्या होता है कि हमारे जो सामाजिक अलगाव भी बढ़ता है।
0: जी,
1: जैसे एक दूसरे के आमने सामने बैठ करके हम संवाद करते हैं, ऑनलाइन गेमिंग से या ऑनलाइन मोबाइल फोन के प्रयोग से या सोशल मीडिया से या ऑनलाइन बने रहने से विद्यार्थी एक दूसरे से आमने सामने बात करने से बचते हैं, और उनको वो समय नहीं मिल पाता, तो धीरे धीरे क्या होता है कि समाज से भी वो थोड़े से कट जाते हैं, अपने साथियों से अकेलापन आ जाएगा, अपने विद्यार्थियों से, साथियों से, भाई बहन से। और अक्सर आपने देखा होगा कि एक घर में अगर चार लोग हैं तो चार मोबाइल के साथ अलग अलग बैठे हैं, जबकि वो बैठे एक ही घर में हैं, तो उनको मोबाइल को किसी लिमिटेड समय के लिए रख देना चाहिए। और लिमिटेड समय का मतलब ये हुआ कि विद्यार्थियों के लिए स्क्रीन टाइम निर्धारित होना चाहिए। इसके लिए विद्यार्थी के अभिभावक और हमारे अध्यापक ये मिलकर के बातचीत कर सकते हैं कि किस कक्षा के लिए कितने घंटे का मोबाइल का बैन होना चाहिए। खास करके घर में भी बहुत छोटी छोटी चीजें, जैसे हम जब शाम को डिनर करते हैं, रात्रि भोजन जब करते हैं, उस समय भी हम कहते हैं अच्छा ठीक है मोबाइल बंद कर लीजिए, अच्छा अब आधा घंटा हम अपने घर की चर्चा करेंगे, अपने विषयों की चर्चा करेंगे, साथ में खाना खाएंगे, हम नाश्ता साथ में करेंगे। तो इस तरह के जो जो चीजें हैं उसको बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। इसके अलावा विद्यार्थियों को इलेक्ट्रॉनिक गैजेट का इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन काम के समय और कितना उपयोग करना इस पर भी नजर रखनी चाहिए। इसके अलावा विद्यार्थियों को खेल में, संगीत में, कला में छोटी छोटी गतिविधि, जैसे मौसम के अनुसार, सर्दी अधिक है तो धूप में कोई एक्टिविटी हो सकती है, गर्मी अधिक है तो घर के अंदर भी कोई एक्टिविटी हो सकती है, सुबह शाम हो सकती है, तो वो भी देख करके हम कर सकते हैं। और बच्चों को ये भी समझाएं कि जो डिजिटल लिटरेसी यानी कि डिजिटल साक्षरता है, ये सिखानी बहुत ही महत्वपूर्ण है। कई बार क्या होता है कि छोटे छोटे जो मैसेज आते हैं, उन मैसेज को लेकर के भी इधर उधर चीजें होती हैं या चर्चाएं होती हैं, तो उनके बारे में भी बताना चाहिए। इसके अलावा सोने से कम एक घंटा पहले जो डिजिटल स्क्रीन है, स्क्रीन को बंद कर देना चाहिए, क्योंकि क्या होता है कि लंबे समय तक अगर वो डिजिटल स्क्रीन को देखेंगे तो उनको नींद आने में समस्या रहेगी और वो अच्छी नींद नहीं ले पाएंगे। परिवार के साथ मिलकर के भी हम बहुत सारे नियम तय कर सकते हैं, जैसे आपको पता है कि हमारे जो परिवेश है, हमारी जो संस्कृति है, हमारे जो संस्कार है, उसमें बहुत सारी चीज हम एक दूसरे से सीखते हैं, हम समाज से सीखते हैं, परिवार से सीखते हैं, तो इसके अंदर भी समाज और परिवार की बहुत सारी महत्वपूर्ण जो चीजें हैं वो कवर हो सकती हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: जी
0: जी। तो डॉक्टर साहब, एक और प्रश्न मेरे मन में आता है श्रोताओं की ओर से कि प्रतिस्पर्धा के इस दौर में बच्चों में हीन भावना या नकारात्मकता विकसित हो जाती है। होता यह है कि वे अपनी असफलता को स्वीकार ही नहीं कर पाते, तो हम ये जानना चाहेंगे कि बच्चों में असफलता को स्वीकार करने की क्षमता और सकारात्मक सोच कैसे विकसित की जा सकती है।
1: देखिए, कुछ जो चीजें हैं वो बड़ी महत्वपूर्ण हैं कि सबसे पहले जो बात हम कर रहे हैं कि जो हमारा विद्यार्थी है उसको किसी भी चीज के सफलता या असफलता के कोई पैरामीटर होते ही नहीं।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: किसी प्रकार का कोई पैरामीटर नहीं होता है। एक विद्यार्थी हो सकता है कि पढ़ाई में थोड़ा सा कमजोर हो, स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा हो सकता है,
0: हो सकता है,
1: वही पेंटिंग में अच्छा हो सकता है, वो आर्ट में अच्छा हो सकता है, बाकी किसी अन्य विषय में अच्छा हो सकता है।
0: जी,
1: तो हमें ये समझना चाहिए कि उस विद्यार्थी का अच्छा स्किल क्या है, उसका बेटर टैलेंट क्या है, उस टैलेंट को हमें पकड़ना है और उस टैलेंट को पकड़ के उसको और आगे उभारना है।
0: जी,
1: पकड़ने से मतलब है कि उसको आइडेंटिफाई करना है।
0: बिल्कुल,
1: उसकी पहचान करने और पहचान करने के बाद उसी को आगे और निखारना है।
0: जी, उसी को।
1: इसके अलावा हमारे बहुत सारे ऐसे प्रयास हो सकते हैं कि केवल परिणाम की बात ना करें, मेहनत और सीखने को महत्व दें। इसके अलावा छोटे छोटे लक्ष्य, बड़े जो कार्य होते हैं उनको छोटे छोटे लक्ष्यों में, छोटे छोटे कार्यों में चरणबद्ध तरीके से हम लेकर के चल सकते हैं। जैसे जो बात आपने

0: कही कि किसी को असफलता भी मान लीजिए होती है,
1: हाँ होती है,
0: असफलता से एक चीज तो सिद्ध होती है कि हमने कोई प्रयास किया वो सफल नहीं हुआ, लेकिन उसके अंदर जो अच्छाई है वो ये है कि हमें उस गलती से सीखने का एक अवसर मिला
1: जी।
0: तो जब हमें सीखने का एक अवसर मिला तो उस असफलता का हमारे लिए कोई नेगेटिव प्रभाव नहीं बचा, हमने कुछ सीखा। देखिए गलती से भी कुछ सीखा ना,
1: हाँ होता
0: तो,
1: है।
0: तो इसका मतलब क्या हुआ
1: जी,
0: वो भी एक हमारे तरह से एक तरीके से मोटिवेशन का काम वो करता है
1: जी।
0: और मैं पुनः आपके माध्यम से सभी को ये कहना चाहूंगा, देखिए विद्यार्थी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, विद्यार्थी की हर छोटी चीज का ध्यान रखें, उनको एक वॉच करें, उनको ऑब्जर्व करें और उनकी गतिविधि को देखें, उनका समय समय पर मनोबल बढ़ाएं और उनके कुछ विशेष जो काम हैं या विशेष गतिविधि है उनको देखें। अगर कोई स्पोर्ट्स में अच्छा करना चाह रहा है तो पेरेंट्स ऐसा ना करें कि उसको स्पोर्ट्स के बजाय किसी दूसरे फील्ड में धकेलने की कोशिश करें। देखिए विद्यार्थी है, उसका जो रुचि है रुचि के अनुसार वो अपने विषय चयन करे, विषय के अनुसार वो अपने आगे के जो क्रियाकलाप है वो तय करे। हम किसी प्रकार की कोई जबरदस्ती विद्यार्थी के साथ ना करें। अक्सर ऐसा देखा गया है कि पेरेंट्स भी जो चॉइस विद्यार्थियों के बजाय पेरेंट्स की जो चॉइस है
1: थोप
0: जैसे थोप देते हैं, थोपने के बजाय उनको एक अपना इंडिपेंडेंट निर्णय लेने दें। दूसरा, जो वो निर्णय लें उस निर्णय में हमें उनकी सहायता करनी चाहिए, उनको मदद करनी चाहिए। और जो छोटे छोटे जो काम हैं, जैसे किसी ने कोई काम किया तो उसको मनोबल बढ़ाने के लिए उसको शाबाशी देना,
1: हाँ, प्रोत्साहित करें,
0: प्रोत्साहित करें। इसके अलावा उनको जो एक्टिविटीज हैं, खास करके अगर हम देखें तो रिक्रिएशनल एक्टिविटीज, किसी भी विद्यार्थी का गेम्स का, स्पोर्ट्स का, बाकी चीजों के प्रति भी हमें ध्यान रखें। और हम ये कोशिश ना करें कि विद्यार्थी केवल एक नंबर लाने की मशीन है
1: जी,
0: उसको भी एक ह्यूमन बीइंग समझें और उसके जो भी चीजें चलती हैं, खास करके जो उसकी रुचि के विषय हैं, उनमें भी समय दें। और एक जो चार्ट, ये जो हम कहें टाइम टेबल
1: जी,
0: नियमली हम बनाएं टाइम टेबल, हम एक बनाएं, उस टाइम टेबल में भी हम देखें कि कौन कौन से काम उसके हो सकते हैं, तो टाइम टेबल के अनुसार उसका हम काम करवाएं।
1: तो डॉक्टर साहब, अब मेरा अंतिम प्रश्न होगा आपसे और वो ये है कि बच्चे या अभिभावक मनोदर्पण से कैसे जुड़ सकते हैं?
0: देखिए जैसा मैंने आपको कहा कि मनोदर्पण से जुड़ने के लिए हमारी एक हेल्पलाइन है, उसका नंबर मैं पुनः आपको बता देता हूँ
1: जी,
0: 8-44-844-0632 8-44-844-0632 ये हमारी मनोदर्पण का टेली हेल्पलाइन नंबर है, जिसमें अभी सुबह 8 बजे से लेकर के रात्रि 8 बजे तक 12 घंटे के लिए हमारे काउंसलर्स उपलब्ध होते हैं। कोई भी विद्यार्थी, कोई भी अभिभावक और कोई भी शिक्षक इनसे मदद ले सकते हैं। इसके अलावा हमारे दूसरी जो एक टेली हेल्पलाइन है, जो टेली मानस की है, वो नंबर भी विद्यार्थी नोट कर सकते हैं, 1-44-16 ये टेली हेल्पलाइन है टेली मानस की, इस पर भी वो अपनी मदद के लिए जा सकते हैं। यहाँ पर स्कूल काउंसलर, मनोवैज्ञानिक, मनोचिकित्सक उपलब्ध होते हैं
1: जी।
0: और अगर किसी प्रकार का कोई ऐसी बात दिखती है कि उनको कोई समस्या दिखती है, आप हमें ईमेल के माध्यम से भी manodarpansel@gmail.com पर भी ईमेल कर सकते हैं, हमारी वेबसाइट पर जाकर के विजिट कर सकते हैं, हमारे सहयोग सेशन को वो देख सकते हैं, परिचर्चा सेशन को वो सुन सकते हैं और NCERT के वेबसाइट पर यूट्यूब में भी हमारे सारे के सारे कार्यक्रम उपलब्ध हैं, तो विद्यार्थी इसका अधिक से अधिक लाभ ले सकते हैं
1: जी। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब हमारे स्टूडियो में आने के लिए और इतनी उपयोगी जानकारी देने के लिए और साथ ही साथ इतना अच्छा परामर्श देने के लिए। तो श्रोताओं से मेरा अनुरोध है कि इस प्रसारण को सुनने के बाद आप आज के श्रोता संवाद कार्यक्रम पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर भेजें
0: जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, सभी श्रोताओं को भी बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।

0: तो क्यों ना अपनाएं खुशियां, अपनाकर मनोदर्पण। कॉल करें 844-844-0632 पर और पाएं NCERT द्वारा अपनी शैक्षिक व भावनात्मक समस्याओं का समाधान।
1: अभी आपने सुना ये कार्यक्रम, इस पर हम आपसे प्रतिक्रियाओं की अपेक्षा करेंगे, जरूर लिख भेजिएगा।
2: और श्रोताओं, अब इसी के साथ हमारा उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अजीत
1: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए। कल फिर मिलेंगे। नमस्कार।
3: उमंग, उमंग, उमंग, उमंग।
4: अभी आप सुन रहे थे NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम।

0: हमारा उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अजीत
1: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए। कल फिर मिलेंगे। नमस्कार।
2: उमंग उमंग उमंग उमंग।
3: अभी आप सुन रहे थे NCERT का प्रायोजित कार्यक्रम। हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं।
4: आइए जुड़िए विज्ञान जगत के साथ, जहां हर जटिल सवाल का जवाब मिलता है रोचक अंदाज में। क्या है आपके जीवन में विज्ञान की भूमिका? कैसे बदल रही है तकनीक आपकी दुनिया? जानिए विशेषज्ञों से, सुनिए रोचक चर्चाएं और पाइए विज्ञान से जुड़े ताजा अपडेट्स। तो सुनना न भूलें
5: विज्ञान जगत हर शनिवार शाम 7:30 बजे आकाशवाणी लखनऊ पर।
3: मीडियम वेव पर आकाशवाणी का ये लखनऊ केंद्र है। आइए सुनते हैं सदाबहार नगमे।

जी हाँ, मेरी आवाज़ ही पहचान है, गर याद रहे। जब कोई जन्म लेता है, उसकी मृत्यु तभी निश्चित हो जाती है। लेकिन अपने जीवन काल में हम जो भी काम कर लेते हैं, वही हमारी याद बनकर सबके दिलों में बस जाता है। हम सबके दिलों पर अपनी अमिट छाप छोड़ने वाली छत्तीसगढ़ राज्य के पंडवानी लोकगीत नाट्य की पहली महिला कलाकार तीजन भाई, तीजन बाई अब हमारे बीच नहीं रहीं।

भिलाई के गांव गनियारी में जन्मी तीजनबाई के पिता का नाम हुनुकलाल परधा और माता का नाम सुखवती था। नन्ही तीजन अपने नाना ब्रजलाल को महाभारत की कहानियां गाते सुनाते देखती और धीरे धीरे उन्हें ये कहानियां याद होने लगीं। उनकी अद्भुत लगन और प्रतिभा को देखकर उमेद सिंह देशमुख ने उन्हें अनौपचारिक प्रशिक्षण भी दिया। 13 वर्ष की उम्र में उन्होंने अपना पहला मंच प्रदर्शन किया।

प्रदेश और देश की सरकारी व गैर सरकारी अनेक संस्थाओं द्वारा पुरस्कृत तीजनबाई मंच पर सम्मोहित कर देने वाले अद्भुत नृत्य नाट्य का प्रदर्शन करती थीं। जो ही प्रदर्शन आरंभ होता, उनका रंगीन फुंदनों वाला तानपुरा अभिव्यक्ति के अलग अलग रूप ले लेता। कभी दुशासन की बाँह, कभी अर्जुन का रथ, कभी भीम की गदा, तो कभी द्रौपदी के बाल में बदलकर ये तानपुरा श्रोताओं को इतिहास के उस समय में पहुंचा देता जहां वे तीजन के साथ जोश, होश, क्रोध, दर्द, उत्साह और उमंग और छल कपट की ऐसी ऐतिहासिक संवेदना को महसूस करते जिनका क्या ही कहना। उनकी ठोस लोक नाट्य वाली आवाज और अभिनय, नृत्य और संवाद उनकी कला के विशेष अंग थे।

0: सदाबहार नगमे कार्यक्रम में वक्त है एक अंतराल का।
1: मैं डॉक्टर राजेश हर्षवर्धन, चिकित्सा अधीक्षक SJPGIMS और संयुक्त निदेशक राज्य अंग एवं उत्तर संगठन उत्तर प्रदेश, आज आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारे देश में अंग जैसे किडनी, लीवर, हार्ट, कॉर्निया, इनकी वैसे रोगियों की संख्या काफी ज्यादा हो रही है, बढ़ रही है, जिनके केस में ये अंग काम नहीं कर रहे हैं और उन्हें अंग प्रत्यारोपण की आवश्यकता है। आप एक मुहिम के रूप में आगे आकर SOTOUP के वेबसाइट पे, होम पेज पे प्लीज नाउ बटन क्लिक करें और QR कोड स्कैन करके अंग दान करने का शपथ लें, क्योंकि अंग दान महादान है। आपके इस निर्णय से किसी की जिंदगी बच सकती है। दान जगत का नियत धर्म है, व्यर्थ मनुष्य डरता है। एक दिवस

0: तो स्वयं उसे सब कुछ देना पड़ता है। बचते वही समय पर जो सर्वस्व दान करते हैं, इतु का ज्ञान रहा न जिन्हें वो देकर भी मरते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप यही मैसेज अपने सभी संपर्क में फैलाएंगे। धन्यवाद।
1: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
2: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

भारतीय लोक कला में तीजनबाई पंडवानी के असाधारण योगदान के लिए उन्हें पद्मश्री, पद्मभूषण और देश के दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया था। तीजनबाई ने अपनी सशक्त आवाज, प्रभावशाली अभिनय और अनोखी प्रस्तुति शैली से पंडवानी को देश ही नहीं बल्कि विदेशों

तक में नई पहचान दिलाई। उन्होंने छत्तीसगढ़ की लोक कला को अपनी भव्य प्रस्तुति से दुनिया भर में एक नई पहचान दी। उनका जाना कला और संस्कृति जगत के लिए अपूर्णीय क्षति है।

जिंदगी का सफर है एक ऐसा सफर, कोई समझा नहीं, कोई जाना नहीं। कहते हैं ना, कलाकार कभी मरता नहीं। वह अपनी कला, विचारों, रचनाओं के माध्यम से हम सब के दिलों में जीवित रहता है। भौतिक शरीर भले ही नश्वर हो, लेकिन एक कलाकार की विरासत कभी समाप्त नहीं होती। श्रोताओं, आज सदाबहार नगमे कार्यक्रम श्रद्धांजलि थी। हमारे बीच एक बहुत बड़ी कलाकार,

0: अब आज का सदाबहार नगमे कार्यक्रम समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। दिन के एक बजने वाले हैं, अब आप समाचार सुनेंगे।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रवाना हो गए हैं। श्री मोदी ने कहा कि वे राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के निमंत्रण पर इंडोनेशिया जा रहे हैं। एक रिपोर्ट।
2: प्रधानमंत्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ वार्ता करेंगे और रणनीतिक भागीदारी में प्रगति की समीक्षा करेंगे। वार्ता में दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने पर चर्चा होने की उम्मीद है, जिसमें रक्षा सहयोग, व्यापार, निवेश और ऊर्जा सुरक्षा तथा सांस्कृतिक सहयोग पर खास ध्यान दिया जाएगा। जकार्ता कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण प्रधानमंत्री मोदी का भारतीय समुदाय को संबोधन होगा, जिसे लेकर पूरे देश में उत्साह है। 8 जुलाई को प्रधानमंत्री मोदी ऐतिहासिक प्रम्बनन मंदिर के दर्शन के लिए योग्यकार्ता जाएंगे। जकार्ता से संदीपन दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमीशा।
1: ब्रिक्स देशों के मादक पदार्थ रोधी एजेंसियों के प्रमुखों की बैठक आज गुवाहाटी में शुरू हो गई है। 2 दिन की इस बैठक का आयोजन गृह मंत्रालय के अंतर्गत स्वापक नियंत्रण ब्यूरो ने किया है। भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे स्वापक नियंत्रण ब्यूरो के महानिदेशक अनुराग गर्ग ने कहा कि ब्रिक्स के विस्तार ने मादक पदार्थों की तस्करी और मादक द्रव्यों के सेवन सहित वैश्विक चुनौतियों से निपटने की समूह की क्षमता को मजबूत किया है। केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह आज नई दिल्ली में सहकारिता मंत्रालय के 5वें स्थापना दिवस समारोह में कहा कि सबको साथ लेकर चलना ही सहकारिता है। उन्होंने कहा कि सहकारिता मंत्रालय राज्यों की मदद करने के लिए है। श्री शाह ने कहा कि कृषि और ग्रामीण विकास के क्षेत्र में कई क्रांतिकारी कार्य किए गए हैं। उन्होंने कहा कि आज सभी सहकारी समितियों का डेटा एक जगह उपलब्ध है। श्री शाह ने कहा कि 9 प्रमुख राष्ट्रीय स्तर की सहकारी समिति बनाई गई हैं।
3: सहकारिता मंत्रालय के इनिशिएटिव से कुल 9 राष्ट्रीय स्तर पर काम करने वाली सहकारी समिति बनाकर देश से लेकर ग्राम तक ये 9 क्षेत्रों में सहकारिता मंत्रालय को एक माला में पिरोने का काम हमने किया है।
1: सरकार ने कहा है कि 104 करोड़ से अधिक स्वास्थ्य कार्ड, 93 करोड़ से अधिक आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता आभा से जोड़े गए हैं। ये देश की एकीकृत डिजिटल सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति है। आभा आधार कार्ड की तरह 14 अंकों की विशिष्ट पहचान संख्या है, जो एक व्यक्ति को व्यापक स्वास्थ्य प्रणाली से सुरक्षित रूप से जोड़ती है। ये प्रणाली मरीजों को डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुँच प्रदान करती है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने राष्ट्रीय पात्रता और प्रवेश परीक्षा NEET UG 2026 की आवेदन फीस वापसी के लिए बैंक खाता विवरण अपडेट करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 7 जुलाई कर दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में NTA ने सूचित किया कि जिन उम्मीदवारों ने अपने बैंक खाता विवरण की पुष्टि कर दी है, उनके लिए रिफंड प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अब तक केवल 8,29,510 उम्मीदवारों ने ही अपने बैंक विवरण में सुधार या अपडेट किया है। निर्वाचन आयोग ने बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश की 3 विधानसभा सीटों के उपचुनावों के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। बिहार में बांकीपुर, गुजरात में मंजलपुर और मध्य प्रदेश में दतिया विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होंगे। निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल से राज्यसभा की 3 सीटों के लिए उपचुनाव की घोषणा की है। ये सीटें राज्यसभा सदस्य सुखेंदु शेखर रॉय, सुष्मिता देव और प्रकाश चिक बराइक के इस्तीफे के बाद खाली हुई थी। समग्र राष्ट्र

0: आज भारतीय जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। फीफा विश्व कप में आज इंग्लैंड ने मेक्सिको को 3-2 से हरा दिया और क्वार्टर फाइनल में जगह पक्की कर ली। ब्राजील के दिग्गज फुटबॉल खिलाड़ी नेमार जूनियर ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास ले लिया है। घरेलू शेयर बाजार में आज दोपहर के कारोबार में वृद्धि का रुख है। सेंसेक्स 576 अंक बढ़कर 78,340 और निफ्टी 168 अंक बढ़कर 24,438 पर पहुंच गया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। लीजिए सुनिए खोए हुए व्यक्तियों के संबंध में सूचनाएं। श्रीमती शिवरत्ना ने सुभाष नगर थाना उतरौला जनपद बलरामपुर से सूचित किया है कि सुनील कुमार गुप्ता 19 अप्रैल 2026 से लापता हो गए हैं। सुनील कुमार गुप्ता की आयु 32 वर्ष, कद 5 फीट 6 इंच, एकहरा शरीर, रंग गेहुआ और घुंघराले बाल हैं। इनका दाहिना हाथ कोहनी से टूटा हुआ है। अब्दुल समद ने उदयपुर बाजार हरैया जनपद बलरामपुर से सूचित किया है कि कुमारी रही सुन 18 मई 2026 से लापता हो गई हैं। कुमारी रही सुन की आयु 26 वर्ष, कद करीब 5 फीट, सामान्य शरीर और रंग गोरा है। नूर मोहम्मद ने लालकंज मजरे बहुदा खुर्द थाना शिवगढ़ जनपद रायबरेली से सूचित किया है कि रसीदन 21 मई 2026 से लापता हो गई हैं। रसीदन की उम्र 65 वर्ष, कद करीब 5 फीट, रंग सांवला, चेहरा लंबा है और ये मानसिक रूप से विक्षिप्त हैं। राजेंद्र कुमार ने चितबनिया थाना शिवगढ़ जनपद रायबरेली से सूचित किया है कि काजल वर्मा 25 मई 2026 से लापता हो गई हैं। काजल वर्मा की आयु 19 वर्ष 6 महीने, कद करीब 5 फीट, एकहरा शरीर, रंग गोरा और चेहरा गोल है। खोए हुए व्यक्तियों के संबंध में आप हमें इस पते पर सूचित कर सकते हैं। पुलिस अधीक्षक, राज्य अपराध अभिलेख ब्यूरो, उत्तर प्रदेश, महानगर लखनऊ। खोए हुए व्यक्तियों के संबंध में सूचनाएं समाप्त हुईं।

श्रोताओं, हम आपको आज शाम के प्रसारण के कुछ कार्यक्रमों के बारे में जानकारी दे दें। आज शाम 7:31 पर स्वास्थ्य वार्ता कार्यक्रम में डॉक्टर पूनम तिवारी बताएंगी गट हेल्थ और हमारा इम्यून सिस्टम इस विषय पर। संजय यादव की वार्ता सुनिएगा, पेनकिलर को कहें ना फिजियोथेरेपी को कहें हाँ। हिंदी कार्यक्रम में रात 8 बजे दलित चेतना के संवाहक बाबू जगजीवन राम पर वार्ता प्रसारित की जाएगी। सुगम संगीत के कार्यक्रम में प्रियंका श्रीवास्तव के गाए भजन सुनवाए जाएंगे। पत्र व ईमेल पर आधारित फिल्म संगीत का कार्यक्रम आपकी पसंद हम प्रसारित करेंगे आज रात 9:30 पर। रात 10 बजे श्रृंखला नाटक में आज आप सुनेंगे धीरज नाथ त्रिपाठी का लिखा नाटक सूखे के बीज, निर्देशक अतिश श्रीवास्तव। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में ऋषिकेश गांगुर्डे का ख्याल गायन प्रसारित किया जाएगा।

बरसात में पशुओं की बीमारियां, कारण और निवारण, इस विषय पर डॉक्टर जयकेश कुमार पांडे से भेंट करेंगे डॉक्टर सुशील कुमार राय। कार्यक्रम

खेती किसानी में शाम 6:50 पर। डेंगू बुखार के कारण और निवारण के बारे में डॉक्टर सतीश कुमार से रियाज अहमद की भेंटवार्ता सुनिएगा लोकायतन कार्यक्रम में शाम 6:30 पर।

0: प्रायोजित कार्यक्रम उड़ान आप सुनेंगे हर मंगलवार को शाम 7:45 पर। एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम आप सुनेंगे सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे से। मीडियम वेव पर हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। दिन के 1:10 होने वाले हैं। अब आप सुनेंगे इलाकाई खबरें।
1: ये आकाशवाणी लखनऊ है। इलाकाई खबरों के साथ मैं आमिर हुसैन सिद्दीकी। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के यौम पैदाइश पर उनके मुजस्समे पर गुलपोशी करके उन्हें खिराज अकीदत पेश की। वज़ीर आला ने कहा कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की हुब्बुल वतनी पर मबनी ज़िंदगी, बेमिसाल हिम्मत, मुत्तहिदा भारत के लिए अटल लगन और अवामी खिदमत का आइडियल हर नस्ल के लिए मशाल राह है। उनके नज़रियात कौम की तामीर और अवामी खिदमत के रास्ते पर हमेशा रहनुमा रहेंगे। वज़ीर-ए-आला योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ के राष्ट्रीय प्रेरणा स्थल में मुनक्किद शक्ति केंद्र कोऑर्डिनेटर कॉन्फ्रेंस में शिरकत की। इस मौके पर भारतीय जनता पार्टी के कौमी सदर नितिन नवीन, बीजेपी के रियासती सदर पंकज चौधरी, नायब वज़ीर-ए-आला केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक भी मौजूद थे। कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए जनाब योगी ने कहा कि डबल इंजन वाली हुकूमत मुसलसल तरक्की पर मबनी और अवामी बहबूद के काम कर रही है।
2: आज जो विकास दिखाई दे रहा है, आज जो सुरक्षा का मॉडल है, आज जो सुशासन का मॉडल है, और जिस प्रकार से डबल इंजन की सरकार समाज के प्रत्येक तबके के लिए, क्या वो युवा हो, क्या वह आधी आबादी बहन और बेटियों के स्वावलंबन और सुरक्षा से जुड़ा हुआ मुद्दा हो, क्या वह अन्नदाता किसान हो या गरीबों तक शासन की योजना का लाभ बिना भेदभाव के उपलब्ध करवाने का कार्य बिना रुके हुए, बिना डिगे हुए, बिना झुके हुए, बिना थके हुए निरंतर पहुंचाने का कार्य कर रही है।
1: इस मौके पर बीजेपी की कौमी सदर नितिन नवीन ने कहा कि माजी में हमारी क़यादत उन मसाइल के बारे में आवाम के तई चौकस रही, जिसकी वजह से पूरी दुनिया में अदम इस्तेहकाम पैदा हुआ था। बीजेपी के कौमी सदर नितिन नवीन ने कल लखनऊ में पार्टी के सीनियर लीडरों, साबिक सुदूर और एनडीए के इत्तेहादियों के साथ एक अहम मीटिंग की। मुलाकात के दौरान 2027 के असेंबली इंतखाबात की हिकमत अमली पर तबादला ख्याल किया गया। मीडिया से बातचीत करते हुए बीजेपी सदर नितिन नवीन ने खिदमत और तरक्की के एजेंडे पर खसूसी जोर दिया। श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने आज अपने अराकीन की मीटिंग बुलाई है। इजलास में कई अहम इंतजामी और मालियाती उमूर जेर बहस आएंगे। पेश है एक रिपोर्ट।
3: 28 जून को जारी एक आधिकारिक सूचना के अनुसार बैठक के एजेंडे में महासचिव चंपत राय और न्यासी डॉक्टर अनिल मिश्रा के त्याग पत्रों पर विचार विमर्श करना भी शामिल है। सदस्यों को न्यास की दान पेटियों के माध्यम से मिले दान की गणना के संबंध में एसआईटी की अंतरिम रिपोर्ट के बारे में भी जानकारी दी जाएगी। बैठक में राम मंदिर के भविष्य के प्रबंधन से संबंधित व्यवस्थाओं पर भी विचार विमर्श किया जाएगा। एजेंडा का एक महत्वपूर्ण बिंदु वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए आय व्यय वितरण, बैलेंस शीट और अन्य वित्तीय दस्तावेजों की प्रस्तुति और अनुमोदन शामिल है। विज्ञप्ति के मुताबिक अध्यक्ष की अनुमति से किसी अन्य मामले पर भी चर्चा हो सकती है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: इस दरमियान अयोध्या श्रीराम मंदिर चढ़ावा केस में तफ्तीशी अफसर ने कल जिला जेल में 8 में से 5 मुलजमीन से तकरीबन 6 घंटे तक पूछताछ की। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ आज प्रयागराज के काली घाट पर वाक़ प्रेरणा पार्क का इफ्तिताह करेंगे। इस पार्क में वो कौम की तामीर के अलमबरदार डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, साबिक वज़ीर आज़म भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी और भारतीय सकाफत के अलमबरदार अशोक सिंघल के मुजस्मों की नकाब कुशाई करेंगे। देही तरक्की के मरकज़ी वज़ीर शिवराज सिंह चौहान ने 1 जुलाई से शुरू होने वाले

0: विकसित भारत रोजगार और रोजी रोटी गारंटी मिशन देही 2025 के कामयाब निफास पर अपने इत्मीनान का इजहार किया है। उन्होंने कहा कि विकसित भारत जी राम जी को सिर्फ एक दिन में पूरे मुल्क में नाफिज कर दिया गया। कल मरकजी वजीर ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इस मिशन के तहत रियासतों को 25,000 करोड़ रुपये की इमदाद जारी की। रियासती पंचायती राज के वजीर ओम प्रकाश राजभर ने ऐलान किया है कि हुकूमत गांव में उत्सव भवन तामीर करेगी। इन उत्सव भवनों में कम आमदनी वाले अफराद कम कीमत पर शादी और दीगर तकरीबात का इनेकाद कर सकेंगे। अम्बेडकर नगर में जिला पंचायत सदर के दफ्तर के इफ्तिताह के दौरान जिला इंचार्ज वजीर ने कहा कि जिला पंचायत महकमा देही इलाकों की तरक्की में अहम किरदार अदा करता है। इस मौके पर जिला पंचायत सदर साधु वर्मा और जिला मजिस्ट्रेट ईशा प्रिया भी मौजूद रहीं। इसके साथ ही आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
1: मीडियम वेव पर हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। बहने सुने अपना कार्यक्रम घर आंगन।

घर आंगन कार्यक्रम सुनने वाले सब बहनन का वंदना के नमस्कार। श्रोता बहनी, एक डेढ़ महीना के अंतराल के बाद फिर वह घंटी बजी। बस्ता कांधे पर, जूतन में पॉलिश, स्कूल के परिधान और आंखन में हजार सपने लिए, फिर से खुले स्कूल। अब कक्षा में फिर से चाक की आवाज, इंटरवल में फिर से शोर हुई और अध्यापकन के डांट डपट के साथ साथ मिली है प्यार भी हमरे नन्हे मुन्नन का। काहे से स्कूल सिर्फ किताबें नहीं, स्कूल मतलब दोस्ती, स्कूल मतलब अनुशासन और जीवन के पहल सीख भी है। स्कूल सिर्फ इमारत नहीं है श्रोता बहनी, स्कूल मतलब पहली दोस्ती, पहला शैक्षिक वातावरण और पहली जीत। स्कूल मतलब कोई अध्यापक जो थोड़ा कड़क भी हैं मगर दिल से मुलायम भी, जो उन गढ़त हैं वही बचपन का, जो उन आगे चल के बनी है देश के भविष्य। काहे से जब नन्हे कदम बढ़त हैं शिक्षा की ओरिया तो पूरा देश आगे बढ़त है। काहे से जौन बच्चा आज स्कूल के बेंच पर बैठ हैं वह काल डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर और शायद केऊ आरजे यानी रेडियो जॉकी भी बनी है। तो ननुहारन के माता पिता से एक अनुग्रह है, मनुहार है कि आपके चाहे लड़का हो या बिटिया, सबका पाठशाला जरूर पठवें और समय पर पठवें, प्रतिदिन पठवें। साथ में पानी के बोतल, टिफिन और आवश्यक कॉपी किताब जरूर भेजें। उनके पढ़ाई लिखाई पर ध्यान अवश्य दें। उनका कौन से विषय में गृह कार्य मिला है, कौन सा प्रोजेक्ट के मॉडल तैयार कराऊब है, लड़कन बच्चन के कक्षा में का प्रतिक्रिया रही, वही कौन विषय में ठीक हैं या कमजोर हैं, या कौन विषय में वही नीक तरह से प्रगति कर रहे हैं, इन सब बातन के ध्यान रख के उनका स्कूल पठवे में तनिको कोताही ना ही बरतो श्रोता बहनी। और यह ना सोचो कि पचई अठई या दसवीं बारहवीं तक पढ़ाई लीन है घर के लड़कन बेटियन का, अब आगे का पढ़ावा जाए, ये बात ठीक नहीं है। बल्कि उनके जितना पढ़े के इच्छा होए वतना पढ़ावें लिखावें, उनका जीवन में आगे बढ़ावें। तो ई तो रही बात हमने ननुहारन के शिक्षा के। और श्रोता बहनी, अब बात करब एक ऐसन लोक गायिका के जिनके गायन शैली आपन अलग रंग बिखेरत रही, और वह है पांडवानी। और जब पांडवानी गायन के नाम आवत है तो वही के साथ नाम जुड़ जात है छत्तीसगढ़ के माटी के बेटी पंडवानी लोक गायिका तीजन बाई जी के, जो उनकी काल यानी 5 जुलाई 2026 का हम सब के बीच ना ही रही। हम सभी उनका सादर नमन करित है। श्रोता बहनी, तीजन बाई केवल एक लोक गायिका ही नहीं रही बल्कि वही महाभारत का जिए वाली आवाज रही। जब वही मंच पर तंबूरा लेके ठाड़ होत रही तो अर्जुन, भीम, द्रौपदी सब जीवित हो उठत रहे। 13 साल की उम्र में पहला प्रदर्शन, और फिर वही पहली महिला बनी जोन पुरुषन वाली कापालिक शैली में पंडवानी गायन। छत्तीसगढ़ के गनियारी गांव से निकली और दुनिया के तमाम

0: આમ દેશનમાં ભારતકે નામ રોશન કરીને પદ્મશ્રી, પદ્મભૂષણ ઓ પદ્મવિભૂષણ સે સન્માનિત રહી તીજનબાઈજી. શ્રોતાબેની પતા ચલી કે ભારતમાં બહુ કમ કલાકાર હૈ જિનકા ઈ તીનો પુરસ્કાર સે સન્માનિત કીન ગવા હોય. યહકે અલાવા ચાર બાર ડીલિટ કી માનત ઉપાધિ અલગ અલગ વિશ્વવિદ્યાલયન સે, ફુકુઓકા એશિયન કલ્ચર પુરસ્કાર જાપાન સરકાર દ્વારા 2018માં જો ઉનકી એશિયા કે બહુ બડા સન્માન હૈ, છત્તીસગઢ સરકાર ઓર કયું સંસ્થાવન દ્વારા લાઇફ ટાઈમ અચીવમેન્ટ અવાર્ડ, તીજનબાઈ જી હર સન્માન કા અપની પંડવાની સે ઊંચા કર દીન. હમ સબે કે હૃદયમાં તીજનબાઈ જી સદૈવ નિવાસ કરી હૈ. આજ પંડવાની કે તંબુરા ખામોશ હૈ, પર વહી કે ગૂંજ હર ગાંવ, હર શહેર, હર હૃદયમાં સદૈવ બજી હૈ. એક બાર ફિર સે શત શત નમન તીજનબાઈ જી કા. શ્રોતા બહેની, દુનિયામાં આના જાના તો પ્રકૃતિ કે નિયમ હૈ. મુલા કાહે સે પ્રકૃતિ કે રંગ અનેક હૈ, કબો પતઝડ તો કબો હરિયાલી, ઓર જોની હરિયાલી હૈ ના વહીમાં બસી હૈ ઈ ધરતી કે સાથ સાથ હમ સબ કે ખુશહાલી ભી. તો યહ બાત પર આજ હમ લેકે આયે હૈ વાર્તા, પ્રકૃતિ કે રંગ હરિયાલી કે સંગ, જી કે બારેમાં બહુ સુંદર વર્ણન કર રહી હૈ જ્ઞાનવતી દીક્ષિત બહેની. તો ચલો સુના જાય.
1: घर आंगन की श्रोता बहनों को ज्ञान दीक्षित का प्यार भरा नमस्कार. बरसात के रा मौसम गांव गिराओं के लिए बहुत काम लेके आवत है. लैया लगावे खे, छप्पर छानी दुरुस्त करे खे, साग सब्जी के रा नुकसान हो जात है वह देखे खे. सबसे ज्यादा तो जानवर परेशान होते हैं. चारा पानी के री समस्या हो जात है. गांव से जुड़े लोग जानत हैं, बरसात खुशहाली के रे साथे साथ हजारन समस्या लेके आवत है. कुछ गांव कटान से ने परेशान है. ईश्वर करे ये बरसात सबके लिए खुशी लावे और दुख तकलीफ बहाय ले जाए. बरखा के रा गीत है कि रिमझिम बरसे बदरिया, भीजे मोरी सारी उमरिया ना, सावन आयो रे सजनवा, झूले कदम्ब की डरिया ना. बहुत सुंदर गीत है. ऐसे महाकवि निराला लिखिन है. मालती खिली कृष्ण मेघ की छाया, कुल हो गई धरा, कर पीड़न से मधुर तरा, विपुल पल्लवित मनोहरा, दृगों से मिली स्निग्ध हो गया निदाग दाग, मंद मंद गंध का प्रवाह, गली गली गीला उत्साह, पत्रिका हिली उग आए अंकुर जीवन, धान ज्वार अरहर ओसन, बही पुनः गंध से पवन, पके आम की. कितना स्वाभाविक लिखा है. बरसात आए गए, छानी छप्पर दुरुस्त हो लगे, अब की गर्मी तो रोआ लिहिस. जब पहली दह पानी गिरा तो हमका निराला जी की कविता बहुत याद आई. लू के झोंको झुलसे हुए थे जो, भरा दोंगरा उन्हीं पे गिरा, उन्हीं बीजों को नए पर लगे, उन्हीं पौधों से नया रस झिरा, उन्हीं खेतों पर नए हल चले, उन्हीं माथों पर गए बल पड़े, उन्हीं पेड़ों पर नए फल फले, जवानी फिरी जो पानी फिरा, पुरवा हवा की नमी बढ़ी, जूही के जहां की लड़ी कढ़ी, सविता ने क्या कविता पढ़ी, बदला है बादलों से सिरा, जक्के अपावन धुल गए, ढेले गढ़ने वाले थे धुल गए, समता के इन दोनों तुल गए, तपता गगन घन से घिरा. सूरज केरी तपन जो बिरवा सह जात हैं, वह हरियर होए केरा सौभाग्य प्राप्त करत हैं. जैसी जी लिखिन है, तपन मृग सिरा जेस है ते अद्रा पलुहंत, दिनकर इको समाज से जोड़ दिहिन, कहिन है राजा बसंत, वर्षा ऋतुओं की रानी, लेकिन दोनों की कितनी भिन्न कहानी. लेओ भला यह बरसात है, अवधि मैया पानी और नदी का समर्पित, कईयो पारंपरिक गीत और कजरी गाए जाते हैं. हरे रामा बीता जाए सवनवा नदिया तीर, अरे रामा छाई घटा घन घोर, बदरिया कारी रे नदिया बही चली, जलधारा जैसे पुरैन जलमा उपजय. यानी हर कोई आपन नजरिया से बरसात का देखत है कि कैसे बरसात होत है, और अब हियों बरसात है. बहने गावा करती हैं, ऐसी बरखा मा बदरिया घन घोर, बोलत हैं दादुर मोर बलमा. दैनिक जीवन मा जल केरा बहुत महत्व है. ऋग्वेद में कहा गया है, हे जल देवता, हमसे जौनो पाप भवा होए ऊका तुम दूर बहाय देओ, या हमसे जौनो अपराध भवा होए, हमरे कौनो काम से कौनो का पीड़ा भई होए, हम कोई का अपशब्द बोले होई या झूठ बोले होई,

तो वहाँ से दूर भगाए दो। ई है हमार भारतीय संस्कृति। तो बहनों अद्भुत है ई देश करी माटी, अद्भुत है इका जल, अद्भुत है यह की हवा, अद्भुत है इका ताप। ई धरती के जल के कण कण मा प्रवाह, दया, करुणा, उदारता, परोपकार और शीतलता ई सब गुण विद्यमान रहते हैं। मनुष्य कितनो व्यथित होए ठंडे जल से स्नान करते खन उ शांत हो जात है। जले परान है, जल मनुष्य का पुण्य कर्म करे केरी प्रेरणा देत है। वर्षा ऋतु वृक्षारोपण के संदेश लेके आवत है। बिरवा तो मनुष्य के रे सबसे पुरान मित्र हैं, वे तो देते रहत हैं। वृक्ष कबहु ना फल भखे, नदी न संचय नीर, परमारथ के कार्जे साधुन धरा शरीर। यही लिए वृक्षारोपण केरी बड़ी महिमा है। कौनो देश वृक्ष अधिक हुए तो उके सुख सौभाग्य और समृद्धि केरी निशानी कहे जात हैं। बिरवा रोपब एक पुण्य केरा काम है। पद्म पुराण में बतावा गा है कि पुलस्त ऋषि बिरवा लगावे केर महत्व बदावत भय कहिन है। तीर्थ में लगाए गए बिरवा पिंडदान केरा फल देत हैं। नदी तलैया केरे किनारे बिरवा लगावे से अनंत पुण्य केरी प्राप्ति होत है। पीपर केर बिरवा नदी तालाब केरे किनारे लगावे से सैकरण यज्ञ केरा फल मिलत है। भविष्य पुराण में लिखा है जो मनुष्य छाहीदार बिरवा, फलदार बिरवा, फूलन केर बिरवा, रस्ते, देवथान और द्वारे लगावत हैं, उके जन्म जन्मांतर केरे पाप नष्ट हो जात हैं। पीपर केरी महिमा तो विज्ञानो मानत है। इमा किरवा नए लागत हैं। पीपर सबसे ज्यादा ऑक्सीजन छोड़त है और बिरवा लगावे एक महत्व भौगोलिक रूपो से है। नदी किनारे बिरवा कटान रोकत है, हवा ठंडी और शुद्ध हो जात है, रस्ते मा छाही मिलत है, द्वारे केर बिरवा घर ठंडा रखत है और प्रदूषण रोकत है। तो बहनों हर साल कम से कम 10 बिरवा लगाए के ई राष्ट्र यज्ञ मा आपन आहुति देख चाहिए। अवधि लोक गीतन मा बिरवा केर वर्णन बहुते मार्मिक और प्रतीकात्मक है। अवध क्षेत्रन केरी मौखिक परंपरा मा प्रकृति और मानवीय भावना का जोड़द भय कईयो प्रसिद्ध गीत गाए जाते हैं। जैसे निम्बिया के बिरवा पारंपरिक लोकगीत है। ई अवध केर अत्यंत प्रसिद्ध लोकगीत है जिमा अलग अलग पेड़न और जीवन केरी तुलना कीन गई है। इमा बतावा गा है कि नीम केर बिरवा और आम केर बिरवा आपन प्राकृतिक अवस्था में सबसे सुंदर लगत है। निम्बिया

री होय। भारतीय संस्कृति मा उपासना केर बहुत महत्व है। हिया कौनो कार्य केर प्रारंभ पूजा से और विसर्जन पूजा से होत है। पूजा के लिए पवित्रीकरण होत है और पवित्रीकरण होत है जल से। पूजा केर विसर्जन शांति पाठ से होत है और शांति पाठ मा जब मंत्रण केर उच्चारण कीन जात है तो पवित्र जल केर अभिसिंचन कीन जात है। वैदिक वाङ्मय मा जल केरे महत्व का स्वीकार कीन गा है और जल केरी गरिमा महिमा का बखान श्रुति मा सब कहूं कीन गा है। रूप रस स्पर्श वत्य आपो द्रवा स्निग्धा। वैशेषिक दर्शन केरे द्वितीय अध्याय मा जल मा रूप रस और स्पर्श इन तीन गुणन केरा समावेश बतावा गा है। जल स्निग्ध होय के साथे साथ प्रवाहितो होत है। प्रत्यक्ष स्वरूप होय के कारण जल रूपवान है। जल का मुख पर डाले पर शीतल गरम खार मधुर के रसा स्वादन होय से ई रस है। जल का परस करे पर ई के शीत और उष्ण होय का पता चलत है। इलिए जल परस गुणों से ने संपन्न है और अग्नि और वायु के गुणन के मेलो है। जल के उपयोग चिकित्सों के लिए कीन जात रहा। यजुर्वेद के प्रथम अध्याय में कहा गया है कि जैसे ही सूर्य लोक मेघ के बरसे के लिए जल का स्वीकार करत है, जैसे जल वायु का स्वीकार करत है, वैसो मनुष्यों उन जल औषध रसन का शुद्ध करे के लिए मेघ के शीघ्र वेग मा लौकिक पदार्थन का अभिसिंचन करे वाले जल का स्वीकार करे और जैसे वह जल शुद्ध होत है वैसन वहु शुद्ध हो जाए। परमात्मा सूर्य और अग्नि केरी रचना यह लिए किहिन कि वह सब पदार्थन मा प्रवेश करके उनके रस और जल का फैलाए दे, जिसे वो पुनः वायुमंडल में जाए के और वर्षा करे और धरती पर सबका शुचिता और सुख प्रदान कर सके। आपो असमान मातरा शुंधनयंतु घृतेन और घृतस्वा पुनंतु विश्व ही रिप्रम प्रवहंती देवी रुद्राभ्या शुचिरा पूत एमी दीक्षात तपसो तनुरसी ताम त्वाम शिवा क्षमा परिदधे भद्रम वर्णम पुष्यन। यजुर्वेद

ये कहा गवा है हम सबका चाही कि जल से ने शुचिता का प्राप्त करके जल के शोधन करे के बाद उका उपयोग की जाए, जिसे देह का सुंदर वर्ण रोग मुक्ति पुरुषार्थ से ने आनंद केरी प्राप्ति हो सके। वैदिक ऋषियों वैज्ञानिकन केरी तना जल और वायु केरे प्रदूषण से मुक्त करे केरी बात कहीन है। यजुर्वेद मा वह यही परामर्श दीन है कि हम लोग वर्षा जल का कैसे औषधि गुणन से परिपूर्ण कह सकित है। अपो देवी रूप सृज मधुमति रक्षमार्थम प्रजाभ्या तासाम आसना दुजेहो हताम औषधया सुपिपला। यजुर्वेद में कहा गया है कि वेदन में मानव जीवन कृषि जीवन है। नदीन का हम लोग देवी और माता मानन। ऋग्वेद की ऋचा में सरस्वती नदी के महिमा गाई गई है। अम्बितमे नदी तमे देवी तमे सरस्वती प्रशस्ताय उस्मसी प्रशस्तितिम अम्ब नस्कृति। ऋग्वेद में कहा गया है कि माता सरस्वती तुम सर्वोत्तम नदी हो। जी नदीन के रा प्रवाह प्रकट है वे गंगा यमुना जैसी श्रेष्ठ नदी हैं, लेकिन तुम्हार प्रवाह गुप्त है, इसलिए तुम श्रेष्ठतम हो। तुम सद

0: कि हम लोग वर्षा जल का कैसे औषधि गुणन से परिपूर्ण कह सकित है। अपो देवी रूप सृज मधुमती रक्षमार्थम प्रजाभ्या तासाम आसाना दुजे हो हताम औषधया सुपिपला। यजुर्वेद में कहा गया है कि वेदन में मानव जीवन कृषि जीवन है। नदीन का हम लोग देवी और माता मानन। ऋग्वेद की ऋचा माँ सरस्वती नदी के महिमा गाई गई है। अम्बितमे नदी तमे देवी तमे सरस्वती अप्रशस्ताय उस्मसी प्रशस्तितिम अम्ब नस्कृति। ऋग्वेद में कहा गया है कि माता सरस्वती तुम सर्वोत्तम नदी हो। जी नदीन के रा प्रवाह प्रकट है वे गंगा यमुना जैसी श्रेष्ठ नदी है, लेकिन तुम्हार प्रवाह गुप्त है, इसलिए तुम श्रेष्ठतम हो। तुम सब देवन में श्रेष्ठ हो, हमार जीवन प्रशस्त करो माता। शमतम आपो हेमवती शमुते संतुस्तस्या शमते सनिष्वदा आपा शमुते संतु वर्षा। अथर्वेद में कहा गया है कि मनुष्य का चाहिए कि वो वर्षा कुएं के रे जल नदी और सागर के रे जल का अपने खान पान खेती और शिल्प कला आदि के लिए प्रयोग करें। अनभ्रया खनमाना विप्रा गंभीरे अफसा भेषक माना अभिषक्तरा आपो अच्छा बदामसी। अथर्वेद में कहा गया है कि विद्वान जिज्ञासु वैद तपस्वी साधक अनेक तरह के रे रोगन मा जल के रे प्रयोग से समाज के रे हित मा जल के रे महत्व का समझ के सावधानी से इका प्रयोग करें, जिसे हम अपन भावी पीढ़ी के लिए जल संचय कह पाई, जैसे हमार पूर्वज हमरे लिए जल के विशाल भंडार छोड़ के गए हैं। वयम राष्ट्रो जागरयाम प्रभु पुरोहिता, ये राष्ट्र का जगावे केरी जिम्मेदारी हमार है। बरसात या सावन के रे मौसम में गाए जाए वाले लोकगीत प्रकृति के रे उल्लास हरियाली और मिलन या विरह के रे भावना का दर्शावत है। उत्तर प्रदेश और अवध क्षेत्र में कजरी सावन झूला गीत और विरह विशेष रूप से ने लोकप्रिय हैं। एक बहुत ही प्रसिद्ध अवधि बरसाती लोकगीत कजरी के रे बोल हैं। फुलवा बरसे मोर अंगनवा के बाहर नंदी के बाहर नंदी के बाहर नंदी। फुलवा बरसे मोर अंगनवा के बाहर नंदी। चार महीना बरखा के दिनवा टप टप छुए अंगनवा हो टप टप छुए अंगनवा। चार महीना बरखा के दिन टप टप छुए अंगनवा हो। सावन में झूले सखियन के टोलिया गावत कजरी पपीहा के बोलिया। बादर गिरे हैं काले काले भीगे चुनरिया पिया के अटरिया। सखिया बुलावे आवो झूलन पिया बिन मोरा लागे न मनवा। चमके बिजुरिया तरसे अखिया कबहू घर लौटी है मोरे समरिया। इके अलावा एक और प्रसिद्ध गीत रिमझिम बरसे पनिया है, जिका अवध क्षेत्र में बहुत चाव से ने गावा जात है। तो ई है प्रकृति के रंग हरियाली के संग।
1: हाँ तो श्रोता बहनी, अबे हम सबे सुनाई वार्ता प्रकृति के रंग हरियाली के संग, जी के बारे में बहुत ही सुंदर वर्णन करिन रहे ज्ञानवती दीक्षित बहनी। तो प्रकृति के रंगन के बारे में, हरियाली का बनाए रखे के बारे में अतना सुंदर वर्णन करे खातिर हम ज्ञानवती दीक्षित बहनी का बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और श्रोता बहनी, अब बढ़ चला जाए एक छोट से अंतराल की ओर।
2: ये कस्टमर केयर कहाँ है? हाँ मैडम
3: जी,
2: ये केवाईसी अपडेट के लिए मुझे बार बार मैसेज क्यों आ रहा है?
3: क्योंकि बैंकिंग सेवाओं के लिए निर्धारित समय पर केवाईसी अपडेट करवाना चाहिए।
2: पर ये होगा कैसे?
3: अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस करेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसका डिक्लेरेशन दें।
2: अच्छा, और अगर कोई बदलाव हो तो?
3: तो ऐसे में पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण देकर केवाईसी अपडेट करवा सकते हैं।
2: बस समझ गया।
3: अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
4: RBI कहता है,
5: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
1: श्रोता बहनी, ई बेरिया शादी ब्याह के भी समय चल रहा है, और जौने घर में ब्याह ठना होत है वही घर के रौनक दिखते बनत है। नेहतहरियन के आउब लाग रहा है, कबो बन्ना के बुआ फूफा तो कौनो बेरिया मौसी मौसा घर में प्रवेश करत हैं, तो कबो मामा मामी और बहन बहनोई, इन सब से घर हरा भरा हो जात है। और फिर माड़ों के तरे जब नेहतहरी मेहरुए बन्ना गीत गौती हैं तो माड़ों के शोभा दुगनी।

श्रोता बहिनी, अब बात कीन जाए उन पकवानन व्यंजनन के जोन आज के 30-35 साल पहले जनमानस के विशेष भोजन के थाली के हिस्सा रहे। मुला जैसे जैसे आम जन आधुनिकता की ओरिया बढ़त गवा तो कुछ व्यंजन के बनावे खाए के परंपरा पीछे होत गई। इन्हें व्यंजनन में से एक है हमरे अवध प्रांत के एक व्यंजन आमे के गुठली के रोटी जोन सजत रहा साधारण जनमानस के थाली में। हाँ श्रोता बहनी, आप सबई नाम जरूर सुने हुई हो अपने घर के बूढ़ पुरानिया मनैन से और हो सकत है आज भी कुछ घरन की रसोई में ई बनत हुए। मुला जब आज के पीढ़ी से पूछा जाए तो ई नाही में मूड़ी हलाई देते हैं।

बहनी, अब आम के मौसम चल रहा है और ई जो आम के गुठली के रोटी है ना, वही का बनवे के तैयारी यह मौसम से शुरू हो जात है। जब बगियन माँ आमे के बिरवन पर आम पाक पाक के गिरत हैं, तो घर के एक कोठरी आमे वाली कोठरी बन जात रही, जिमा अनेकों आम के बिरवन से टूटे पके देसी आम अपन महक लिए इठलात रहे। तब उनके रसगार के अमावट बनत रहा और उनके गुठली का घामे में सुखवावा जात रहा। जब नीकी तना से गुठली सुखाए जात रही तो उनका फोरा जात रहा। तब वहिमा से निकरत रहा आमे के गुठली के किसुली। फिर इन किसुलियन का एक दुई घंटा घामे में सुखाए के एक बुरिया में भर दिन जात रहा। जब लगभग 20-25 दिन बीत जात रहे तो उन किसुलियन में एक काला आवरण चढ़ जात रहा। वही के बाद जब खाए के मन करे तो थोड़ी किसुली लेके फिर वही का नीकी तना से धोवा जात रहा, ताकि वही के करियापन छूट जाए। वही के बाद किसुलिन का रात भर भिगोवा जात रहा पानी में लगभग 6-7 घंटा। वही के बाद फिर से नीकी तना से धोए के एक भगोना में पानी डार के उबाला जात रहा, इतना कि किसुली के बीच से आसानी से टूट जाए। वही के बाद जब उई नीकी तना से पाक जाए तो उनका जुड़ाए खातिर धर दिन जात रहा। वही के बाद उनका फिर से धोए के तब सिलौटी पर महीन महीन पीसा जात रहा। फिर पीसी भई आमे की किसुली के रोटी बनवे के शुरुआत होत रही। चूल्हा पर तवा चढ़ाए के देसी घ्यू से तवा सिरझा जात रहा। फिर करछुल से आमे के किसुली के पीसा भवा आटा का तवा पर चुआए के हल्के हाथन से तनिक फैला दिन जात रहा। वही के बाद थोड़ा थोड़ा देसी घी लगाए के आमे के किसुली से बनी रोटी का धीमी धीमी आँच में पकाए लीन जात रहा। तब सगरे घर में फैल जात रहे आमे के किसुली के रोटी के महक, जी के साथ खावा जात रहा ताजा आम के रसा, या साथ निभावत रहा अमावट के चटनी, जौन जबान का तृप्त करत रही अपने अनोखे पारंपरिक स्वाद से। और आमे के उबली किसुली में लहसुन, हरा मिर्चा और राई नमक पीस के तैयार चटनी का मिलाए के ऊपर से थोड़ा पिसी हल्दी मिलाए के भी आमे के उबली किसुली का खावा जात रहा, जौन गजब के स्वाद बिखेरत रहा जबाने पर। और आमे के रोटी और अमावट का बरत उपवास में भी खावा जात रहा। मुला आज के समय में आमे के किसुली के रोटी बनाओ या आमे के किसुली का कौनो भी विधि से खाए खातिर तैयार करे के परंपरा अब लुप्त हो चुकी है। कारण एक तो नए नए व्यंजनन के आगमन आज के समय में हो चुका है, दूसर बात आजकल देसी आमे के बिरवा अब अधिकतर ना ही रह गए हैं, तीसर बात आमे के किसुली का तैयार करे में लागे वाला समय, जिमा आमे के गुठली का सुखाए के फिर वही का फोर के उनमा से किसुली निकाली जात है और वही का 20-25 दिन बोरिया में भर के संरक्षित कीन जात है, ताकि उनमा काली परत चढ़ सके। फिर धो भिगोब, वही के बाद धोए के उबालब थोड़ा लंबा समय लागत है, जिसे आमे के किसुली के रोटी या नोन मिर्चहा किसुली जनमानस के थाली से दूर हो गई। मुला अबहिनो कुछ घर ऐसन है जौन अपनी रसोईया में संजोए हैं स्वाद के ये अद्भुत खजाना का, जौन जबान पर दे जात है ऐसन स्वाद, जौन ही कहावत का चरितार्थ कर जात है कि आम के आम और गुठलियन के दाम, है ना यह बात। तो आम के किसुली के रोटी का कबो बरत उपवास में बना के बहनी, या कबो बूढ़ पुरनियन के स्वाद से तालमेल मिलाए के बनाओ, काहे से अब आम के मौसम है और देसी आम यदि आपके यहाँ उपलब्ध हैं तो उनके उपयोग नीकी तना से करो। आम खाओ, अमावट बनाओ, साथ में बनाओ उनकी किसुलिन के रोटी, ताकि ई लुप्त होत व्यंजन फिर से अपन पहचान बनाए पावें और सजी रहे हम सब की थाली स्वाद, अपनत्व और परंपरा के अद्भुत मेल से। तो श्रोता बहनी, जब बात आमे की हो रही है तो ई बेरिया तो आमे के अचार, खटाई और गलका सबे बनावे खाए जा रहे हैं। तो गलका बनवे के बारे में कौन बात कही जा रही है सासुरानी, चलो सुना जाए ई नकटा मा। स्वर हैं डॉक्टर भक्ति शुक्ला बहनी के।

श्रोता पंचो बतावत चली कि आवे वाले शनिवार यानी जुलाई महीना के दूसरे शनिवार 11 जुलाई 2026 का घर आंगन कार्यक्रम के अंतर्गत शब्द एक गीत अनेक कार्यक्रम प्रस्तुत की जाई जी के शीर्षक शब्द हैं मेघ बादल। तो जौन श्रोता पंच ई शब्दन से शुरू होए वाले फिल्मी गीतन का सुना चाहत हैं तो अभिने से ईमेल और पाती पठोप शुरू कर दें जी मां अपने नाम पता के साथ साथ मेघ और बादल शब्दन से जुड़े फिल्मी गीतन के बोल फिल्म के नाम भी लिख पठवें। तो जौन श्रोता पंच पाती पठवा चाहत हैं वही पाती पठवे खातिर पता लिख लें घर आंगन कार्यक्रम द्वारा के निदेशक आकाशवाणी 18 विधानसभा मार्ग लखनऊ पिन नंबर है 2-6-001। और जौन श्रोता पंच ईमेल के माध्यम से कार्यक्रम से जुड़ा चाहते हैं वही ईमेल के पता लिख लें घर आंगन AIRLKO

info@gmail.com। तो श्रोता पंचो, हमका आपके फरमाइशी गीतन के सुने खातिर पाती और ईमेल के इंतजार रही। और अब श्रोता बहनी, कार्यक्रम के बिरिया समाप्त हो रही है, तो ई मनोकामना के साथ कि हमरी श्रोता बहनी हो रही सदैव स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और प्रयासरत रहें प्रकृति का हरा भरा बनावे माँ, यह कामना के साथ वंदना श्रीवास्तव आप सबसे लेती हैं विदा। नमस्कार, जय हिंद।

बहनें अभी सुन रही थी अपना कार्यक्रम घर आंगन। हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम जवानों के लिए।

द लेजेंड ऑफ भगत सिंह, इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना एआर रहमान और सुखविंदर सिंह की आवाजों में। गीत सुनना चाहते थे छत्रपति संभाजी नगर से राजेश साबले पाटिल, राजदीप राजेश, राशि राजेश और श्रीमती शीतल राजेश। कार्यक्रम का अगला गीत सुनना चाहते हैं किसान रेडियो क्लब ग्राम व पोस्ट ललहुआ जिला खीरी से विजय पाल यादव, शुभम यादव, ऋचा यादव, शिखा यादव, गुड़िया यादव, बबलू यादव और विजय पांडे जी। आपने एक संदेश भी भेजा है। पद्म विभूषण से सम्मानित प्रसिद्ध पंडवानी गायिका डॉक्टर तीजन बाई का रविवार 5 जुलाई 2026 को निधन हो गया। डॉक्टर तीजन बाई ने अपनी अनूठी पंडवानी शैली से छत्तीसगढ़ की लोक कला को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई। उनके निधन से कला और संस्कृति जगत में शोक की लहर है और ये गीत जो उन्होंने सुनवाने को लिखा है वो उन्हीं की याद में समर्पित है। गीत है फिल्म पगला कहीं का फिल्म से, आवाज़ मोहम्मद रफ़ी की।

सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह, डॉक्टर अमनदीप, कालका से शुभचंद्र बजाज, साहिल बजाज और बिट्टा बजाज। आप सब सुनना चाहते हैं आंधी फिल्म का गीत, जिसे गाया लता मंगेशकर और किशोर कुमार ने।

ग्राम जसवाड़ी, जिला खंडवा, मध्य प्रदेश से दुर्गेश नागनपुरे, राधेश्याम नागनपुरे, वंदना भावना बिंदु, गोलू कुसुमबाई, बाबू दिव्यांश और सूरज कुमार ढाक से। रिंग रोड नर्मदा नगर से सूरज वर्मा, ऋषभ कनक और भावना वर्मा। ग्राम खैगांव, तहसील महेश्वर से प्रेमलाल वर्मा, निकेश धर्मेंद्र और ममताबाई वर्मा। आप सब सुनना चाहते हैं इम्तिहान फिल्म का गीत किशोर कुमार की आवाज़ में।

कटरा चांद खां मौर्य मंदिर वार्ड नंबर 11 पुराना शहर बरेली से अनोखे लाल मौर्य, सुंदर देवी मौर्य, प्रकाश मौर्य, रिंकी मौर्य, कपिल मौर्य, वेदराम मौर्य, कैलाश मौर्य, सुनील मौर्य, खुशबू मौर्य, एरोही मौर्य और स्वाति मौर्य, आप सब सुनना चाहते हैं कुदरत फिल्म का गीत, आवाज़ है किशोर कुमार की।

0: इस गीत के साथ ही आज का जवानों के लिए कार्यक्रम समाप्त करने की अनुमति दीजिए। जय हिंद। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम जवानों के लिए। आकाशवाणी का ये लखनऊ केंद्र है। दिन के 2:15 होने वाले हैं। अब आप दोपहर समाचार सुनेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रवाना। उन्होंने कहा, यात्रा से भारत की एक्ट ईस्ट नीति और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र के प्रति भारत का दृष्टिकोण और मजबूत होगा। सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा, सुधारों, डिजिटलीकरण और पेशेवर प्रबंधन के माध्यम से सहकारिता आंदोलन विस्तार के नए चरण में प्रवेश कर रहा है। सरकार ने कहा, डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए 104 करोड़ से अधिक स्वास्थ्य कार्ड आभा से जोड़े गए। मुंबई में तेज वर्षा से जनजीवन अस्त व्यस्त। भूस्खलन से मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर यातायात बाधित। मध्य महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा और छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में मूसलाधार वर्षा के लिए रेड अलर्ट। यूक्रेन की राजधानी कीव में रूस के बैलिस्टिक मिसाइल हमले में 10 लोगों की मौत और 46 से ज्यादा लोग घायल। फीफा विश्व कप में इंग्लैंड ने मेक्सिको को रोमांचक मुकाबले में 3-2 से हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। और विंबलडन टेनिस में नोवाक जोकोविच पुरुष सिंगल्स और नाओमी ओसाका महिला सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंचे। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रवाना हो गए हैं। श्री मोदी ने कहा कि वे राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के निमंत्रण पर इंडोनेशिया जा रहे हैं। एक रिपोर्ट।
2: प्रधानमंत्री मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ वार्ता करेंगे और रणनीतिक भागीदारी में प्रगति की समीक्षा करेंगे। वार्ता में दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने पर चर्चा होने की उम्मीद है, जिसमें रक्षा सहयोग, व्यापार, निवेश और ऊर्जा सुरक्षा तथा सांस्कृतिक सहयोग पर खास ध्यान दिया जाएगा। जकार्ता कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण प्रधानमंत्री मोदी का भारतीय समुदाय को संबोधन होगा, जिसे लेकर पूरे देश में उत्साह है। 8 जुलाई को प्रधानमंत्री मोदी ऐतिहासिक प्रम्बनन मंदिर के दर्शन के लिए योग्यकर्ता जाएंगे। भारत इस यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के जीर्णोद्धार के प्रयासों में सहयोग कर रहा है, जो दोनों देशों के बीच गहरे सांस्कृतिक संबंधों को रेखांकित करता है। जकार्ता से संदीपन दासगुप्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अमीशा।
1: इंडोनेशिया से प्रधानमंत्री मोदी ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। उनकी यात्रा से भारत ऑस्ट्रेलिया व्यापक रणनीतिक भागीदारी और मजबूत होगी। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी न्यूजीलैंड जाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड यात्रा से भारत की एक्ट ईस्ट नीति, महासागर लक्ष्य तथा स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र के प्रति भारत का दृष्टिकोण और मजबूत होगा। गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज कहा कि सहकारी आंदोलन सुधारों, डिजिटलीकरण और पेशेवर प्रबंधन के माध्यम से विस्तार के नए चरण में प्रवेश कर रहा है। सहकारिता मंत्रालय के 5वें स्थापना दिवस समारोह को संबोधित करते हुए श्री शाह ने कहा कि राष्ट्रीय स्तर की 9 प्रमुख सहकारी समिति बनाई गई है।
3: सहकारिता मंत्रालय के इनिशिएटिव से कुल 9 राष्ट्रीय स्तर पर काम करने वाली सहकारी समिति बनाकर देश से लेकर ग्राम तक ये 9 क्षेत्रों में सहकारिता मंत्रालय को एक माला में पिरोने का काम हमने किया है।
1: श्री शाह ने किसानों से जैविक कृषि उत्पादों का उत्पादन बढ़ाने और रासायनिक उर्वरकों तथा कीटनाशकों का उपयोग कम करने की भी अपील की। उन्होंने कहा कि सहकारिता मंत्रालय पिछले 5 वर्षों से सहकारिता के माध्यम से समृद्धि के मंत्र का पालन कर रहा है, जिससे मंत्रालय द्वारा लाखों लोगों के जीवन में बदलाव आया है। श्री शाह ने कहा कि पिछले 5 वर्षों में सहकारी प्रणाली को आधुनिक, पारदर्शी, प्रौद्योगिकी सक्षम तथा प्रतिस्पर्धी बनाने की दिशा में सराहनीय कार्य किया गया है।
3: हमने कृषि ऋण, डेयरी, उर्वरक वितरण और ग्रामीण सेवाएं, ये सभी को प्राथमिक से लेकर राष्ट्रीय स्तर

काम किया है, सेकेंडरी और टर्सरी क्षेत्रों में भी उसको जोड़ने का काम किया है, भंडारण, उत्पादन, एक्सपोर्ट, जैविक उत्पादन, परंपरागत बीजों का उत्पादन, ज्यादा उत्पादन देने वाले बीजों का

0: साल में किया है।
1: ब्रिक्स देशों के मादक पदार्थ रोधी एजेंसियों के प्रमुखों की बैठक आज गुवाहाटी में शुरू हो गई है। दो दिन की इस बैठक का आयोजन गृह मंत्रालय के अंतर्गत स्वापक नियंत्रण ब्यूरो ने किया है। भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे स्वापक नियंत्रण ब्यूरो के महानिदेशक अनुराग गर्ग ने कहा कि ब्रिक्स के विस्तार ने मादक पदार्थों की तस्करी और मादक द्रव्यों के सेवन सहित वैश्विक चुनौतियों से निपटने की समूह की क्षमता को मजबूत किया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने कहा है कि 104 करोड़ से अधिक स्वास्थ्य कार्ड, 93 करोड़ से अधिक आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता आभा से जोड़े गए हैं। ये देश की एकीकृत डिजिटल सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति है। आभा आधार कार्ड की तरह 14 अंकों की विशिष्ट पहचान संख्या है जो एक व्यक्ति को व्यापक स्वास्थ्य प्रणाली से सुरक्षित रूप से जोड़ती है। एक रिपोर्ट।
2: यह प्रणाली मरीजों को डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच प्रदान करती है। इस नेटवर्क के माध्यम से रोगी संपूर्ण चिकित्सा इतिहास के साथ बीमाकर्ताओं, स्वास्थ्य सुविधाओं, डॉक्टरों और अन्य सेवाओं से जुड़ सकते हैं। सरकार का लक्ष्य है कि आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के माध्यम से देश के सभी मरीजों और सभी स्वास्थ्य सुविधाओं को एक ही डिजिटल नेटवर्क से जोड़ा जाए। इसका उद्देश्य प्रत्येक नागरिक के लिए पूर्णतः डिजिटल स्वास्थ्य रिकॉर्ड उपलब्ध कराना है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने राष्ट्रीय पात्रता और प्रवेश परीक्षा NEET UG 2026 की आवेदन फीस वापसी के लिए बैंक खाता विवरण अपडेट करने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 7 जुलाई कर दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में NTA ने बताया कि जिन उम्मीदवारों ने अपने बैंक खाता विवरण की पुष्टि कर दी है उनके लिए रिफंड प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अब तक केवल 8,29,510 उम्मीदवारों ने ही अपने बैंक विवरण में सुधार या अपडेट किया है। निर्वाचन आयोग ने बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश की 3 विधानसभा सीटों के उपचुनावों के लिए अधिसूचना जारी कर दी है। बिहार में बांकीपुर, गुजरात में मंजलपुर और मध्य प्रदेश में दतिया विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होंगे। नामांकन पत्र 13 जुलाई तक भरे जाएंगे और 14 जुलाई को नामांकन पत्रों की जाँच होगी। मतदान 30 जुलाई को होगा। निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल से राज्यसभा की 3 सीटों के लिए उपचुनाव की घोषणा की है। ये सीटें राज्यसभा सदस्य सुखेंदु शेखर राय, सुष्मिता देव और प्रकाश चिकबराई के इस्तीफे के बाद खाली हुई थी। अधिसूचना कल जारी की जाएगी जबकि नामांकन पत्र दाखिल करने की अंतिम तिथि 14 जुलाई है। नामांकन पत्रों की जाँच 15 जुलाई को होगी। मतदान 24 जुलाई को और मतगणना भी उसी दिन होगी। पुरी में विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा की तैयारी अंतिम चरण में है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी सभी विभागों को वार्षिक उत्सव के लिए सभी व्यवस्था सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है।
3: दुनिया भर में मशहूर पुरी के रथ यात्रा जल्द ही होने वाली है। इसे देखते हुए उड़ीसा सरकार ने पुरी में इस भव्य उत्सव के सुचारू आयोजन के लिए व्यापक प्रशासनिक इंतजाम किए हैं। उड़ीसा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने सभी विभागों को निर्देश दिया है कि वे विभागों के बीच बेहतरीन तालमेल और हर इंतजाम को बहुत सावधानी से लागू करके रथ यात्रा का बिना किसी गड़बड़ी सुरक्षित और घटना मुक्त बनाए। आज सुबह पुरी में रथ यात्रा समन्वय समिति की आखिरी बैठक की अध्यक्षता करते हुए श्री मांझी ने इस सालाना रथ उत्सव को उड़ीसा के समृद्ध आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत का एक स्थायी प्रतीक बताया जो दुनिया भर से लाखों श्रद्धालुओं को आकर्षित करता है। उन्होंने महिला श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सम्मान पर खास जोर दिया और भीड़ प्रबंधन, कई स्तरों वाली सुरक्षा, ट्रैफिक कंट्रोल और दूसरी जरूरी नागरिक सेवाओं की तैयारियों का जायजा लिया। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर। जगन्नाथ।
1: इस बीच रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि इस वर्ष भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा के लिए 300 से अधिक विशेष रेलगाड़ियां चलाई जाएंगी।
4: पुरी में महाप्रभु जगन्नाथ जी का रथ यात्रा का पावन पर्व है, उस

0: में 300 से अधिक स्पेशल ट्रेन चलाई गई और आने वाले समय में केरलम में ओनम के फेस्टिवल के उपलक्ष्य में 100 से अधिक स्पेशल ट्रेन चलाई जाएगी।
1: महाराष्ट्र के अधिकतर हिस्सों में लगातार वर्षा से जनजीवन अस्त व्यस्त है। भूस्खलन से मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर यातायात बाधित है। मुंबई और कोंकण क्षेत्र में बाढ़ और भूस्खलन से इमारतें क्षतिग्रस्त हो गई हैं। सड़क रेल और हवाई यातायात भी प्रभावित है। पूरे राज्य में अधिकारी हाई अलर्ट पर हैं। अधिकारियों ने लोगों से अनावश्यक यात्रा से बचने की अपील की है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने SDRF में स्थिति की समीक्षा की और सभी अधिकारियों को त्वरित समन्वित कार्रवाई के निर्देश दिए। मुंबई बृहन नगर पालिका की महापौर ऋतु तावड़े ने बताया है कि मोबाइल मैसेज के माध्यम से सरकार समय समय पर अलर्ट जारी कर रही है।
2: बहुत ही बड़ी बारिश और उसके साथ में हवा का वेग जो है और उसी के साथ में समुन्द्र में जो हाई टाइड चल रही है, ये तीनों के वजह से रेड अलर्ट लोगों को दिया जा रहा है। आधे आधे घंटे में हम लोग पूरी इन्फॉर्मेशन मुंबई करके लोगों के मैसेज में भेजने का काम कर रहे हैं। 1916 की नंबर जो है उसको कार्यान्वित किए।
1: उधर गुजरात में पिछले 24 घंटों में मूसलाधार वर्षा हुई है, जिससे सौराष्ट्र और दक्षिण गुजरात क्षेत्रों में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। तेज बारिश के कारण अधिकारियों ने 6 प्रमुख बांधों को हाई अलर्ट पर रखा है। बारिश के कारण जनजीवन प्रभावित हुआ है। मछुआरों को 9 जुलाई तक अरब सागर में न जाने की चेतावनी दी गई है। मौसम विभाग ने आज गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में भारी वर्षा और कुछ स्थानों पर मूसलाधार वर्षा के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने कहा है कि अगले 3 दिनों में दक्षिण पश्चिम मानसून के उत्तरी अरब सागर के कुछ हिस्सों में से गुजरात, हरियाणा और पंजाब के कुछ भागों के साथ राजस्थान में आगे बढ़ने की संभावना है। वहीं आज असम, मेघालय, बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, दिल्ली और पश्चिम बंगाल में तेज वर्षा की संभावना है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। यूक्रेन की राजधानी कीव पर आज सुबह रूस के बैलिस्टिक मिसाइल हमले में 10 लोग मारे गए और 46 घायल हुए हैं। ये हमला तुर्की में होने वाले महत्वपूर्ण नाटो शिखर सम्मेलन से एक दिन पहले हुआ है, जिसमें अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शामिल होने की उम्मीद है। यूक्रेन की वायुसेना ने कहा है कि रूस ने हमले में बैलिस्टिक मिसाइलों, क्रूज मिसाइलों और ड्रोन का इस्तेमाल किया। पोदोल्स्की जिले में एक आवासीय भवन ढह गया। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की ने कल चेतावनी दी थी कि खुफिया जानकारी से संकेत मिले हैं कि रूस बड़े हमले की तैयारी कर रहा है। ईरान के दिवंगत सर्वोच्च नेता अली खामनेई की अंतिम यात्रा राजधानी तेहरान में 2 दिवसीय सार्वजनिक अंतिम दर्शन के बाद शुरू हुई, जिसमें भारी जनसमूह उमड़ पड़ा। खामनेई और युद्ध में मारे गए उनके परिवार के अन्य सदस्यों के ताबूतों को एक ट्रक में ले जाया जा रहा है। फीफा विश्व कप में आज इंग्लैंड ने मेक्सिको को 3-2 से हरा दिया और क्वार्टर फाइनल में जगह पक्की कर ली। ब्राजील के दिग्गज फुटबॉल खिलाड़ी नेमार जूनियर ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास ले लिया है। 5 बार के विश्व चैंपियन ब्राजील की राउंड 16 में कल रात नॉर्वे से 2-1 से हार का सामना करना पड़ा। विंबलडन टेनिस में सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने रूस के रोमन सफ्योलिन को हराकर पुरुष सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में जगह पक्की कर ली है। इसके साथ जोकोविच ने ऑल इंग्लैंड क्लब में अपना 106वां सिंगल्स खिताब जीता है। क्वार्टर फाइनल में जोकोविच का सामना फेलिक्स आगर एलियासिमी या एलेजांड्रो डेविडोविच फोकिना से होगा। महिला सिंगल्स में करीना मुखोवा ने अपने करियर में तीसरी बार विंबलडन क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई है। एक अन्य मुकाबले में नाओमी ओसाका ने आरेना सबालेंका को हराकर ऑल इंग्लैंड क्लब में अपने पहले क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। समग्र राष्ट्र आज भारतीय जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा पर रवाना। उन्होंने कहा, यात्रा से भारत की एक्ट ईस्ट नीति और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र के प्रति भारत का दृष्टिकोण और मजबूत होगा। सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा, सुधारों, डिजिटलीकरण और पेशेवर प्रबंध

0: संगठन के माध्यम से सहकारिता आंदोलन विस्तार के नए चरण में प्रवेश कर रहा है। सरकार ने कहा, डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए 104 करोड़ से अधिक स्वास्थ्य कार्ड आभा से जोड़े गए। मुंबई में तेज वर्षा से जनजीवन अस्त व्यस्त, मध्य महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा और छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में मूसलाधार वर्षा के लिए रेड अलर्ट। और फीफा विश्व कप, इंग्लैंड ने मेक्सिको को रोमांचक मुकाबले में 3-2 से हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। इसके साथ ही दोपहर समाचार का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम विज्ञान और किसान। आज इस कार्यक्रम में खरीफ में सब्जी उत्पादन के बारे में जानकारी दे रहे हैं कौशल कुमार नीरज और उनसे भेंट कर रहे हैं डॉक्टर सुशील कुमार राय।
2: नमस्कार किसान भाइयों बहनों, जहां खरीफ में सब्जी उत्पादन करना चाहते हैं तो इसकी क्या कुछ संभावना है और इसकी उन्नत कृषि तकनीक क्या है, इसी विषय पर जानकारी के लिए

0: खरीफ में सब्जी उत्पादन के बारे में जानकारी दे रहे हैं कौशल कुमार नीरज और उनसे भेंट कर रहे हैं डॉक्टर सुशील कुमार राय।
1: नमस्कार किसान भाइयों बहनों, जहां खरीफ में सब्जी उत्पादन करना चाहते हैं तो इसकी क्या कुछ संभावना है और इसकी उन्नत कृषि तकनीक क्या है, इसी विषय पर जानकारी के लिए आज हमारे साथ हैं उद्यान निदेशालय उत्तर प्रदेश से उप निदेशक उद्यान कौशल कुमार नीरज साहब, स्वागत है कार्यक्रम में। नीरज साहब, ये बताएं कि जहां खरीफ में सब्जी उत्पादन करना चाहते हैं किसान भाई व्यावसायिक ढंग से आमदनी के एक अच्छे स्रोत के रूप में, तो क्या सलाह है आपकी?
2: किसान भाइयों और बहनों को मेरा नमस्कार। खरीफ में जो प्रमुख सब्जियां उगाई जाती हैं वो है खीरा, लौकी, करेला, तोरी और सतपुतिया, चिचिंडा, कद्दू वर्गीय सब्जियों के अलावा टमाटर, मिर्च और बैगन। भिंडी की भी खेती खरीफ में बहुत आयत से होती है
1: और अगेती फूल गोभी भी।
2: हाँ, अगेती फूल गोभी भी होती है, ये अच्छा मूल्य भी किसान भाई प्राप्त कर सकते हैं अगेती गोभी करके।
1: इनकी उन्नत प्रजातियां कौन कौन सी हैं जो अच्छी पैदावार देंगी?
2: इसमें खीरा की अगर खेती किसान भाई करना चाहते हैं तो शीतल वेराइटी है और स्वर्ण अगेती, पूसा उदय और करेला जैसे उदाहरण के तौर पे पूसा दो मौसमी है, IIVR से काशी उर्वशी है, पूसा विशेष है, पंत करेला है, प्रिया है। अगर किसान भाई लौकी की खेती करना चाहते हैं तो काशी गंगा, पूसा नवीन, पंजाब कोमल, आजाद नूतन। और इसी तरह से कद्दू की खेती किसान भाई करना चाहते हैं तो पूसा विश्वास, काशी हरित है और एक नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय से बहुत अच्छी वेराइटी निकली है, नरेंद्र अमृत
1: जी।
2: और अगर टमाटर की खेती किसान भाई करना चाहते हैं तो टमाटर की जो उन्नतशील प्रजातियां हैं IIVR बनारस से निकली हुई दो तीन प्रजातियां बहुत उत्कृष्ट क्वालिटी की हैं, काशी विशेष है, काशी अमृत है, काशी अनुपम है
1: जी।
2: इसके अलावा पूसा सदाबहार, पंत बहार, अर्का विकास और एक बहुत अच्छी वेराइटी अविनाश 2
1: जी,
2: ये भी बहुत किसान भाई अधिक उत्पादन के लिए इसका प्रयोग करते हैं। सब वैरायटीज़ का प्रयोग किसान भाई कर सकते हैं। और भिंडी की खेती अगर करना चाहते हैं किसान भाई तो परवनी क्रांति,
1: भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान की भी
2: कई वैरायटीज़ हैं जिसका प्रयोग कर सकते हैं, इन प्रजातियों का प्रयोग करके अधिक उत्पादन प्राप्त कर सकते।
1: तो जो भी खरीफ की सब्जियां हैं, चाहे कद्दू वर्गीय सब्जियां हैं, भिंडी है, टमाटर है, मिर्च है, बैगन है या अगेती फूलगोभी, इनकी पौध कैसे तैयार करें या सीधी बुआई करें? जहां रोपाई करनी है वहां तो नर्सरी प्रबंधन करना होगा।
2: स्वस्थ पौध उत्पादन एक सबसे बड़ा सब्जी उत्पादन के लिए आवश्यक अंग है। इसके लिए लो टनल पाली हाउस में पौध तैयार कर सकते हैं और इसके अलावा उद्यान विभाग द्वारा प्रत्येक जनपद में हाईटेक नर्सरीज की स्थापना कराई जा रही है इस उद्देश्य से।
1: और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस
2: जैसे कन्नौज है, बस्ती है, वहां से भी प्राप्त करके किसान भाई लाभान्वित हो रहे हैं। तो एक तो देखिए समय से पहले भी मिल जाती है, गुणवत्ता युक्त पौध मिलती है और रोग रहित पौध मिलती है, क्वालिटी पौध मिलती है, तो इसका लाभ किसान भाई ले सकते हैं और वहां जाकर के सीख भी सकते हैं कि कैसे हम पौध उत्पादन करें और सब्जी की खेती को लाभकारी बना सकें।
1: अगर किसान भाई बहन अपने खेत पर लोटनल पाली हाउस में या पोल्ट्री में करना चाहते हैं तो उनके लिए क्या सलाह है?
2: जो जनपद आच्छादित थे यूपी डास में, उसमें एक डिमॉन्स्ट्रेशन के माध्यम से लो टनल पॉली हाउस जैसे मच्छरदानी से उसको ढकते थे।
1: हाँ।
2: और 1.25 मीटर चौड़ाई होती थी और अभी भी बहुत जगह किसान इसको प्रयोग कर रहे हैं जो जानकार हैं। तो ये बहुत अच्छा माध्यम है कि हम रोग मुक्त स्वस्थ पौध उत्पादन कर सकें सब्जियों का, और इसमें आपको बहुत ही स्वस्थ पौध और समय से पहले भी पौध प्राप्त हो जाती है जिससे अच्छा मूल्य प्राप्त होता है किसान भाइयों को।
1: अब जो भी खरीफ की सब्जियां हैं, कद्दू वर्गीय सब्जियां हैं, भिंडी है, अगेती फूल गोभी है, टमाटर है, मिर्च है, बैगन है, इसकी बुआई या नर्सरी कब तक डाल दें किसान भाई बहन?
2: ये जो खरीफ में अब यही समय है कि अब उसको पौध डालने का, और इसमें कुछ किसान भाई स्टेगर्ड प्लांटिंग मतलब अलग अलग समय पे बुआई करते हैं जिससे कि तीन प्रकार की प्रजातियां सामान्य रूप से होती हैं, अगेती प्रजाति, मध्यम प्रजाति और लेट प्रजाति जो विलंब से बोई जाने वाली प्रजातियां
1: जी।
2: तो इनमें 15-15 दिन का अंतर होता है लगाने का, 15 से 20 दिन का। इस प्रकार से हम तैयारी करते हैं, अलग अलग प्रजातियां हैं सभी फसलों में, अर्ली प्रजाति के थोड़ा पहले पौध डालते हैं। ये जून जुलाई में सारा काम पौध लगाने का होता है और 4 हफ्ते में लगभग पौध तैयार हो जाती है रुपाई के लायक
1: जी। और उसके पहले जिस खेत में रुपाई करनी

0: नहीं, उसकी भी तैयारी करनी होगी।
1: हाँ वो अवश्य उसकी तैयारी, गर्मी की जुताई से लेकर के उसको उसमें खाद उर्वरक का प्रबंधन होता है, इससे कि हाँ भूमि शोधन करना ट्राइकोडर्मा से लाभकारी होता है, इसमें कई प्रकार की फफूंदी जनित बीमारियों से मुक्ति मिलती है।
0: जैसे कद्दू वर्गीय सब्जियों की खेत में सीधी बुआई करें खरीफ में, या पौध पहले से तैयार कर लें?
1: उचित होता है कि पौध ही तैयार करें, पौध तैयार करके जब हम इसका रुपाई करते हैं तो अच्छा परिणाम प्राप्त होता है और कम मात्रा में बीज भी लगता है। डायरेक्ट बुआई अगर करेंगे तो बीज भी ज़्यादा लगेगा और उत्पादन भी कम होता है।
0: और आजकल कीमती बीज है,
1: बीज कीमती है, बहुत ही महत्व निवेश के रूप में प्रयोग किया जाता है, तो उसको हम बड़ा सजगता से करें तो अच्छा रहता।
0: तो जो भी खरीफ की सब्जियां हैं उनकी बुआई रुपाई में कौन कौन सी बारीकी करें?
1: देखिए, जो रुपाई के समय ध्यान देने की बात है कि फसल चक्र का ध्यान रखना चाहिए। फसल चक्र, एक ही प्रकार की सब्जी की खेती बार बार करने से उसमें रोग और कीड़े उसी प्रकार के लगते हैं, तो एक फसल चक्र कीट और रोग से मुक्ति मिलती है, संभावना कम रहती है।
0: हाँ।
1: इस उचित पोषण प्रबंधन मतलब न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, जैसे गोबर की खाद, सड़ी हुई गोबर की खाद डालना चाहिए, उसमें ऑर्गेनिक मैटर की कमी नहीं होनी चाहिए सॉइल में
0: जी,
1: और नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास और मिट्टी की जांच किसान भाइयों को जरूर करा लेनी चाहिए। अगर किसी पोषक तत्व की कमी है
0: हाँ।
1: तो उसको वहाँ उचित मात्रा में प्रयोग करना चाहिए जिससे कि उसकी भरपाई हो जाए।
0: यानी खेत और फसल की भूख को पहचानते रहना है और फसल की भूख मिटाने के लिए कार्बनिक खादों के साथ साथ रासायनिक खादों का संतुलित प्रयोग
1: होना चाहिए
0: और जीवाणु खादों का भी इस्तेमाल हो सकता है?
1: अवश्य हो सकता है और इसमें एकीकृत पोषण प्रबंधन है और इसी प्रकार से हम लोग एकीकृत नाशी जीव प्रबंधन भी करते हैं उनको
0: जी, आईपीएम
1: आईपीएम का प्रयोग उन कीट और बीमारी के प्रबंधन के लिए। और एक वाटर मैनेजमेंट, जो हम पानी की बात करते हैं, सिंचाई की बात करते हैं, क्योंकि बहुत आवश्यक है और हमारे विभाग द्वारा 80-90% तक की सब्सिडी भी दी जा रही है ड्रिप और स्प्रिंकलर पद्धति से। तो ये देखा जा रहा है कि किसान भाई अगर इसका प्रयोग करते हैं ड्रिप और स्प्रिंकलर पद्धति से सिंचाई विधि का, तो न उनके केवल उत्पादन में 15-20% वृद्धि हो रही है बल्कि ये पानी की बचत भी कर रहे हैं
0: और खेती की लागत भी कम
1: हो रही है और गवर्नमेंट इतनी सब्सिडी दे रही है तो किसान भाई इसका लाभ उठा भी रहे हैं अलग अलग क्षेत्रों में। इसमें किसान भाइयों को आगे आना चाहिए कि ड्रिप और स्प्रिंकलर विधि से सिंचाई प्रणाली को अपनाएं और इस दिशा में सरकार द्वारा काफी 80-90% तक की सब्सिडी दी जा रही है।
0: यानी प्रति बूंद अधिक फसल लेना
1: है, यही प्रति बूंद अधिक फसल।
0: नीरज साहब, किसान भाइयों बहनों के मन में अभी भी ढेर सारे सवाल होंगे खरीफ में सब्जी उत्पादन के बारे में। अगर इसके लिए आपसे सीधे संपर्क करना चाहें या आपके उद्यान निदेशालय आना चाहें तो अपना मोबाइल नंबर बता दें।
1: मेरा मोबाइल नंबर है 94124-6351063510 94-124-63510।
0: चलते चलते और क्या आह्वान करना चाहते हैं किसान भाइयों बहनों का खरीफ में सब्जी उत्पादन के बारे में?
1: पानी की बहुतायत होने से खरीफ में कई बार फसल खराब हो जाती है, तो कद्दू वर्गीय सब्जियां जो होती हैं उनको मचान पे लगाने का प्रयास करें कि मचान में एंगल आयरन पे भी लग सकता है, बांस वांस से भी उसको लगा लेते हैं, स्ट्रक्चर ढांचा तैयार कर लेते हैं, उस पे चढ़ा देते हैं, बेल चढ़ जाती है, तो एक गुणवत्ता युक्त उत्पादन उनका कद्दू वर्गीय सब्जियों में प्राप्त होता है। और मेड़ और कूड़ विधि से, जैसे जल निकास भी होता रहे, मेड़ और कूड़ विधि का प्रयोग करें, संतुलित उर्वरक का प्रयोग करें, अच्छी प्रजातियों का प्रयोग करें और पौधे की दूरी, पौधे से पौधे और उसकी लाइन से लाइन की दूरी उचित रखें। हर वैरायटी का, हर फसल का निर्धारित है, तो ये किसान भाई अपने क्षेत्र में इस प्रकार का प्रयोग भी कर रहे हैं।
0: कौशल कुमार, नीरज साहब, आज आप कार्यक्रम में आए और खरीफ में सब्जी उत्पादन कैसे करें किसान भाई बहन, इसके बारे में आपने ढेर सारी जानकारी दी, बहुत बहुत धन्यवाद।
2: खरीफ में सब्जी उत्पादन के बारे में जानकारी दे रहे थे कौशल कुमार नीरज और उनसे भेंट कर रहे थे डॉक्टर सुशील कुमार राय। अब आज का विज्ञान और किसान कार्यक्रम समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं, लीजिए सुनिए खोए हुए व्यक्तियों के संबंध में सूचनाएं। श्री मिथिलेश कुमार ने ग्राम अंसिरवा थाना शिवगढ़ जनपद रायबरेली से सूचित किया है कि आशमा 25 मई

0: 2026 से ग्राम रायपुर नेवरुवा थाना शिवगढ़ जनपद रायबरेली से लापता हो गई हैं। आशमा की आयु 32 वर्ष, कद 5 फीट 3 इंच, इकहरा शरीर और रंग गेहुआ है। राम सेवक ने नंद मेहरा चौकी थाना तुलसीपुर जनपद बलरामपुर से सूचित किया है कि आज्ञा राम 20 मई 2026 से लापता हो गए हैं। आज्ञा राम की आयु 45 वर्ष, कद 5 फीट 10 इंच, सामान्य शरीर, रंग सांवला और चेहरा गोल है। सतीश विश्वकर्मा ने मदरहवा थाना तुलसीपुर जनपद बलरामपुर से सूचित किया है कि रंजना देवी 5 जून 2026 से लापता हो गई हैं। रंजना देवी की आयु 25 वर्ष, कद 5 फीट 4 इंच, औसत शरीर और रंग गोरा है। राम फेरन ने ग्राम सिरैया थाना ललिया जनपद बलरामपुर से सूचित किया है कि बच्छ राजा 31 मई 2026 से लापता हो गए हैं। बच्छ राजा की आयु 30 वर्ष, इकहरा मजबूत शरीर, रंग सांवला और चेहरा लंबा है। खोए हुए व्यक्तियों के संबंध में सूचनाएं समाप्त हुईं।
1: ज्ञान विकास और अवसरों का मधुर संगम है कार्यक्रम नई उड़ान, जहां समय की अर्थपूर्ण चर्चाएं, देश के विकास से जुड़ी ताजा झलकियां, युवाओं के लिए मार्गदर्शक करियर सूत्र और धरातल से लाई गई सच्ची आवाजें, हर रोज शाम 5:45 पर आकाशवाणी प्राइमरी चैनल 401.6 मीटर अर्थात 747 किलोहर्ट्ज मीडियम वेव पर सुनना ना भूलिए कार्यक्रम नई उड़ान।
2: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
3: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुँचने का हर विकल्प।
2: और अब तो आप घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
3: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
2: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001-4242 पर।
3: 8700001-4242।
4: फिल्म आकाश के रोशन सितारों की महफिल आज के मेहमान, विविध भारती पर हर बुधवार शाम 4 बजे पिटारा में सुनिए। रहिए कहीं भी, सुनते रहिए विविध भारती। विविध भारती, आपकी बात पहुंचाए करोड़ों तक।
5: आइए जुड़िए विज्ञान जगत के साथ, जहां हर जटिल सवाल का जवाब मिलता है रोचक अंदाज में। क्या है आपके जीवन में विज्ञान की भूमिका, कैसे बदल रही है तकनीक आपकी दुनिया, जानिए विशेषज्ञों से, सुनिए रोचक चर्चाएं और पाइए विज्ञान से जुड़े ताजा अपडेट्स। तो सुनना न भूलें
6: विज्ञान जगत हर शनिवार शाम 7:30 बजे आकाशवाणी लखनऊ पर।
7: एक जमाने से कहानी है सुना रही आकाशवाणी, फिर आया एंटरटेनमेंट का रेवोल्यूशन, जब कोने कोने पहुंचा दूरदर्शन। कहानी नहीं बदली, स्टाइल गया है बदल। जो कहानियां हम सुनते आए, देखते आए, अब वही वैसी ही कहानी सुनाएगा डिजिटल।
8: डाउनलोड वेव्स OTT ऐप नाउ एंड वॉच फॉर फ्री।

प्रायोजित कार्यक्रम उड़ान आप सुनेंगे हर मंगलवार को शाम 7:45 पर। एनसीईआरटी का प्रायोजित कार्यक्रम आप सुनेंगे सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे से।

आज रात 10 बजे श्रृंखला नाटक के अंतर्गत आप सुनेंगे धीरज नाथ त्रिपाठी का लिखा नाटक सूखे के बीज, निर्देशन अति श्रीवास्तव का, संपादन और प्रस्तुति सहयोग कीर्ति श्रीवास्तव का। मीडियम वेव पर हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं।

अब प्रस्तुत है लोक संगीत का कार्यक्रम लोक माधुरी। आज सुनिए पूजा तोमर के गाए अवधी लोकगीत। सबसे पहले प्रस्तुत है विवाह गीत।

आप सुन रहे हैं अवधि लोकगीत। गायिका है पूजा तोमर। आइए अब सुनते हैं कहरवा।

आप सुन रहे थे पूजा तोमर के गाए अवधी लोकगीत। अब आज का लोक संगीत का ये कार्यक्रम लोक माधुरी समाप्त होता है।

0: आंगन मा है बहार, कहानी कविता और बतकही के फुहार, आपन बोली बानी संग लोक गीतन के बहे बयार, खान पान संग सेहत के और स्वावलंबन के बहचली है बयार, घर आंगन संग होई के तैयार, चलो विकास के रफ्तार, सोम बृहस्पति और साथे है दिन शनिवार, ईमेल और पाती के होए भरमार।
1: नई उड़ान में आपके अनुभव की उड़ान हो या हो हौसलों के नए कदम, अगर आप साझा करना चाहते हैं कोई अनुभव या हमें भेजनी हो प्रतिक्रियाएं और सुझाव, तो आप हमें मेल कर सकते हैं नई उड़ान AIR@gmail.com पर, या लिख भेजिए अपने पत्र। कार्यक्रम नई उड़ान, आकाशवाणी केंद्र, 18

मीडियम वेव 401.61 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं। 3 बज चुके हैं, अब हमारी आज की ये सभा संपन्न होती है। सायंकालीन सभा में 5 बजे आपकी सेवा में हम पुनः उपस्थित होंगे, तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए।

0: मीडियम वेव के मीटर पर यह आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। इस समय शाम के 5 बजने को हैं और अब आरंभ होती है हमारी आज की सांध्यकालीन सभा। अब से थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की 6 दिन की यात्रा के पहले चरण में आज शाम इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता पहुंचे। राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो ने हवाई अड्डे पर श्री मोदी का स्वागत किया। स्थानीय इंडोनेशियाई समुदाय और प्रवासी भारतीय समुदाय ने प्रधानमंत्री मोदी का पारंपरिक भारतीय और इंडोनेशियाई प्रस्तुतियों के साथ भव्य और उत्साहपूर्वक स्वागत किया। प्रधानमंत्री श्री सुबियांतो के निमंत्रण पर जकार्ता पहुंचे हैं। एक रिपोर्ट।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ वार्ता करेंगे और रणनीतिक भागीदारी में प्रगति की समीक्षा करेंगे। वार्ता में दोनों देशों के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने पर चर्चा होने की उम्मीद है। जकार्ता कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण प्रधानमंत्री मोदी का भारतीय समुदाय को संबोधन होगा, जिसे लेकर पूरे देश में उत्साह है। 8 जुलाई को प्रधानमंत्री मोदी ऐतिहासिक प्रम्बानन मंदिर के दर्शन के लिए योग्यकार्ता जाएंगे। संदीप दास गुप्ता की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रशांत कुमार।
1: इंडोनेशिया से प्रधानमंत्री मोदी ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। श्री मोदी ऑस्ट्रेलियाई

0: प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज के साथ तीसरे भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। वे भारत ऑस्ट्रेलिया सीईओ फोरम में भी शामिल होंगे और प्रवासी भारतीयों को संबोधित करेंगे। इसके बाद प्रधानमंत्री न्यूजीलैंड जाएंगे। प्रधानमंत्री न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन के साथ वार्ता करेंगे। श्री मोदी ने कहा कि तीन देशों की यात्रा से भारत की एक्ट ईस्ट नीति, महासागर लक्ष्य तथा स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र के प्रति भारत का दृष्टिकोण और सशक्त होगा। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सुधारों, डिजिटलीकरण और पेशेवर प्रबंधन के माध्यम से सहकारी आंदोलन को एक नए चरण में प्रवेश मिला है। सहकारिता मंत्रालय के पांचवें स्थापना दिवस समारोह में श्री शाह ने कहा कि प्रत्येक क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाली पांच सहकारी समितियों को मान्यता देने के लिए एक रैंकिंग ढांचा घोषित किया गया है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज राष्ट्रीय राजमार्ग माल परिवहन प्रबंधन लिमिटेड की समीक्षा बैठक की। बैठक में देश में बनाए जा रहे बहुमाध्यम माल परिवहन पार्क, रोपवे और राजमार्गों के किनारे यात्रियों के लिए विकसित की जा रही सुविधाओं की प्रगति की समीक्षा की गई। श्री गडकरी ने कहा कि इससे सड़क, रेल और अन्य परिवहन साधनों के बीच बेहतर संपर्क स्थापित होगा। ब्रिक्स देशों के मादक पदार्थ रोधी एजेंसियों के प्रमुखों की बैठक आज गुवाहाटी में शुरू हो गई है। दो दिन की इस बैठक का आयोजन गृह मंत्रालय के अंतर्गत स्वापक नियंत्रण ब्यूरो ने किया है। भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे स्वापक नियंत्रण ब्यूरो के महानिदेशक अनुराग गर्ग ने कहा कि ब्रिक्स के विस्तार ने मादक पदार्थों की तस्करी और मादक द्रव्यों के सेवन सहित वैश्विक चुनौतियों से निपटने की समूह की क्षमता को मजबूत किया है। सरकार ने कहा है कि 104 करोड़ से अधिक स्वास्थ्य कार्ड, 93 करोड़ से अधिक आयुष्मान स्वास्थ्य खाता आभा से जोड़े गए हैं। यह देश की एकीकृत डिजिटल सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणाली की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति है। आभा आधार कार्ड की तरह 14 अंकों की विशिष्ट पहचान संख्या है जो एक व्यक्ति को व्यापक स्वास्थ्य प्रणाली से सुरक्षित रूप से जोड़ती है। मौसम विभाग ने आज गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी की है। आज असम, मेघालय, बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, दिल्ली, पश्चिम बंगाल में तेज बारिश की संभावना है। पश्चिम बंगाल और सिक्किम में बिजली और तेज हवाओं के साथ वर्षा हो सकती है। अगले तीन दिनों में दक्षिण पश्चिम मानसून के उत्तरी अरब सागर के कुछ हिस्सों से गुजरात, हरियाणा और पंजाब के कुछ भागों के लिए राजस्थान में आगे बढ़ने की संभावना है। इस बीच महाराष्ट्र के अधिकतर हिस्सों में लगातार वर्षा से जनजीवन अस्त व्यस्त है। मुंबई और कोंकण क्षेत्र में बाढ़ और भूस्खलन से इमारतें क्षतिग्रस्त हो गई तथा सड़क, रेल और हवाई परिवहन में भारी व्यवधान देखा जा रहा है। पूरे राज्य में अधिकारी हाई अलर्ट पर हैं। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने राज्य आपदा मोचन बल के साथ स्थिति की समीक्षा की और सभी अधिकारियों को त्वरित समन्वित कार्रवाई के निर्देश दिए। खेलों में फीफा फुटबॉल विश्व कप के राउंड ऑफ 16 में देर रात 12:30 बजे पुर्तगाल का मुकाबला स्पेन से होगा। एक अन्य मुकाबले में सुबह 5:30 बजे अमेरिका का सामना बेल्जियम से होगा। इससे पहले इंग्लैंड ने मेक्सिको को और नॉर्वे ने ब्राजील को हराकर क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। इस बीच ब्राजील के दिग्गज खिलाड़ी नेमार जूनियर ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: मीडियम वेव 400.6 मीटर यानी 747 किलो हर्ट्ज पर आपने ट्यून किया है आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र। अब सुनिए आज के शेष व कल के विशेष कार्यक्रमों की रूपरेखा। पहले एक नज़र आज के शेष कार्यक्रमों पर। अब से थोड़ी ही देर में यानी 5:10 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम युवा तरंग। नई उड़ान कार्यक्रम लेकर हम हाजिर होंगे 5:45 पर। शाम 6:30 पर लोक आयतन कार्यक्रम में हम आपको सुनवाएंगे डॉक्टर सतीश कुमार से रियाज अहमद की भेंटवार्ता, जिसका विषय है डेंगू बुखार कारण और निवारण। वहीं खेती किसानी कार्यक्रम में 6:50 पर आप सुनेंगे बरसात में पशुओं की बीमारियां कारण और निवारण, इस विषय पर डॉक्टर जयकेश कुमार पांडे से डॉक्टर सुशील कुमार राय की बातचीत। आज शाम 7:31 पर सुनेगा कार्यक्रम स्वास्थ्य वार्ता। कार्यक्रम में पहले आप सुनेंगे वार्ता गट हेल्थ और हमारा इम्यून सिस्टम। वार्ताकार होंगी डॉक्टर पूनम तिवारी।

ہمارے ساتھ ہی ساتھ ہم آپ کو سنوائیں گے ڈاکٹر سنجے یادو کی ایک وارتا جس کا وشے ہوگا پین کلر کو کہیں نہ فزیو تھراپی کو ہاں. हिंदी कार्यक्रम का प्रसारण समय होगा आज रात 8 बजे. प्रियंका श्रीवास्तव की गाय भजनों का आनंद श्रोता ले सकेंगे आज के सुगम संगीत के कार्यक्रम में रात 8:10 पर. रात 10 बजे नाटक श्रृंखला के अंतर्गत सुनेगा नाटक सूखे के बीच. शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में रात 10:30 पर हम आपको सुनवाएंगे ऋषिकेश गांगुड़े का ख्याल गायन. ये थी जानकारी आज के शेष कार्यक्रमों की. अब सुनिए कल के कुछ मुख्य कार्यक्रमों के बारे में. राज्य स्तरीय प्रसारण के अंतर्गत कल रात 10 बजे हम आपको सुनवाएंगे कार्यक्रम खेल दर्पण. कृषि चर्चा कार्यक्रम में कल सवेरे 6:05 पर जानिएगा समस्याग्रस्त भूमि में धान उत्पादन विषय के बारे में. स्वास्थ्य चर्चा में कल सवेरे 7 बजे नीना सोनकर चर्चा करेंगे जंगल जलेबी स्वाद पोषण और प्राकृतिक मधुरता से भरपूर इस विषय के बारे में. विविधा कार्यक्रम का प्रसारण समय होगा सवेरे 7:10. जिले की हलचल का प्रसारण समय होगा प्रातः 9:15. उर्दू प्रोग्राम हम पेश करेंगे कल सवेरे 9:30 पर. कल सुबह 9:50 पर लोक रंग कार्यक्रम में और दिन में 2:45 पर लोक माधुरी कार्यक्रम में हम आपको सुनवाएंगे वंदराम मिश्रा के गाए कुछ अवधि लोकगीत. दिन में 1:15 पर बहनें सुनेंगी कार्यक्रम अपराजिता. कार्यक्रम में कल सुनिएगा कृष्ण भक्त संत कवित्री मीराबाई पर केंद्रित रूपक ऐसी लागी लगन. विज्ञान और किसान कार्यक्रम में कल दिन में 2:30 पर आप सुनेंगे डॉक्टर संजय अरोड़ा से भेंटवार्ता. खरीफ फसलों में समन्वित पोषक तत्व प्रबंधन भेंटकर्ता होंगे डॉक्टर सुशील कुमार राय. युवा तरंग कार्यक्रम होगा शाम 5:10 पर. नई उड़ान कार्यक्रम आप सुनते हैं शाम 5:45 पर. कल शाम 6:30 पर लोकायतन कार्यक्रम में आप सुनेंगे वार्ता विकसित भारत जी राम जी अधिनियम में पारदर्शिता और सोशल ऑडिट. वार्ताकार होंगे प्रवीण कुमार राय. खेती किसानी कार्यक्रम में शाम 6:50 पर आप सुनेंगे डॉक्टर राजेश कुमार कन्हौजिया से डॉक्टर सुशील कुमार राय की भेंटवार्ता. विषय होगा खरीफ में पोषक अनाज उत्पादन. प्रायोजित कार्यक्रम उड़ान का प्रसारण समय होगा कल शाम 7:45. हिंदी कार्यक्रम में कल रात 8 बजे आप सुनेंगे वार्ता हमारी सांस्कृतिक धरोहर सरस्वती नदी. वार्ताकार होंगे डॉक्टर सुनील कुमार तिवारी. मुक्ता चटर्जी के गाए गीतों और भजनों का आनंद श्रोता ले सकेंगे कल के सुगम संगीत के कार्यक्रम में और कार्यक्रम का प्रसारण समय होगा रात 8:10. अनुपम तिवारी का बांसुरी वादन आप सुन सकेंगे कल के शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में रात 10:30 पर. कार्यक्रम विवरण अब समाप्त हुआ. मीडियम वेव के मीटर पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र का प्रसारण. शाम के 5:10 हुए हैं. अब सुनिए नई सोच और नई उमंग के साथ कार्यक्रम युवा तरंग.

नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ, खुश और उत्साह से भरपूर होंगे। मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त विष्णुप्रिया और आप सुन रहे हैं आपका अपना पसंदीदा कार्यक्रम युवा तरंग। जी हां दोस्तों, युवा शक्ति किसी भी देश की सबसे बड़ी ताकत होती है। युवाओं के सपने, उनका उत्साह, उनकी सोच और उनका संघर्ष ही समाज और राष्ट्र को नई दिशा देता है। इसी ऊर्जा, इसी जोश और इसी सकारात्मक सोच को समर्पित है हमारा ये कार्यक्रम। आज के इस कार्यक्रम में हम लेकर आए हैं ज्ञान, मनोरंजन, प्रेरणा और नई जानकारी का अनोखा संगम। यहाँ होंगी रोचक बातें, विचारों की

चर्चा, प्रेरणादायक संदेश और भी बहुत कुछ जो आपके दिन को और भी बेहतर बना देगा। तो तैयार हो जाइए कुछ नया सीखने, कुछ नया सोचने और अपने सपनों को नई उड़ान देने के लिए। आइए सकारात्मकता और उत्साह के साथ शुरुआत करते हैं अपने कार्यक्रम का इस प्यारे से गीत से।

0: yes, yes. Say it again.
1: दोस्तों आइए सुनते हैं अब एक वार्ता डॉक्टर मुकुल श्रीवास्तव के द्वारा, जिसका विषय है चलो गांव की ओर।
2: मई लगते ही सूरज अपने तेवर दिखाना शुरू कर देता है। स्कूल कॉलेज की छुट्टियां जहां समर कैंप की रौनक बढ़ा देती हैं, वहीं आर्थिक रूप से समर्थ लोग किसी हिल स्टेशन पर सुकून भरे समय की तलाश में निकल पड़ते हैं। जब ऐसे ज़्यादातर लोग गर्मियाँ इंजॉय कर रहे होते हैं, ठीक उसी समय किसी सुदूर गांव में हमारा अन्नदाता अपनी नंगी झुलसी चमड़ी पर सूरज का तापमान माप रहा होता है। लहलहाती पकी फसल को देखकर आंखों में चमक के साथ चेहरे पर चिंता की झुर्रियाँ उसके किसान होने का प्रमाण देती हैं।

एक ऐसे देश का किसान जिसके खुरदुरे कंधों पर टिकाकर हम तरक्की की सीढ़ियां चढ़ रहे हैं, पर खुद उसकी आजीविका अभी भी सूर्य और इंद्र देवता की मेहरबानी पर टिकी है। गांव तो बेचारा है, यादों में रहने वाले गांव की हकीकत उतनी रोमानी नहीं है। इस तथ्य को समझने के लिए किसी आंकड़े की ज़रूरत नहीं है। गांव में वही लोग बचे हैं जो पढ़ने शहर नहीं जा पाए या जिनके पास अन्य कोई विकल्प नहीं है। दूसरा ये मिथक कि खेती एक लो प्रोफाइल प्रोफेशन है जिसमें कोई ग्लैमर नहीं। फिर क्या, गांव धीरे धीरे हमारी यादों का हिस्सा भर हो गए। जो एक दो दिन पिकनिक मनाने के लिए ठीक है, शायद इसीलिए गांव खाली हो रहे हैं और शहर ज़रूरत से ज़्यादा भरे हुए हैं। आखिर समस्या कहाँ है? गांव को पुरानी पीढ़ी ने इसलिए छोड़ा क्योंकि तरक्की का रास्ता शहर से होकर जाता था। फिर जो गया उसने मुड़कर गांव की सुधि नहीं ली, क्योंकि गांव के लोग शहर जाकर कमा रहे थे पर गांव आर्थिक रूप से पिछड़े ही रहे। एक तरफ 6 लाख छोटे गांव और दूसरी तरफ 600 शहर। कोई भी जागरूक और धन से संपन्न ग्रामीण शहर ही जाना चाहेगा, और हुआ भी कुछ ऐसा ही। दुनिया की हर विकसित अर्थव्यवस्था ऐसे ही आगे बढ़ी है, जिसमें कृषि क्षेत्र की उत्पादकता को बढ़ाया गया और बची श्रम शक्ति को औद्योगिकीकरण में इस्तेमाल किया गया। भारत के गांव के सामने विकल्प हैं, पर यदि समय रहते इनको आजमा लिया जाए। गांव से पलायन इसलिए होता है कि वहां सुविधाएं नहीं। सुविधाओं के लिए धन की ज़रूरत है, और वो दो तरीके से आ सकता है। पहला सरकार द्वारा और दूसरा पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। सरकार अपनी प्राथमिकताओं के हिसाब से काम करती है। इसमें अगर तेज़ी लानी है तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को बढ़ावा देना होगा। अब समस्या ये है कि गांव जनसंख्या के अनुपात में शहरों से काफ़ी छोटे होते हैं, इसलिए आधारभूत सेवाओं के विकास में लागत बढ़ जाती है और इनकी वसूली में भी देर होती है, जिससे निजी निवेशक पैसा लगाने से कतराते हैं। दूसरी समस्या ग्रामीण जनसंख्या का आर्थिक रूप से कमज़ोर होना भी है, क्योंकि जो जनसंख्या दो वक्त की रोटी के लिए जूझ रही हो उसे सुविधाओं की ज़रूरत बाद में होगी। इसी मानक को आधार बनाकर शहरों की ओर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, जिससे गांव विकास की दौड़ में पीछे छूट जाते हैं, और इससे ग्राम पलायन के एक ऐसे दुष्चक्र का निर्माण होता है जिससे देश आज तक जूझ रहा है। सुविधाओं के अभाव में जिसको मौका मिलता है वो लोग गांव छोड़ देते हैं, क्योंकि शहर में बिजली, पानी और सड़क की स्थिति गांव से बेहतर है। ऐसे लोग दोबारा गांव नहीं लौटते। खेती छोटे और मझोले किसानों के लिए अब फायदे का सौदा नहीं रही। जो छोटी होने के कारण खेती में लागत ज़्यादा आती है और लाभ कम होता है। एक और कारण, गांव में आधारभूत सुविधाओं का अभाव समस्याओं को बढ़ाता है और ये दुष्चक्र चलता रहता है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था इस हद तक खेती के इर्द गिर्द घूमती है कि कोई और विकल्प उभर ही नहीं पाता। हमारे खेत और गांव के उत्पाद अपनी ब्रांडिंग करने में असफल रहे। खेती में नवाचारिता वही किसान कर पाए जिनकी जोतें बड़ी थीं और आय के अन्य स्रोत थे। ऐसे लोग आज भी सफल हैं और अक्सर मीडिया की प्रेरक कहानियों का हिस्सा बनते हैं, किंतु ऐसे लोगों की संख्या बहुत कम है। सहकारी आंदोलन की मिसाल पापड़ और दूध जैसे कुछ गिने चुने प्रयोगों को छोड़कर ऐसी सफलता कहानियां दोहराई नहीं जा सकी, जिसका परिणाम ये हुआ कि गांव को शहर लुभाने लग गए और गांव शहर बनने चल पड़े। गांव शहरों की संस्कृति को अपना नहीं पाए पर अपनी मौलिकता को भी नहीं बचा पाए, जिसका परिणाम ये हुआ कि अपनी चिप्स और सिरका दोयम दर्जे के लगने लग गए, पर यही ब्रांडेड चीज़ें अच्छी पैकिंग में हमें लुभाने लग गई। हम अपनी सेवई को भूलकर नूडल्स को दिल दे बैठे। आखिर इनके विज्ञापन टीवी से लेकर रेडियो तक हर जगह हैं, पर अपना चिवड़ा गट्टा किसी और देश का लगता है। पारंपरिक कुटीर उद्योग और कला ब्रांडिंग मार्केटिंग के अभाव में रोजगार का अच्छा विकल्प नहीं बन पाए, तो पर्यटन के अवसरों को कभी पर्याप्त रूप से दोहन किया ही नहीं गया। नतीजा, एक ऐसे गांव में रहना जहां सुविधाएं नहीं, वहां के लोग शहर जाकर मजदूरी करना बेहतर समझते हैं बनस्पत अपने गांव में रहकर खेती करना। सुविधाएं किस तरह से लोगों को आकर्षित करती हैं, इसको पंजाब

0: खेतों में देखा जा सकता है, जहां बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश के गांव के किसान खेतों, मजदूरी और अन्य कार्य करने हर साल आते हैं। पर अब तस्वीर बदल रही है। हर बदलाव जहां कुछ चुनौतियां लाता है, वहीं कुछ अवसर भी। उदारीकरण की बयार से गांव के लोगों की क्रय शक्ति बढ़ रही है। नेशनल सैंपल सर्वे संगठन और क्रिसिल की एक रिपोर्ट के अनुसार ग्रामीण भारत शहरी भारत के मुकाबले ज़्यादा खर्च कर रहा है, यानी गांव उस दुष्चक्र से निकलने की कोशिश में कामयाब हो रहा है जो उसकी तरक्की में सबसे बड़ी बाधा रही है। ग्रामीण भारत की क्रय शक्ति बढ़ रही है। गांव में अब बिजली की उपलब्धता सहज है, सड़कों से भी अब सभी गांव का जुड़ाव है। उन्नत भारत अभियान योजना के तहत गांव को उन्नत बनाने के लिए वहां के बुनियादी विकास और शिक्षा पर जोर दिया जा रहा है। शिक्षण संस्थानों द्वारा गांव के विकास से संबंधित स्थानीय, आर्थिक, सामाजिक और अन्य समस्याओं का भी समाधान किया जा रहा है। इस अभियान के अंतर्गत उच्च शिक्षा संस्थानों को गांव से जोड़ा जा रहा है, जहां वो अपने ज्ञान के आधार पर गांव के विकास में भागीदार बन सकें। उच्च शिक्षा संस्थान ज़्यादा से ज़्यादा जिलों में पहुंचकर विकास कार्यों को आगे बढ़ा रहे हैं। ये संस्थान अनेक प्रकार के कार्यक्रम जैसे कि मशरूम खेती, धुआं रहित चिमनी, ग्रामीण ऊर्जा, हस्तशिल्प, स्वास्थ्य सेवा, जल प्रबंधन, ग्रामीण आवास और अन्य विकासात्मक पहलुओं में सहायता प्रदान कर रहे हैं। पहले विभिन्न खतरनाक रोगों से गांव के गांव ही समाप्त हो जाते थे, लेकिन चिकित्सा विज्ञान में हुई अभूतपूर्व क्रांति एवं ग्रामीणों में अपने स्वास्थ्य के प्रति बढ़ती जागरूकता से ग्रामीणों के स्वास्थ्य स्तर में सुधार हुआ है। इसके अतिरिक्त गाँव में इंटरनेट की पहुँच ने शहर और गाँव के बीच के अंतर को काफ़ी हद तक कम किया है। ग्रामीण उत्पाद अब इंटरनेट के माध्यम से दुनिया के किसी भी कोने में पहुंच रहे हैं। आधुनिक तकनीक और जीवन शैली की धमक वहां साफ सुनाई देने लगी है। गांव में अब भी बहुत कुछ शेष है। गांव का विकास एक सुखद अनुभूति है, लेकिन हमें कोशिश करनी होगी कि विकास की प्रक्रिया में गांव की आत्मा ना नष्ट होने पाए, तभी गांव से जुड़ी सुखद अनुभूतियां जिंदा रह पाएंगी।
1: दोस्तों, अभी आप डॉक्टर मुकुश श्रीवास्तव से सुन रहे थे ये वार्ता, जिसका विषय था चलो गांव की ओर। आशा करते हैं आपको इससे कई महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हुई होगी। तो आगे और भी चर्चा करेंगे, उससे पहले सुनते हैं एक गीत।

दोस्तों आज है विश्व जूनोसिस दिवस। विश्व जूनोसिस दिवस प्रत्येक वर्ष 6 जुलाई को मनाया जाता है। इस दिवस का उद्देश्य लोगों को उन बीमारियों के प्रति जागरूक करना है जो जानवरों से मनुष्य में फैलती हैं। ऐसी बीमारियों को जूनोसिस कहा जाता है। ये दिवस हमें मानव, पशु और पर्यावरण के स्वास्थ्य के बीच गहरे संबंध को समझने का अवसर प्रदान करता है। इस दिवस का विशेष महत्व इसलिए भी है क्योंकि 6 जुलाई को लुईस पास्टर ने रेबीज के पहले सफल टीके का प्रयोग किया था। उनकी इस उपलब्धि ने चिकित्सा विज्ञान में एक नया अध्याय जोड़ा और आज भी रेबीज जैसे गंभीर बीमारी के रोकथाम में टीकाकरण सबसे प्रभावी उपाय माना जाता है। जूनोसिस वो संक्रामक रोग है जो पशुओं, पक्षियों या अन्य जीवों से मनुष्य में फैलता है। ये रोग वायरस, बैक्टीरिया, परजीवी या फफूंद के कारण से हो सकता है। रेबीज, बर्ड फ्लू, स्वाइन फ्लू, ब्रुसेलोसिस, लेप्टोस्पायरोसिस और निपाह वायरस संक्रमण इसके प्रमुख उदाहरण हैं। कुछ वैज्ञानिक अध्ययनों में कोविड-19 की उत्पत्ति को भी संभावित रूप से जूनोटिक माना गया है। ये रोग कई माध्यमों से फैल सकते हैं। संक्रमण

में जानवर के काटने या खरोंचने से, बीमार पक्षियों के सीधे संपर्क में आने से, दूषित भोजन या दूध के सेवन से, मच्छरों और अन्य कीटों के काटने तथा संक्रमित पशुओं के संपर्क में आने से संक्रमण फैल सकते हैं। जूनोटिक रोगों से बचाव के लिए पालतू पशुओं का नियमित टीकाकरण, व्यक्तिगत स्वच्छता, हाथों की सफाई, भोजन को अच्छी तरह पकाकर खाना, पशुपालन में स्वच्छता बनाए रखना तथा किसी जानवर के काटने पर तुरंत चिकित्सा सहायता लेना अत्यंत आवश्यक है। जागरूकता और सावधानी अपनाकर इन रोगों के खतरे से काफी हद तक हमें बचा जा सकता है। विश्व जूनोसिस दिवस हमें यह संदेश देता है कि मनुष्य, पशु और पर्यावरण का स्वास्थ्य एक दूसरे से गहराई से जुड़ा हुआ है। इसी सोच को वन हेल्थ भी कहा जाता है। यदि पशुओं का स्वास्थ्य सुरक्षित रहेगा, पर्यावरण स्वच्छ रहेगा और समय पर रोगों की पहचान एवं उपचार होगा, तो संक्रामक रोगों के प्रसार को प्रभावी ढंग से रोका जा सकेगा। अंत में दोस्तों, ये कहा जा सकता है कि विश्व जूनोसिस दिवस केवल एक जागरूकता

दूसरे से गहराई से जुड़ा हुआ है। इसी सोच को वन हेल्थ भी कहा जाता है। यदि पशुओं का स्वास्थ्य सुरक्षित रहेगा, पर्यावरण स्वच्छ रहेगा और समय पर रोगों की पहचान एवं उपचार होगा, तो संक्रामक रोगों के प्रसार को प्रभावी ढंग से रोका जा सकेगा। अंत में दोस्तों, ये कहा जा सकता है कि विश्व ज़ूनोसिस दिवस केवल एक जागरूकता अभियान नहीं है, बल्कि जन स्वास्थ्य की सुरक्षा का संकल्प है। हम सभी का कर्तव्य है कि स्वच्छता को अपनाएं, पशुओं के स्वास्थ्य का ध्यान रखें, समय पर टीकाकरण कराएं और दूसरों को भी इन रोगों के प्रति जागरूक करें। यही एक स्वस्थ, सुरक्षित और रोग मुक्त समाज की दिशा में महत्वपूर्ण कदम होगा। आगे हम और भी विषय पर चर्चा करेंगे, उससे पहले सुनते हैं एक गीत।

दोस्तों आइए अब एक महान व्यक्ति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में बात करते हैं। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम भारत के महान वैज्ञानिक, शिक्षक और पूर्व राष्ट्रपति थे। उनका जन्म 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु के रामेश्वरम में हुआ था। उनका पूरा नाम अवुल पाकेर जैनुलब्दीन अब्दुल कलाम था। वो एक साधारण परिवार से थे, लेकिन अपनी मेहनत, लगन और प्रतिभा के बल पर उन्होंने देश और दुनिया में अपनी अलग पहचान बनाई। जी हाँ, डॉक्टर कलाम ने विज्ञान और अंतरिक्ष के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। भारत के मिसाइल कार्यक्रम को आगे बढ़ाने में उनकी प्रमुख भूमिका रही है। इसी कारण उन्हें मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। वर्ष 2002 से 2007 तक वो भारत के राष्ट्रपति रहे। उनकी सादगी, ईमानदारी और विनम्र स्वभाव के कारण वो बच्चों और युवाओं के बीच बहुत लोकप्रिय थे। उन्होंने युवाओं को बड़े सपने देखने और उन्हें पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत करने की प्रेरणा दी है। उनका प्रसिद्ध विचार था कि अपने कि सपने वो नहीं होते जो हम सोते समय देखते हैं, बल्कि सपने तो वो होते हैं जो हमें सोने नहीं देते। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को वर्ष 1997 में भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न प्रदान किया गया। 27 जुलाई 2015 को उनका निधन हो गया, लेकिन उनके विचार और आदर्श आज भी करोड़ों लोगों को प्रेरित करते हैं। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का जीवन हमें सिखाता है कि मेहनत, ईमानदारी और दृढ़ संकल्प से कोई भी व्यक्ति बड़ी सफलता प्राप्त कर सकता है। दोस्तों आइए अब थोड़ी सी बात करते हैं डिजिटल भारत पर। डिजिटल भारत का उद्देश्य देश को तकनीकी रूप से सशक्त बनाना और हर नागरिक तक डिजिटल सुविधाएं पहुंचाना है। आज के समय में तकनीक हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुकी है और भारत भी तेजी से डिजिटल विकास की ओर बढ़ रहा है। डिजिटल भारत के माध्यम से ऑनलाइन शिक्षा, डिजिटल भुगतान, ई गवर्नेंस, आधार, UPI, डिजी लॉकर और अनेक सरकारी सेवाएं लोगों तक आसानी से पहुंच रही हैं। अब लोगों को छोटे छोटे कार्यों के लिए लंबी कतारों में खड़ा नहीं होना पड़ता, बल्कि वो घर बैठे मोबाइल या कंप्यूटर के माध्यम से अपना काम कर सकते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में भी डिजिटल भारत ने नई संभावनाएं खोली हैं। छात्रों ऑनलाइन कक्षाएं, ई पुस्तकों और डिजिटल सामग्री के माध्यम से आसानी से ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। वहीं डिजिटल भुगतान ने लेन देन को तेज, सुरक्षित और सुविधाजनक भी बना दिया है। हालांकि साइबर अपराध और डिजिटल साक्षरता जैसी कुछ चुनौतियां भी हैं, लेकिन जागरूकता और सही उपयोग से इन समस्याओं का समाधान भी किया जा सकता है। अंत में कहा जा सकता है कि डिजिटल भारत केवल एक योजना नहीं, बल्कि एक विकसित, आधुनिक और आत्मनिर्भर भारत का सपना है। ये देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है और युवाओं के लिए नए अवसरों के द्वार खोल रहा है। तो दोस्तों ये तो थी कुछ आपसे बातचीत, आगे और भी चर्चा करेंगे। उससे पहले सुनते हैं एक गीत।

दोस्तों, आज हमने आपसे कई विषयों पर चर्चा की और अधिक से अधिक जानकारी देने का प्रयास भी किया है। अब वक्त हो गया है आपसे विदा लेने का, तो मुझे यानी कि विष्णुप्रिया को दीजिए इजाजत। नमस्कार।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम युवा तरंग, मीडियम वेव 401.6 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज़ पर। ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। आप सुनिए कार्यक्रम नई उड़ान।

नई उड़ान कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज आपके साथ मैं हूं अभिषेक शर्मा। दोस्तों, इस वक्त समझिए कि ऐसा माहौल है कि बहुत जगहों पर लोग बारिश होने का इंतज़ार कर रहे होंगे और बहुत जगहों पर लोग झमाझम बारिश से खुश भी हो रहे होंगे कि चलिए मानसून आया और जो तपती गर्मी थी उससे अब लोगों को राहत जो है मिल रही है। तो उम्मीद है कि आपके यहाँ भी हो सकता है कि बारिश हो रही हो या थोड़ा बहुत मौसम इस तरह का बन चुका हो कि आप भी उस इंतज़ार में हैं कि कब बारिश की बूंदें धरातल पर गिरें। लेकिन दोस्तों, ये मौसम जहाँ एक आनंद देने वाला तो है ही, लेकिन हमें थोड़ा सा यहाँ पर जागरूक होने की भी ज़रूरत है कि ये जो बारिश की बूंदें जो ईश्वर हमें दे रहा है, जो ज़मीन पर गिरती है, उसे कैसे हम सहेज कर रखें। वैसे तो मतलब ये कहना आसान है, करना थोड़ा सा

मुश्किल है, लेकिन अगर लगन हो और दूर दृष्टि जिसको हम कहते हैं वो हो, तो ज़रूरत आप समझ जाएंगे कि क्या है ऐसा करने की। क्योंकि ये जो बारिश का पानी होता है दोस्तों, इसे सहेजना बहुत बड़ी समझदारी है। और क्यों, ये आपने अभी गर्मी के मौसम में महसूस ज़रूर किया होगा। कहीं आपने देखा होगा कि आपके घर के आसपास जो नल होंगे, हैंडपम्प होंगे, वो सूख रहे होंगे, उसमें से पानी नहीं आ रहा होगा। बहुत सारी बोरिंग जो होती है, जो लोग किसान करवाते हैं खेतों को सींचने के लिए, वो भी फेल हो जाती हैं, उनमें से भी पानी नहीं आता है। तो ये कारण है सिर्फ जो भूजल स्तर है उसके घटने से। तो ये समय है कि हम भूजल स्तर बढ़ाने के लिए एक छोटा सा प्रयास करें। तो कार्यक्रम की शुरुआत हमने इसलिए इससे की क्योंकि यही मौका है कि हम अपनी इस बात को समझें और थोड़ा सा देश के प्रति अपनी जिम्मेदारी को निभाने का भी प्रयास करें। लेकिन अब थोड़ा सा बात करते हैं आज के दिन से जुड़ी हुई। दोस्तों आज 6 जुलाई है और आप जानते हैं कि आज के दिन जो है वो पूरा देश एक साथ मिलकर के मनाता है, जिसे हम कहते हैं विश्व जूनोसिस दिवस, है ना। ये दिन दोस्तों हमें उन बीमारियों के प्रति जागरूक करने के लिए समर्पित है जो जानवरों से इंसानों में फैलती है। इस वर्ष की थीम की अगर बात करें तो वो है स्वास्थ्य सुरक्षा और सामाजिक समरसता। इस बात पर ये जोर देती है कि स्वस्थ समाज का निर्माण तभी संभव है जब मनुष्य, पशु और पर्यावरण तीनों का स्वास्थ्य सुरक्षित हो। दोस्तों जूनोसिस ऐसी संक्रामक बीमारियां हैं जो संक्रमित पशुओं, पक्षियों या अन्य जीवों के संपर्क में आने से मनुष्यों तक पहुंचती हैं। अब अगर कुछ बीमारियों के उदाहरण को हम देखें तो जैसे रेबीज, बर्ड फ्लू, स्वाइन फ्लू और COVID-19 जैसी कई ऐसी घातक बीमारियां रही हैं जो हमें ये एहसास कराती हैं कि पशु और मानव स्वास्थ्य एक दूसरे से गहराई से जुड़े हुए हैं, है ना। और विशेषज्ञों की अगर बात करें तो दुनिया में उभरने वाली अधिकांश नई संक्रामक बीमारियों की शुरुआत जो विशेषज्ञ हैं वो कहते हैं कि जानवरों से ही होती है। ऐसे में समय पर पहचान, सतर्कता और प्रभावी रोकथाम बेहद आवश्यक है। तो हम लोगों को थोड़ा सा आज के दिन को लेकर के ये समझने की ज़रूरत है कि कैसे जो हमारे आसपास के जीव जंतु हैं उनके स्वास्थ्य के प्रति हम काम कर सकें। देखिए अगर हम धरती पे जीवों की बात करें दोस्तों, तो जो इंसान है वो हर जीव से अलग है। उसकी वजह क्या है कि हमारे पास सोचने समझने की क्षमता है, हम सही और गलत में फ़र्क कर सकते हैं, हम किसी दूसरे के बारे में कुछ कर सकते हैं, किसी के हित के लिए कुछ कर सकते हैं, और बाकी जो भी धरातल पर जीव हैं शायद वो ऐसा नहीं कर सकते हैं। हालांकि कई मायनों में देखा जाता है कि जो जानवर होते हैं वो पशुओं से ज़्यादा दयावान नज़र आते हैं या वफादार नज़र आते हैं, लेकिन फिर भी ऐसा जो माना जाता है कि इंसान जो है वो सबसे ज़्यादा समझदार, बुद्धिमान होता है। तो हमें अपनी धरती को बेहतर बनाने के लिए, अपने पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए, जो एक पूरा चक्र है जिसको इकोसिस्टम बोलते हैं, उन सब चीज़ों को बेहतर रखने के लिए हमें ही कुछ ना कुछ करना होगा। अब हमें कुछ ना कुछ करने का मतलब ये नहीं कि हम अपना घर का काम छोड़ करके कुछ ऐसा करने के लिए निकल जाएं कि घर वाले भी कहें कि रेडियो पर सुना और सब कुछ छोड़ दिया। ऐसा नहीं होना चाहिए। आप अपने घर का काम करते रहिए, लेकिन आप हर रोज़ कुछ ऐसा प्रयास करिए, या तो अच्छा करिए या तो कुछ बुरा मत करिए। जैसे अभी हम देखिए जल बचाने की बात कर रहे थे, वर्षा जल संचयन की बात कर रहे थे, तो भाई पॉलीथीन का इस्तेमाल हम रोक सकते हैं, इसमें हमें कुछ अलग से तो नहीं करना है। अब पॉलीथीन के इस्तेमाल से होता क्या है कि जब बारिश जो धरातल पर आती है, ज़मीन पर आती है, आप जानते हैं कि ज़मीन के अंदर कितनी पॉलीथीन्स जो हैं वो दबी हुई हैं। फिर जाहिर सी बात है कि वो पॉलीथीन को क्रॉस करके पानी जो बरसता है वो अंदर नहीं जा पाएगा, और यही वजह है कि वाटर रिचार्ज जिसकी हम बात करते हैं वो नहीं हो पाता है। तो छोटे छोटे काम हैं जो हम कर सकते हैं, या वो हमारी गलत आदतें जिनका बुरा प्रभाव हमारे आसपास के लोगों पर, हमारे जो पर्यावरण में पशु पक्षी हैं उन पर या हमारी पृथ्वी पर पड़ता है, उनको हम कम करने का प्रयास करें, तो भी हमारा एक सराहनीय कदम होगा। तो भाई हमने तो अपनी जो जिम्मेदारी है वो हम रेडियो पर तो निभा रहे हैं और प्रयास करते हैं कि अपने जो असल जीवन है उसमें भी निभाने का प्रयास करें, लेकिन एक और हमारी जिम्मेदारी है कि हम ज्ञान तो आपको दे ही, साथ में मनोरंजन भी आपका करवाते रहें। तो एक बहुत ही खूबसूरत सा गीत आइए सुनते हैं, फिर उसके बाद लौट करके आते हैं तो आगे की बात।

इस बहुत ही खूबसूरत से गीत के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम नई उड़ान में, और आज आपके साथ मैं हूं अभिषेक शर्मा। दोस्तों, अभी हम जूनोसिस दिवस की बात कर रहे थे और हमने बात की पशु पक्षियों की, और हमने चर्चा की थी थोड़ा सा अपने आसपास के पर्यावरण की भी। तो इसी से जुड़ा हुआ आइए आज आपको हम एक बहुत ही बेहतरीन सा फीचर हम कह सकते हैं कि आपको सुनवा रहे हैं, जिसका विषय है वनों की विनाश व्यथा और हमारा संकल्प।

0: आइए सुनते हैं, इसमें आवाज दी है आरती यादव और कपिल तिलहरी ने।
1: बहुत पहले जब शहर इतने बड़े नहीं थे और सड़कों ने पहाड़ों को नहीं चीर दिया था, तब भारत विशाल वनों और अद्भुत वन्य जीवों की धरती था।
2: हिमालय से लेकर पश्चिमी घाट तक, सुंदरवन के मैंग्रोव जंगलों से लेकर मध्य भारत के घने वनों तक प्रकृति का अद्भुत विस्तार दिखाई देता था।
1: इन वनों में शान से विचरण करते थे अनेक जीव, बाघ, हाथी, गैंडा, तेंदुआ और असंख्य पक्षी व वनस्पतियाँ।
2: सदियों तक प्रकृति का संतुलन बना रहा, जंगल नदियों की रक्षा करते थे, हवा को शुद्ध बनाते थे और लाखों लोगों के जीवन का आधार थे।
3: अरे भैया नहीं भी चाहे भाई ठन का करे, गर्मी बहुत पड़त है और बैठे रहे थे लड़का बच्चा बटोरे सब कोई है और दो चार लोग मोहल्ला के आ जाते नीम की छाँव में बैठा था।
1: लेकिन पिछले कुछ दशकों में इन वनों की कहानी बदलने लगी है।
4: बदलाव तो बहुत आ चुके हैं। पहले के टाइम पे वाटर लेवल बहुत ज्यादा था और आज के टाइम पे वाटर लेवल कम हो चुका है। हैंडपंप्स थे, कुएं थे और हम लोग पानी बहुत आसानी से ले सकते थे। आजकल के टाइम पे जो बहुत सारी सिटीज हैं वो सिर्फ सप्लाई के पानी पे डिपेंड हो गई हैं। पहले के टाइम पे हम लोगों को जो ऑक्सीजन मिलती थी वो बहुत ही प्योर मिलती थी और आज के टाइम पे अगर घर के बाहर भी निकलो तो पेड़ तो दूर दूर तक दिखाई नहीं देते हैं। पहले के टाइम पे पेड़ लगे होते थे, हर घर में पेड़ लगे होते थे। आज के टाइम पे पेड़ कटते चले जा रहे हैं, डिफॉरेस्टेशन होता चला जा रहा है। मेरे को तो देखो ऐसा लगता है कि कंक्रीट के घर अपने बनाने के चक्कर में प्रकृति ने जो हमें घर दिए थे वो हमने नाश कर दिए हैं और इसका खामियाजा आगे जाकर बहुत बहुत बहुत बुरा होने वाला है।
3: पेड़ और लगाए जाए मगर लड़का नहीं माना था, सब पेड़ काटे वाले सब जुटिया जात की काट डालो और पेड़ काटो ना भैया लगा दियो जहाँ तक हो सके पेड़।
2: बढ़ती जनसंख्या, औद्योगिक विकास, खनन और कृषि के विस्तार ने प्राकृतिक पारिस्थितिकी पर भारी दबाव डाला है और ये दबाव कितना गहरा हो सकता है ये समझते हैं हमारे सहयोगी डॉक्टर उमा शंकर सिंह से।
5: पेड़ एक है और उसके लाभ अनेक हैं। अब सवाल यह है जब एक पेड़ के इतना लाभ हैं, तो उसके न रहने से नुकसान कितना हो सकता है, शायद इसकी कल्पना आप अपने आप कर सकते हैं। एक पेड़ जहां हमारे लिए आर्थिक संसाधन है, हमारे सांस लेने का एक साधन है, हमारी प्राकृतिक धरोहर है, प्रकृति और परिवेश को बचाने का एक माध्यम है, यानी हमारे लिए जीवन है। तो एक जीवन देने वाला जो वृक्ष है, अगर उसके सामने संकट पैदा होगा तो इसका मतलब ये हुआ कि मानव के जीवन के समक्ष एक संकट है।
1: सड़कों, बांधों, कारखानों और शहरों के निर्माण के लिए विशाल वन क्षेत्र काटे गए हैं
2: और हर गिरते हुए पेड़ के साथ एक पूरा आवास तंत्र नष्ट होने लगता है।
1: वन्य जीवों के लिए जंगल केवल भूमि नहीं, उनका घर है।
2: जब ये घर नष्ट होते हैं तो जानवरों को नए स्थानों की तलाश में भटकना पड़ता है।
1: भोजन की खोज में हाथी खेतों और गांवों में पहुंच जाते हैं।
2: तेंदुए शहरों के आसपास दिखाई देने लगते हैं और बाघों के लिए सुरक्षित क्षेत्र ढूंढना कठिन हो जाता है।
1: इसके परिणाम स्वरूप मनुष्य और वन्य जीवों के बीच संघर्ष बढ़ने लगता है
2: और इन संघर्षों में कभी मनुष्य तो कभी वन्य जीव अपनी जान गंवाते हैं।
5: पेड़ काटने से केवल हवा या वायु प्रदूषण की समस्या नहीं होती। अगर आपने पेड़ काटा है तो निश्चित तौर पर बारिश नहीं होगी वहां पर और जब बरसात नहीं होगी तो सूखा पड़ेगा। तो पेड़ के न होने से जल संकट की समस्या हमारे सामने आएगी। जल संकट के साथ साथ पानी की जब समस्या हो गई तो पशु पक्षियों का जिंदा रहना मुश्किल है। वन्य जीव जो हमारे जंगलों में रहते हैं वो सब मैदान की तरफ आएंगे और मनुष्यों के लिए संकट पैदा होगा और हमारे परिवेश में जब उनकी एंट्री हो जाएगी तो हमारा जीवन किस प्रकार होगा ये आप समझ सकते हैं। पानी के

अकाल होने से, पानी की समस्या होने से एक तरफ तो पीने की पानी की समस्या, दूसरी तरफ कृषि क्षेत्र में सिंचाई के लिए जो अधिक पानी का उपयोग होता है उसकी कमी होगी, तो हमारी उपज भी प्रभावित होगी और कृषि उत्पादन जब घटेगा तो देश की अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ेगा। तो पर्यावरण को बचाने के लिए केवल एक ही उपाय हमारे सामने है कि हम पेड़ों को कटने से बचाएं। जब पेड़